0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। खेत खलिहान कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता, विषय है पशुओं में बांझपन। जानकारी दे रहे हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। अक्सर ये देखा जाता है कि पशुओं में बांझपन ज़्यादा होता है। पशुओं में बांझपन एक ऐसी समस्या है जो नर एवं मादा दोनों पशुओं में होती है। बांझपन के कारण पशु अनुत्पादक हो जाते हैं। पशुओं में बांझपन का कई कारण होता है। प्रजनन अंगों का असामान्य शारीरिक बनावट भी पशुओं में बांझपन का एक कारण हो सकता है। जन्म से ही होने वाली ऐसी कुछ असामान्यताएँ होती हैं। इनमें एक या दोनों ही अंडाशयों का छोटा होना, एक या दोनों ही अंडाशयों का न होना, नर पशुओं में एक या दोनों वृषण छोटा होना, एक या दोनों अंडनली का अविकसित होना, फिमाट्रीन की स्थिति में नर और मादा दोनों बच्चों का एक साथ पैदा होना, जिससे नर बछड़ा तो पूर्णतया सामान्य होता है लेकिन मादा बछड़ा सामान्यतः बांझ होता है। इस तरह से अन्य भी कारण हो सकते हैं। जन्म के पश्चात भी कई कारणों से बांझपन हो सकता है, जैसे गर्भाशय में मवाद का होना, घाव होना, शारीरिक क्रियाओं में भी असामान्यता होती है जैसे चुप्पी गर्मी। कुछ मादा पशुओं में ऋतुकाल लक्षण दबी हुई अवस्था में होती है, जिसके कारण मादा पशु ऋतुकाल में लक्षण प्रकट नहीं करती है और पशुपालक भाई मादा पशु का उचित समय पर गर्भधारण नहीं करा पाते हैं। इस प्रकार मादा पशु अस्थायी रूप से बांझ हो जाती है। कभी कभी मादा पशु की रज ग्रंथि पर एक या एक से अधिक सिस्ट बन जाते हैं, जिससे इसका आकार काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में मादा पशु बार बार गर्मी में तो आती है किंतु गर्भधारण कर नहीं करती। ऐसी मादा निम्फोमैनिक एवं इस प्रकार का दोष निम्फोमैनिया कहलाता है। ऐसी मादा को प्रोजेस्टोन इंजेक्शन देने से वह गर्भित हो जाती है। पशु के शरीर की ग्रंथियां जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, प्रोस्टेट कुछ हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो जननांगों की वृद्धि एवं कार्य क्षमता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें पिट्यूटरी मुख्य होती है। इसके ठीक प्रकार से कार्य नहीं करने के कारण हार्मोन में कमी हो जाती है, जिसके कारण नर तथा मादा पशु के शरीर में हार्मोनल असंतुलन होने के कारण बांझपन हो जाता है। आजकल गांव-गांव में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग अधिकतर पशुपालक भाई दूध निकालने में करते हैं, यानी कि सुई देकर जो दूध पशुपालक के भाई निकालते हैं इसका भी कुप्रभाव शरीर पर होता है। शरीर में हार्मोन का असंतुलन हो जाता है, पशु गर्मी में नहीं आता है और इस हार्मोन के लगातार प्रयोग से पशु का गर्मी में आना भी बंद हो जाता है। इस तरह से वो पशु जो है वो बांझ हो जाता है। पशु बच्चों द्वारा इसे पीने से उनमें परिपक्वता देर से आती है। गर्भवती पशुओं में इस हार्मोन के प्रयोग से गर्भपात का होना, पशुओं में जीर का रुक जाना, समय पर पुनः गर्भधारण न होना, गर्मी में न आना आदि समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए दुग्ध उत्पादकों को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रबंधन संबंधी भी कुछ अव्यवस्थाएं होती हैं, जैसे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी बांझपन होता है। पशु आहार में ऊर्जा, प्रोटीन, फास्फोरस, लोहा, तांबा एवं अन्य आयोडीन की कमी के कारण भी बांझपन होता है। हरा चारा उपलब्ध न होने पर विटामिन ए की आपूर्ति अलग से करनी चाहिए। कभी कभी मादा पशु गर्मी में तो आती है किंतु पशुपालक उसे देख नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में गर्मी में आई मादा की पहचान के लिए आप अवश्य प्रयास करें, अन्यथा बांझपन का डर बना रहेगा। पशुओं में बांझपन जीवाणुओं द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। पशुओं में गर्भपात, प्रोलैप्स या बच्चेदानी का शरीर से बाहर निकलना, बच्चेदानी में सूजन आदि के कारण संक्रमण होने पर बांझपन हो सकता है। इसलिए पशुपालक भाई इन सब बातों का ध्यान

0: रखें ताकि आपके पशु बांझ नहीं हों।
1: पशुओं में बांझपन, खेत खलिहान कार्यक्रम में अभी किसान भाई ये वार्ता सुन रहे थे, जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर बिनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमिटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन मनन।
3: भारतवर्ष की महान एवं पावन मिट्टी में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, त्याग और राष्ट्र सेवा से देश को नई दिशा प्रदान की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे ही युग पुरुष थे। वे एक कुशल शिक्षाविद, सफल प्रशासक, दूरदर्शी राजनेता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्रहित को समर्पित किया और अंततः उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद और न्यायविद थे। माता योगमाया देवी धार्मिक एवं संस्कारवान महिला थी। माता पिता के गुणों के प्रभाव से वे अत्यंत मेधावी और शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धिवान बने। उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्होंने विधि का अध्ययन किया तथा इंग्लैंड जाकर उन्होंने ज्ञानार्जन किया। डॉक्टर मुखर्जी ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। मात्र 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय में वे कुलपति बने, जो उस समय एक असाधारण उपलब्धि थी। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और इतिहास अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। इनके अथक प्रयासों से भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिला तथा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। सन 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय लाखों लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टर मुखर्जी ने इस संकट के समय कार्यों का नेतृत्व किया। उन्होंने देश भर से सहायता जुटाकर पीड़ितों तक भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएँ पहुँचाने का कार्य किया। डॉक्टर मुखर्जी का राजनीतिक जीवन राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित था। उनका उद्देश्य किसी समुदाय का विरोध करना नहीं बल्कि राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करना था। वे भारत विभाजन के विरोधी और संयुक्त भारत के समर्थक रहे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। उनके नेतृत्व में अनेक औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित हुई। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स तथा विमान निर्माण उद्योग जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना में उनका विशेष योगदान रहा। इन प्रयासों ने भारत के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान की। सरकार की कुछ नीतियों से असहमति होने पर इन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद सन 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि भारत में एक ही संविधान, एक ही ध्वज और एक ही प्रधान होना चाहिए। वे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने की वाली व्यवस्था के विरोधी थे। इसी आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग, साहस और कर्तव्य निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने शिक्षा, राजनीति और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में जो योगदान दिया वह भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। भारत की एकता और अखंडता के लिए

0: उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवाद का आधार किसी भौगोलिक सीमा को नहीं बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यतागत चेतना और सांस्कृतिक विरासत को मानता है। वे धर्म के आधार पर किए जाने वाले राजनीतिक समझौतों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होने चाहिए, न कि किसी विशेष वर्ग को खुश करने की नीतियाँ। कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति के रूप में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए। वे शिक्षा को भारतीय संस्कारों और मातृभाषा से जोड़ने के प्रबल पक्षधर थे। उनका चिंतन था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि व्यक्ति में अनुशासन, सहिष्णुता और देश के प्रति कर्तव्य की भावना जगाना होना चाहिए। उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी राष्ट्र अपनी ही ऊर्जा और आंतरिक संसाधनों के बल पर ही सुरक्षित और समृद्ध रह सकता है। वे विदेशी ताकतों पर निर्भरता के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत में सरकार का पहला कर्तव्य धनहीन और गृहहीन जनता की सेवा करना और उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाना है। वे सत्ता को भोग का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का एक साधन मानते थे, जहां विपक्ष की आवाज का भी सम्मान होना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह व्यापक और बहुआयामी चिंतन आज भी भारत को एक सशक्त, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।
1: ये था आज का चिंतन मनन। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। वंदना में निवेदित हैं कुछ भक्ति रचनाएं। आरंभ में ये देश वंदना।

जी साथियों, कहते हैं धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति। धर्मेण पापम मनुदति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्मम परम परमं वदन्ति। अर्थात धर्म इस संसार का आधार है। संसार में धर्मात्मा व्यक्ति के पास ही लोग सन्निकट होते हैं। धर्म से मनुष्य पाप कर्मों को दूर करता है। धर्म पर ही सब कुछ आधारित है, इसीलिए धर्म को सर्वोपरि कहा जाता है। ये धर्म क्या है? जी हाँ साथियों, ये धर्म हमारा आचरण है, ना कि पूजा पद्धति, ना ही पूजा स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में होने वाली भीड़ है। ये हमारी आंतरिक चेतना है, ये हमारा आंतरिक संगठन है जो हमें सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर उन्मुख करता है। वस्तुतः बाह्य आडंबर से बेहतर है अंतर मन की श्रेष्ठता। अर्थात वो ईश्वर है कहाँ? आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचने का अर्थ होता है यह पहचानना कि जीवन हर जगह है, चेतना हर जगह है, ईश्वर हर जगह है।

दोस्तों, पदार्थ की सबसे सूक्ष्म अवस्था हमारी चेतना है और इस चेतना की सबसे स्थूल अवस्था पदार्थ है। यही संगम इस सृष्टि को रचता है। इसीलिए आध्यात्म का मतलब जीवन से कटना हरगिज नहीं है दोस्तों, बल्कि उत्साहित, करुणामय, प्रेमपूर्ण और अपने आप में आनंदमय रहना ही सबसे बड़ी भक्ति भावना है।

जी हाँ साथियों, जब जब हम ईश्वर के सन्निकट होते हैं, जब जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, तब हमारे अंदर उथल पुथल मचता है। इस विराट ब्रह्मांड में हम कहाँ खड़े हैं, ये प्रश्न बराबर हमारे अंदर उठता है। जब हम स्वयं को इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है और चेतना ऊंचे स्तर तक पहुंच जाती है। अपने अंदर एक प्रश्न उठता है बार बार, मैं कौन हूँ, तो भीतर से ही आवाज़ आती है, सो अहम, अर्थात मैं वह हूँ। हमारे ही अंदर उस परम तत्व का निवास है, वह परब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर ही निवास करता है, यही हमारा उत्तर होता है। और जब हम इस आनंद में डूब जाते हैं कि उस परम तत्व का हमारे अंदर ही निवास है, तो हम अधिक आध्यात्मिक हो जाते हैं। आध्यात्म का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन को बोझ माने, बल्कि छोटी छोटी बातों से दुखी होने की हमारी आदत छूट जाती है और हमारे भीतर से आनंद प्रस्फुटित होने लगता है। मैं शाश्वत हूँ, तब करुणा हमारी सहज हो जाती है, यह सोच करके ही। सेवा तब कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, यह हमारे अंदर से स्वाभाविक रूप से निकलता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति अधिक सहनशील, अधिक प्रसन्न और अधिक करुणामय हो जाता है। आनंदमय रहना क्षण की अवस्था है। जब हम वर्तमान में टिक जाते हैं तो जीवन में अद्भुत सहजता आती है, मन शांत हो जाता है और हृदय प्रेम से भर जाता है।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। वंदना में आज आपने जिन कलाकारों को सुना हुए थे, अनुराधा पोडवाल, हरिहरण और सुरेश वाडकर। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा से ली गई भेंट वार्ता। विषय है मधुमेह रोगियों के आँखों की देखभाल।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हमारा विषय है मधुमेह के रोगियों के आँखों की देखभाल हम कैसे करें। जी हाँ, मधुमेह में हमारी आँखों को बहुत क्षति पहुँच जाती है, और ये कैसे होता है और इससे कैसे हमें छुटकारा मिल सकता है, इन सारी बातों की जानकारी लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा जी को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मधुमेह के कारण हमारी आँखों को कैसी क्षति पहुँच सकती है, जो खास बीमारी होती है उसका क्या नाम है?
2: मधुमेह अब एक सामान्य बीमारी हो गई है। अब भारतवर्ष तो इसका एक स्वर्ग ही माना जाता है, क्योंकि इसके बीमार पीड़ित व्यक्ति काफ़ी संख्या में बढ़ गए हैं। मधुमेह का यूँ तो सभी अंगों पर असर पड़ता है, पर आँखों पर भी इनका असर पड़ता है। आँखों पर मुख्यतः रेटिना पर असर पड़ता है। अच्छा। जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। अन्य भाग पर भी असर पड़ते हैं।
1: अच्छा।
2: जैसे अर्ली स्टेज में कैटरेक्ट हो जाना, ग्लूकोमा होना इत्यादि भी होता है, लेकिन मुख्यतः रेटिना पर असर पड़ता है।
1: तब आँख और रेटिना पर ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है?
2: आँख के रेटिना पर ये इसमें माइक्रो वास्कुलर एंजियोपैथी है, इसमें छोटी रक्त नलिकाओं पर प्रभाव पड़ता है। रेटिना पर रक्त संचारित करने के लिए छोटी रक्त नलिकाएं, जिन्हें हम कैपिलरीज या वेन्यूल्स कहते हैं, उन रक्त नलिकाओं में डायबिटीज के चलते पैथोलॉजी उत्पन्न हो जाती है। उनमें रक्त का जमाव हो जाता है, स्टैटिस मतलब रक्त का बहाव कम हो जाता है
1: जी,
2: उसमें सूजन हो जाती है और माइक्रो एनरिज्म जैसे जगह जगह पर वो फूलने जाती हैं, नई रक्त नलिकाएं बनने लगती हैं।
1: अच्छा।
2: जो कि कमज़ोर होती हैं और उनसे रक्त स्राव का चांस अधिक होता है, जिसके चलते रेटना के ऊपर हेमरेज होता है और विट्रियस में भी वो ज़्यादा मात्रा में हुआ तो हेमरेज जाता है और रक्त जो है प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध करता है, जिससे कि हमारा लाइट विजन कम दिखता है, हमें रोशनी कम होने लगती है या कोई चीज़ धुंधली दिखने लगती है
1: जी। तो इन सब लक्षणों से हमें समझ लेना चाहिए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रहा है।
2: जी, जी
1: जी। तो अब इसे निश्चित करने के लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे कि ये पता लग जाए कि यही बीमारी है?
2: सामान्यतः डायबिटीज़ के मरीजों को सलाह दी जाती है कि प्रायः वो प्रतिवर्ष अपनी आँखों की जाँच कराएँ
1: जी,
2: क्योंकि इन्हें बराबर चश्मे बदलने की शिकायत होती है, क्योंकि ब्लड में रक्त की शर्करा बढ़ने से ग्लास का पावर चेंज होता है और मोतियाबिंद के भी चांसेस होते हैं और रक्त रेटना आता है, ताकि वो और आगे नहीं बढ़े और उनमें रक्तस्राव नहीं हो। अगर रक्तस्राव हो गया है तो उसे एक सर्जरी द्वारा, जिसे विट्रोक्टोमी कहते हैं, काट के हटा दिया जाता है और उसके बदले में दूसरे सबस्टिट्यूट को उसमें रख दिया जाता है, ताकि नेत्र का वॉल्यूम बना रहे।
1: जी जी। तो ये उपचार जो आपने बताया, तो इसके बाद क्या पूर्ण सफलता मिल जाती है, जैसा पहले दिखता था वैसा ही दिखने लगता है, या कुछ और भी हो सकता है?
2: न, पूर्णतः सफलता तो नहीं होती है। फोटोकोगुलेशन के बाद रोशनी में विजन में कमी नहीं होती है उतना, पर वो स्टैटिस हो जाता है, स्टैटिक
1: जी।
2: और विट्रेक्टोमी की सफलता है कि वो अगर वो रक्त स्राव को हटा दिया जाए तो विजन साफ हो जाती है
1: जी। यानी कि अगर डायबिटीज़ के मरीज अपनी देखभाल करें, हिफाजत करें, परहेज से अगर अपना जीवन व्यतीत करें, तो उन्हें यह बीमारी नहीं हो सकती है?
2: बीमारी डायबिटीज़ में अगर रक्त शर्करा कंट्रोल रहे तो नहीं होगा
1: जी।
2: अगर होता है तो इसका उपचार भी है, उपचार भी हो सकता है
1: जी। जी, निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा से ली गई भेंट वार्ता। विषय था मधुमेह रोगियों के आँखों की देखभाल। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। मुख्य गायन स्वर है अनुराधा पोडवाल और साथियों का।
3: एपिसोड नंबर 259।

कबंध नामक गंधर्व को दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त करके अनुज सहित श्रीराम शबरी के आश्रम में पधारे। स्वयं प्रभु को अपनी कुटी में पाकर शबरी को मतंग ऋषि के वचन का स्मरण हो आया। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। प्रेम और भक्ति के अतिरेक से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। दोनों भाइयों के चरण पखार कर शबरी ने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए। अपने को नीच और मंदबुद्धि जानकर शबरी प्रभु की स्तुति करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, किंतु उसके लिए तो मात्र भक्ति का ही संबल पर्याप्त है। जाति पाति, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य तथा अन्य गुण होने पर भी भक्ति के बिना मनुष्य वैसा ही होता है जैसे बिना जल वाला बादल। शबरी का असमंजस देख श्री राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी प्रभु कथा में प्रेम, तीसरी अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है प्रभु का गुणगान। प्रभु में दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवी भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवीं भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विषाद से ऊपर उठ जाने की क्षमता।

सुरेश वाडकर, अनुराधा पुडवाल और साथियों से आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। संगीत रचनाकार थे सतीश भाटिया। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।

इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज यानी 23 जून दिन मंगलवार को प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 7 बजे फिर से सुन लीजिए, दिन के 3:25 से संध्या 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण। प्रातः 7 बजे पेश होगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें 7:20 पर स्मृति संवाद में आज आप सुनेंगे श्री अशोक वर्मन से ली गई भेंट वार्ता। इसी कार्यक्रम में रसरंग के चंक के आज के कलाकार होंगे भोले शंकर झा। दिन के 3 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम तरंग में चंद गजलें पेश होंगी, गुलकार होंगे जसवंत सिंह। देशभक्ति गीत का प्रसारण होता है प्रतिदिन हमारे केंद्र से दोपहर बाद 3:20 पर। संध्या 7:52 पर सुरलहरी के आज के कलाकार होंगे सुरेंद्र कुमार राय। प्रातः 9:30 पर हमारा हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम होगा बज़्मे उर्दू। इसमें कलाम शायर में आज के शायर होंगे जावेद अख्तर। मकाला पेश होगा मारा के करवला। मकाला निगार होंगे अताउल्ला बुखारी। इसके अलावा अफसाना सुनिएगा आगे का सफ़र। अफसाना निगार होंगी खालदा बेगम खालदा नाज। दिन के 12 बजे बहनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी नारी लोक। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम पेश होगा उमंग। दिन के 1:30 पर आज आप सुनेंगे रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल की अगली कड़ी। लेखक होंगे अशोक अंचल, प्रस्तुतकर्ता होंगे दासवीर अशोक शरण, दासवीर चार्टर और अशोक शरण। संध्या 5 बजे युवा साथी अपना प्रिय कार्यक्रम सुनेंगे युवा वाणी। संध्या 6 बजे ग्रामीण श्रोता बंधुओं के लिए हमारा दैनिक प्रसारण होगा।

0: आईएच प्रो लीग लंदन राउंड इत्यस्य उद्घाटन क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम अद्य पाकिस्तान दलम सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। प्रातः के ठीक 7 बजे हैं और 40 सेकेंड हुए हैं। पेश है मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

श्रोताओ गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार भागलपुर, जोहार विक्रमशिला। इस सूचनात्मक कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। दोस्तों, इस सूचनात्मक कार्यक्रम और प्रोग्राम के पिटारे को लेकर हाजिर हूँ मैं, आप ही की दोस्त संगीता। दोस्तों, आज मन बहुत विचलित और दुखी है। कल लखनऊ में हुई अग्निकांड ने हमें झकझोर कर रख दिया है, हमें बेहद बेहद मर्माहत कर दिया है। 15 नौनिहालों का असमय में डेथ हो जाना परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। दोस्तों, हमने प्रकृति को बिल्कुल ही अंगूठा दिखाकर अपने चारों ओर कंक्रीट का जाल बना लिया है। हम दुर्घटनाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। अक्सर हम देखते हैं कि चोरों से सुरक्षा के लिए हम अपने घरों में बालकनी में चारों तरफ ग्रिलिंग कर लेते हैं और ग्रिल के अंदर अपने आप को बेहद सुरक्षित अनुभव करते हैं। और जो लोग कॉमर्शियल पर्पस से घर बनाते हैं, किराए पर लगाते हैं, वो तो लोगों की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आग से सुरक्षा के बारे में उन्होंने कोई कदम नहीं उठा रखा होता है। छोटी छोटी सकरी सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती हैं और वही नीचे तक आती हैं, यानी कहने का मतलब है कि कहीं और वैकल्पिक व्यवस्था वो नहीं बनाते ताकि अगर कोई संकट, कोई विपदा आ जाए तो लोग आसानी से बाहर निकल सकें। अक्सर घरों में भी पड़ोसियों में इतना प्रेम नहीं रह गया है कि वो एक ऐसा दरवाज़ा बनाए, एक ऐसा रास्ता बनाए जो आपातकाल में, विपदा काल में एक दूसरे के छतों पर जा सकें। ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। घर तो सटे हुए होते हैं। अगर एक दरवाज़ा हम ऐसा बनाएं, एक रास्ता हम ऐसा बनाएं कि कोई भी विपदा की घड़ी में एक दूसरे के छतों पर हम जा सकें, तो कितनी ही जिंदगियां बच सकती हैं। और कमर्शियल पर्पस से घर बनाने वालों को बिल्कुल ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अग्नि की चपेट में आने के बाद, अग्नि आग लग जाने के बाद उसकी सुरक्षा का बेहतर से बेहतर उपाय करें। इस तरह लोगों की ज़िंदगी से खेलना कितना ख़तरनाक है और कितने गैर जिम्मेवार होते हैं ऐसे लोग। कानून का उन्हें कोई भय नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि हमारे कानून भी उस तरह के नहीं होते हैं। अक्सर अग्निकांड को दुर्घटना का रूप दे दिया जाता है और ऐसे में उसमें सिर्फ 6 माह की सज़ा होती है। जो लोग ऐसे गैर जिम्मेवार हैं उन्हें बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि लोगों का जीवन इतना आसान नहीं है कि हम उनसे, लोग उनसे खेलें। तो दोस्तों, आज दुख की इस घड़ी में उन परिवार को हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खोया। 15 से अधिक बच्चों का डेथ हुआ है और कुछ बच्चे घायल हैं। उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी, क्या बीत रही होगी, ये सिर्फ सोचने की बात है दोस्तों। तो आज उन सबों को हम अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं इस भजन के साथ।

0: जी हाँ दोस्तों, उस परिवार को संकट से उबारें प्रभु, उन्हें ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों आगे मिलते हैं, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: Blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0 liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: सुगम संगीत के चंकर रसरंग को जारी रखते हुए दोस्तों लीजिए अब सुनिए महादेवी वर्मा का लिखा ये गीत, कलाकार भोले शंकर झा।

दोस्तों, सुगम संगीत के कार्यक्रम सुगम संगीत के चंक रसरंग में आप सुन रहे थे भोले शंकर झा को। उम्मीद करती हूँ कि आपके बगल में रेडियो बज रहा होगा और हाथ में चाय की प्याली आ गई होगी। दोस्तों, तो अब बातें कर लेते हैं कि आज न्यूज़ हेडलाइंस क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो वही दुख देने वाली खबर है कि रिहायशी बिल्डिंग में था एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर और आग लगने से 15 मौतें हुई, ज़्यादातर छात्र थे। इसमें लापरवाही का आलम था कि बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर फंसे थे 30 लोग, इमरजेंसी गेट भी नहीं था और जान बचाने के लिए बच्चे बाथरूम में छिपे, पर वहीं दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ बच्चे कूद गए जो बच गए। तो दोस्तों, यूपी की राजधानी लखनऊ की ये दर्दनाक खबर है जो आप लोगों ने टीवी स्क्रीन पर भी देखा ही होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ बच्चों ने तार से केबल के तार को पकड़कर अपनी नीचे उतर करके अपनी जान बचाई और कुछ ने बिल्कुल जान की परवाह ना करते हुए कूद गए वो, और उन्होंने अपनी जीवन को बचा लिया। उन्होंने अपने जीवन को, कुछ चोटें उन्हें आई किंतु जिंदगी बच गई। आगे की खबर है दोस्तों कि जमीन म्यूटेशन में अब सरकारी भूमि की जाँच अनिवार्य हो गई है। म्यूटेशन से पहले सीईओ को करनी होगी सरकारी ज़मीन की जांच, गलत जमाबंदी पर लगेगी रोक। और भागलपुर के लिए दो अच्छी खबर है कि चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में बदलेंगे, ये कहा है नई आई हुई डीएम अलंकृता पांडे ने। समाहरणालय में पदस्थापित जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने कल कार्यभार संभाला। कहा, श्रावणी मेला व मुहर्रम प्राथमिकता होगी, पुल निर्माण कार्यों में आएगी तेजी। और उन्होंने कल ही जन समस्याओं को भी सुना और तुरंत निपटारे का दिया निर्देश। साथ ही कल नए सिटी एसपी अतुलेश झा ने भी अपना पदभार संभाला। साथियों, आपदा की स्थिति में समाज के कमजोर व संकटग्रस्त लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि हो, ये कहा डीएम ने, ये निर्देश दिया है। मुहर्रम पर डीजे प्रतिबंधित रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चुस्त दुरुस्त और सख्त। मेडिकल टीम शुद्ध पेयजल व आकस्मिक फसल योजना को हरी झंडी दी गई। अगली खबर है कि मेडिकल कॉलेज में एनएमएससी की टीम का इंतज़ार कर रहा प्रबंधन। टेकानी स्टेशन पर जल्द बनेगा खाद का नया रैक पॉइंट।

नामांकन के लिए आज से आवेदन होगा। LLB में 4 जुलाई तक ऑफलाइन आवेदन होगा और पढ़ाई 20 जुलाई से प्रारंभ होगी। TNB कॉलेज परिसर में 15 दिनों से झूल रहा बिजली का तार। पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित किए गए। बिहार राज्य ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एथलेटिक्स संघ ने सम्मानित किया। छात्रों को इंटर्नशिप की मूल्यांकन प्रक्रिया बताई गई। BPSC में सफल पूर्व छात्राओं को माउंट ACC स्कूल में सम्मानित किया गया। तीसरी जीत के साथ टीम बी मजबूत स्थिति में। सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में सोमवार को खेले गए BCA वीमेंस अंडर 19 वनडे ट्रॉफी लीग मुकाबले में टीम बी ने टीम ए को 5 विकेट से हरा दिया। और TMBU में 10 साल के बाद शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई। यह बकाया प्रमोशन

0: की प्रक्रिया है और यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचकर भी हार नहीं मानी। भीखनपुर निवासी सुमित कुमार ने बीपीएससी की परीक्षा में 175वीं रैंक हासिल कर डीएसपी का पद प्राप्त कर लिया है। सुमित ने मैट्रिक की परीक्षा मॉन्टेसिसी स्कूल भागलपुर से और इंटरमीडिएट सेंट माइकल स्कूल पटना से पूरी की थी और बिट्स पिलानी से केमिकल इंजीनियर में स्नातक किया था और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी वहीं से प्राप्त की थी और 2022 से यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली गए थे। कड़ी मेहनत के बल पर वे इंटरव्यू तक तो पहुंच गए लेकिन लास्ट चयन इनका नहीं हो पाया और अब ये बीपीएससी कम्पीट करके नए डीएसपी बन गए हैं। और ट्रिपल आईटी में 6 दिवसीय एफडीपी शुरू की गई। तो दोस्तों ये तो थी समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियाँ और अब समय हो गया है कि हम एक अवकाश प्राप्त व्यक्तित्व से ली गई भेंट वार्ता आप तक पहुंचाते हैं। आज मंगलवार है और आज के दिन ये भेंट वार्ता आप तक पहुंचती है दोस्तों। तो आज भेंट वार्ताकार हैं श्री अशोक वर्मन और आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा।
1: नमस्कार। आज के इस अंक में हम बातचीत करेंगे कुछ वैसे व्यक्तित्व से जो आप लगातार सुनते आए हैं और कहीं ना कहीं उनके उम्र के हिसाब से उनका जो अनुभव है समाज के लिए एक मार्गदर्शन है। कहीं ना कहीं गुरु हों वो, कहीं ना कहीं शोधकर्ता होंगे, कहीं ना कहीं कुछ और होंगे, लेकिन फिर भी ये हम ज़रूर समझते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उन्हीं के कारण समाज, ज़िला, राज्य और देश चल रहा है। आज हम बातचीत कर रहे हैं श्री अशोक वर्मन साहब से। आप मध्य विद्यालय बाबूपुर सबौर के सेवानिवृत्त प्राचार्य रहे हैं और खासकर आपके जीवन में जो सारे अनुभवों का पुलिंदा है आज हम उसका साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्मन साहब हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
1: क्या कहना चाहेंगे, सेवानिवृत्ति के बाद एक बार फिर से नौकरी करने का मन कर रहा है या कुछ और करना चाहते हैं?
2: नहीं, सेवा करने के बाद कुछ और करने की तो है नहीं चाह, लेकिन सेवा में खासकर जो देख रहे हैं आजकल नए जगह में उनमें कुछ न कुछ लालसा बनी रहती है कि अच्छी शिक्षा हो जो अभी नहीं हो पा रही है।
1: कहीं ना कहीं आपके भीतर वो दर्द है।
2: दर्द है
1: कि जो समय हमारा था उसमें एक ईमानदारी थी, एक नैतिकता थी, हम जी जान देकर बच्चों को पढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, आज वैसा नहीं रह गया है।
2: नहीं, आज सब सही में नहीं रह गया है, जो पहले था आज नहीं है।
1: ये क्यों हुआ, ऐसा अंतर क्यों आ गया?
2: ऐसा अंतर आने का कारण एक ही है कि गुरु और शिष्य का जो पहले एक तारतम्य था वो आज नहीं है, वो खो गया है। और दूसरा, आज की प्रवृत्ति में जो सरकार की नीति आई है और जो वातावरण बना है कि नकल करने का, सब कुछ मीडिया बहुत अच्छा है, सब कुछ है, आज नए नए टेक्निक आ रहे हैं, लेकिन लोग उसका अनुभव शिक्षण का, जो शिक्षक का महत्व है वो नहीं मालूम है उनको।
1: कहीं ना कहीं जो सब कुछ आप देखते हैं मीडिया में या 10 खबरें जो आप सुनते हैं उससे असंतोष है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होता तो अच्छा रहता। कहीं ना कहीं इसमें गार्जियन की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि नैतिक शिक्षा की कमी आ गई है। ईमानदारी से अगर किताब पढ़ा जाए, ईमानदारी से अगर अध्ययन किया जाए, ईमानदारी से गुरु शिष्य परंपरा का एक बार फिर से अनुकरण किया जाए तो सब कुछ अच्छा रहेगा। कुछ और बात करते हैं, घर में जितने भी लोग हैं आपको देखकर क्या बोलते हैं, स्कूल जाते तो अच्छा रहता या घर में है तो अच्छा है?
2: स्कूल जाते तो अच्छा है,
1: स्कूल जाते तो अच्छा रहता। वैसे भी मालिक करे आप स्वस्थ हैं, एक बार फिर से अगर नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, पढ़ाने के लिए एक अवसर मिल जाए तो आप जरूर एक परिवर्तन ला सकते हैं।
2: जरूर।
1: पहला परिवर्तन क्या लाएंगे?
2: पहला परिवर्तन तो ये लाएंगे कि बच्चों में एक लग पैदा करने की जरूरत है जो खो गई है। आज बच्चे जो है केवल नकल करना जानते हैं, अपना परिश्रम जो क्या महत्व है उनका, अपना युवा का क्या, माने ये क्या कहा जा सकता है, आप उसको एक शब्द में कह दें कि जो उनके अपने खोई प्रतिभा को उनको उभारने की आवश्यकता है।
1: जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो शॉर्टकट मेथड से उसका इस्तेमाल वो ना करते तो अच्छा होता, गेस पेपर नहीं पढ़ते तो अच्छा होता, या ये नहीं सोचते कि ये 15 सवाल पढ़ लो उसमें से 7-8 लड़ ही जाएगा, काम चल जाएगा?
2: नहीं, यही प्रवृत्ति जो आ गई है वो सबसे बड़ी खतरनाक आज के पीढ़ी के लिए। उनको चाहिए कि एक प्रस्तावना से लेके किताबों को, चाहे वो ई बुक हो या जो भी हो, प्रस्तावना से लेके अपने पढ़ने का और समय देने का उनमें एक होनी चाहिए भावना।
1: वर्मन साहब, आपकी बातों में एक दर्द झलकता है, आपके विचारों में एक सुविचार दिखता है। अगर एक शिक्षण संस्थान के आप मालिक होते आज, आप अगर शिक्षा संस्थान के एक प्रशासनिक गार्जियन होते, तो सबसे पहला कदम क्या लेते?
2: सबसे पहला कदम तो मैं ये लेता कि एक तो सबसे बड़ी बातें एक है कि आज की सरकार की जो नीति है वो सही रूप से नहीं है।
1: लेकिन प्रशासनिक गार्जियन होने के नाते तो सरकार की नीतियों को आपको मानना पड़ेगा।
2: मानना पड़ेगा, यहीं पर तो एक दुविधा होती है।
1: ये समन्वय स्थापित आप करें,
2: समन्वय करने की
1: जरूरत। आप कहीं ना कहीं सरकार से बातचीत करते कि हमारा ये प्रस्ताव है कि ऐसा नहीं, ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा।
2: अच्छा,
1: एक और आपसे बात पूछना चाहेंगे। आजकल के बच्चे अपने ही जिले और राज्य में पढ़ने के बाद विदेश चले जाते हैं या महानगरों में चले जाते हैं, क्या वहां पर सब कुछ ठीक है? क्या सिर्फ अपने ही राज्य और जिले में गड़बड़ है?
2: नहीं,
1: क्यों बाहर जाते हैं वो?
2: आज इसलिए जाते हैं कि हमने, हमारे गार्जियन या जो भी हैं अभिभावक, उनकी आकांक्षाएं इतनी बड़ी हुई है कि वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत दूर शिक्षा दें, लेकिन सही में माने में जो घर में नहीं पढ़ सका वो बाहर नहीं पढ़ सकता,
1: कहीं नहीं पढ़ सकता,
2: कहीं नहीं पढ़ सकता। घर में अगर ट्यूशन की आवश्यकता नहीं, अगर अभी अभिभावक का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें क्या है कि अभिभावक, आज के अभिभावक में अंतर इतना ही, पहले के अभिभावक पढ़े हुए नहीं थे, मूर्ख थे, लेकिन वो बच्चों को हिदायत करते थे कि तुम लालटेन, लेकिन शाम हो गया पढ़ने बैठ जाओ, और वह अगर नहीं भी पढ़ता था तो 3 घंटे तक उसको पढ़ना पड़ता था, कुछ ना कुछ करता था।
1: एक गार्जियनशिप था,
2: एक गार्जियनशिप,
1: एक माता पिता का भय था,
2: भय नहीं था
1: कि उनकी बातें माननी,
2: उनकी बातें माननी,
1: बड़े भाई बहन के साथ एक आदर
2: भाव था
1: कि भैया पढ़ाई कर रहा है तो हम भी पढ़ेंगे, दीदी पढ़ रही तो हम भी पढ़ेंगे, वो 6 घंटा पढ़ता है हम भी 6 घंटा पढ़ेंगे, घर में एक अच्छा स्वस्थ माहौल था।
2: तो आज वो नहीं है। आज हम जाते हैं, हर अभिभावक या तो अपने अर्थ के व्यवस्था से दूर है या किसी समस्याओं से उलझे हुए हैं, जिसके कारण अभिभावक पर ध्यान नहीं देते।
1: आपके कितने नाती पोतियां हैं?
2: हमारे एक नाती है, एक पोती है।
1: क्या बनाना चाहेंगे उसको आप?
2: बनाने के लिए तो हमारी इच्छा तो है, लेकिन अब सवाल है कि आज के नए पीढ़ी में हमारे जो बच्चे हैं, जब तक वो एक द्वंद्व बीच की खाई जो है, उस खाई में अब वो क्या चाहते हैं, यहीं पर एक अंतर द्वंद हो जाता है।
1: एक निजी सवाल आपसे, बहू आपकी बात मानती है कि नहीं?
2: मानती है।
1: आप बहू को कहते हैं कि हम बच्चों को दादाजी या नाना जी होने के नाते उसको हम ये बनाना चाहते हैं?
2: हाँ।
1: जो सुपुत्र हैं आपके, वो आपकी बातों से सहमत हैं?
2: सहमत हैं, लेकिन समय उन लोगों को इस तरह से बांध दिया है, चूंकि वो दोनों अपने ही अर्थ के, चूंकि दोनों जॉब में हैं, ठीक है, इस कारण जो है उनका समय अभाव है, तो उनकी सोच कुछ दूसरी बन रही है जो कि अभी की पीढ़ी में होनी हो रही है पैदा।
1: आपको लगता है कि जो बेटे बहू हैं नौकरी करते हैं, उसके चलते बच्चों की पढ़ाई लिखाई में
2: उसमें व्यवधान होगा
1: ही, या कहीं और किसी संस्कार में या किसी और चीज में, डेवलपमेंट में कुछ कमियां हो रही
2: हैं? कमियां आएंगी ही,
1: लेकिन नाना जी और दादाजी होने के नाते उन कमियों को दूर करना आपका एक दायित्व सा है।
2: तो दायित्व है, तो हम जहाँ तक कहा ना कि आज के समाज, समाज के अंदर इस पीढ़ी, युवा पीढ़ी में ये जो बहुत सी मीडिया के चलते जो दिखाया जा रहा है, जो आवामें आते जा रही हैं, या जैसे मान लिया जाए कि ये बात जरूर है कि अभी जो गवर्नमेंट की नीति है, जैसे मैंने कहा आपको एक उदाहरण मैं दे देता हूँ कि जैसे ट्रेनिंग के, विदाउट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग शिक्षा वही है, नीति वही है, एक आयोग नहीं बनाया अभी तक,
1: एक शर्त लगा हुआ है हर जगह,
2: शर्त लगा हुआ है
1: ये रहेगा तो
2: ये होना है। और ये जो बैठे बैठे जो एसी के रूम में
1: सब कुछ
2: प्लान तय हो जाता है, प्रैक्टिकल वे में नहीं होता है। दूसरा, अगर नीति अगर लागू की जाती है तो उसकी जो फिर से उसका जो होना चाहिए
1: रिवीजन
2: वो नहीं होता,
1: पुनर्विचार
2: नहीं
1: होना चाहिए,
2: होना चाहिए।
1: आप दोनों पति पत्नी बिल्कुल स्वस्थ होंगे मैं समझता हूँ?
2: नहीं सर, ये इसमें थोड़ी सी एक पक्ष मेरा कमजोर है,
1: पत्नी आपकी उतनी स्वस्थ नहीं होती।
2: नहीं है।
1: क्या उन पे, उनके ऊपर कोई जो कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव होगा कि हमारे पति रिटायर कर गए हैं तो कैसे सब कुछ होगा, कैसे सब कुछ ठीक ठाक चलेगा?
2: नहीं, ऐसा नहीं है
1: जी,
2: क्योंकि अभी के इसमें ऐसा हो रहा है कि वो भी जान रहे हैं कि हम लोग दोनों का अभी जो संतुलन है या जो अभिभावक से हम लोगों ने सीखा है उस दायरे में रह के अभी बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि एक समय मिल रहा है, जो समय मैंने नहीं दिया उनको,

0: आज मैं वो समय उनको दे पा रहा हूँ।
1: आप दोनों लोग दिन भर क्या बातचीत करते हैं, क्या क्या कुछ विशेष बात करते हैं, किस बात पर विचार पर ज्यादा महत्व देते हैं?
0: आज के ज्वलंत समस्याओं के ऊपर बातचीत होती रहती है, उसके निदान की विचारे सोचते रहते हैं।
1: समय कैसे कटता है आप दोनों का?
0: समय कट जाता है कुछ बातों से, कुछ दोस्तों से जाके मिलके, कुछ कार्य जो है अपने करना या बच्चों के साथ रह के।
1: कुछ तीर्थ आदि आपने किया कि नहीं?
0: तीर्थ किया
1: सब कुछ। अभी भी कोई लालसा बची है?
0: अब लालसा तो जब तक जीवन है तब तक लालसा ही लालसा, और जब लालसा ही रहेगी तब आगे ही बढ़ने का कार्यक्रम बनता ही रहेगा।
1: वर्मन साहब, आपके बातों में इतनी अच्छे विचार दिखे हैं और सब कुछ आपने कह दिया है अपने जीवन के बारे में, बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में, नैतिकता के बारे में। आपकी बातों से हम बहुत प्रभावित हुए और हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे आपकी बातों से ज़रूर सहमत होंगे। और आप जैसे बुजुर्ग, आप जैसे सीनियर सिटीजन्स, आप जैसे अभिभावक, आप जैसे अनुभवी शिक्षक अगर हमारे समाज के बीच रहेंगे तो ज़रूर कभी न कभी समाज की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार।
2: जी हाँ दोस्तों, शिक्षक हमारी, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र की नींव हैं और उनकी भूमिका हम कभी भूल नहीं सकते हैं। वो एक ऐसे कुम्हार की तरह रहते हैं, हैं हमारे समाज के निर्माता, जो कच्ची मिट्टी के लोंदे के समान जो होते हैं बच्चे, उनका निर्माण करते हैं। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो ऐसे गुरु के चरणों में हमारा शत शत नमन। वो रिटायर भी अगर हो गए हैं, अवकाश प्राप्त भी कर गए हैं, तो भी वो समाज को रोशनी दिखाते रहेंगे, समाज को एक रास्ता एक पाथे हमेशा देते रहेंगे। उनकी भूमिका की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज मौसम का मिजाज क्या है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। यह अनुमान आज से कल तक है दोस्तों। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है और न्यूनतम की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्षिक आर्द्रता की बात करें दोस्तों तो 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्वी हवा चलने का अनुमान है और मौसम कहीं आर्द्र और कहीं शुष्क रहने की संभावना है। तो ये तो दोस्तों हुई मौसम के मिजाज की बात, और अब हम देख लेते हैं कि रेलगाड़ियों की रफ्तार आज कैसी है। दोस्तों 1553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस अपने राइट टाइम से यहां से प्रस्थान करने वाली है और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:50 पर अपने सही समय से यहां से प्रस्थान कर जाएगी। वहीं 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस, ये गाड़ी भी ऑन टाइम है दोस्तों। इसका समय है 7:45। तो अगर आपको ये गाड़ी पिक करनी है या आपका कोई प्रियजन जाने वाले हैं तो आपके कोई प्रियजन जाने वाले हैं तो आप स्टेशन के लिए प्रस्थान कर जाएं, क्योंकि समय बिल्कुल करीब है, लगभग 10 मिनट बचे हैं। और बात करें आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो हमारे अपनों को लेकर आती है छुक छुक करके, हमें आनंदित करती हुई, ये गाड़ी बिल्कुल नियत समय 8:15 पर आने की सूचना है दोस्तों। और इसका नंबर है 12368। बात करें ब्रह्मपुत्र मेल की तो ये गाड़ी अपने नियत समय 8:05 से लगभग 5 घंटे विलंब से चल रही है और इसका नंबर है 15658। जमालपुर साहबगंज पैसेंजर, जिसका समय है 8:37, ये गाड़ी अपने नियत समय पर आ रही है, इसका नंबर है 53416। और साथियों भागलपुर लोकमान तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, जो आज यहां से प्रस्थान करती है, ये गाड़ी अपने राइट टाइम 8:55 पर प्रस्थान करने की सूचना है और इसका नंबर है 12335। और अपने नियत समय पर चलने की सूचना है रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस की, जिसका समय है प्रातः 9 बजे और इसका नंबर है 13403-63431 साहबगंज जमालपुर मेमू। अपने राइट टाइम 9:15 पर चलने की सूचना है दोस्तों। और नियत समय पर ही आ रही है मालदा क्यूल इंटरसिटी, जिसका समय है 9:35 और टाइम इसका नंबर है 13409। और भागलपुर से बाहर की ओर प्रस्थान करने वाली दो मुख्य गाड़ियां बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, जिसका समय है 10:15 और इसका नंबर है 13241 और साथ ही 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका टाइम है 11:55। ये दोनों गाड़ियां अपने नियत समय पर यहां से छुक छुक कर प्रस्थान करने वाली हैं। तो ये तो थी दोस्तों रेल गाड़ियों के रफ्तार के संबंध में सूचना। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार हम और आप करेंगे बातें आज के इतिहास पर।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners, starting at just ₹6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
2: दोस्तों बात करेंगे आज के इतिहास पर। तो आज 23 जून है दोस्तों, आज आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्थापना की याद में इस दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में। इसका उद्देश्य खेल और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी आज के दिन को मनाया जाता है। समाज के विकास और जन कल्याण में लोक सेवकों के योगदान और उनकी सेवाओं को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और साथियों विधवा दिवस भी आज मनाया जाता है। दुनिया भर में विधवाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथ ही आज के दिन 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। इस ऐतिहासिक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। और आज के दिन बात करेंगे दोस्तों कुछ और बातें आपसे शेयर करेंगे दोस्तों आज के इतिहास के बारे में, बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों आज के दिन मुकेश खन्ना, जिनको महाभारत में हम भीष्म पितामह की भूमिका में देखे हैं और कभी नहीं भूलने वाले उनकी भूमिका है, उनका आज जन्मदिन है। यानी 23 जून 1958 को मुंबई में आपका जन्म हुआ था दोस्तों। और मुंबई के पुणे से FTII से इन्होंने अभिनय की शिक्षा ली और 1981 ईस्वी में फिल्म रूही से आपने डेब्यू किया था। जहाँ तक फिल्मों में शुरुआत और संघर्ष की बात है तो उन्होंने फिल्म रूही के बाद खूनी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनमें से अधिकतर बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। सफलता की ओर इन्होंने 1990 के दशक में सौदागर, सौगंध, तहलका, यलगार और राजा बाबू जैसी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया। और जहाँ तक टेलीविज़न का स्वर्णिम युग कहा जाता है महाभारत को, 1988 में B.R. चोपड़ा की महाभारत में उनके द्वारा निभाए गए भीष्म पितामह के किरदार ने उन्हें घर घर में अमर कर दिया। उनकी भारी आवाज़ और दमदार संवाद की अदायगी ने इस किरदार को मील का पत्थर बना दिया था और साथ ही टेलीविज़न के दौर के सबसे पहले सुपर हीरो शक्तिमान के रूप में भी हम इनको जानते हैं। 1997 से 2005 में 2005 तक ये इनका स्वर्णिम कार्यकाल कहा जा सकता है दोस्तों। महाभारत की सफलता के बाद उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भीष्म इंटरनेशनल शुरू की। उन्होंने खुद शक्तिमान और पंडित गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओंकारनाथ शास्त्री के किरदार निभाकर इतिहास रच दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज भी बच्चे उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा। फिल्म सौदागर से ये खूबसूरत सा नगमा हमने लिया है दोस्तों आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, हमने सुना ये खूबसूरत सा नगमा। और दोस्तों, आज ही के दिन बात करेंगे बॉलीवुड के एक और स्टार राज बब्बर साहब का। आज जन्मदिन है, 23 जून 1952 को हिंदी और पंजाबी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता और राजनेता राज बब्बर साहब का जन्म हुआ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से स्नातक करने के बाद उन्होंने 1980 की फिल्म इंसाफ का तराजू से शानदार शुरुआत की। उन्होंने नकारात्मक और संजीदा दोनों तरह के किरदारों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है और वे सक्रिय रूप से राजनीति में भी शामिल रहे। दोस्तों, प्रारंभिक जीवन की बात करें तो आपका जन्म 23 जून 1952 में टुंडला उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा 1975 में दिल्ली के प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त की। साथ ही दोस्तों, इन्हें फिल्मों में आने का बहुत बहुत शौक था, तो 1980 में इन्होंने इंसाफ का तराजू से डेब्यू किया और वो फिल्म काफ़ी लोकप्रिय हुई और फिर इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, जहाँ तक फिल्मी करियर की बात है, हम सबों ने देखा है निकाह फिल्म में उनका जानदार और शानदार अभिनय, उमराव जान, प्रेम गीत, आज की आवाज़, मजदूर साहब, बीबी और गुलाम साहब, बीबी और गैंगस्टर रिटर्न्स जैसे उनकी ये सारी उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। दोस्तों, पंजाबी सिनेमा में भी उन्होंने काम किया है, उनका योगदान बेहद सराहनीय रहा है, विशेषकर उनकी कला आधारित फिल्मों में मड़ी दा दीवा और लौंग दा लश्कारा आदि। और टेलीविज़न में उन्होंने B.R. चोपड़ा की प्रसिद्ध पौराणिक सीरीज महाभारत में राजा भरत की भूमिका भी निभाई थी। और दोस्तों, जहाँ तक राजनीतिक सफ़र का की बात की जाए तो अभिनय के साथ साथ राज बब्बर साहब ने सक्रिय राजनीति में भी पहचान अपनी बनाई थी। वे राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और तीन बार लोकसभा सांसद हुए और 2 बार राज्यसभा के लिए वो मनोनीत किए गए हैं। और जहाँ तक निजी जीवन की बात है तो उन्होंने 2 शादियाँ की थी। नादिरा जहीर उनकी पहली पत्नी थी और उनकी दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल थी, जिनका असमय में निधन हो गया था। तो आइए दोस्तों, हम आप तक पहुँचाते हैं उनकी पत्नी स्मिता पाटिल के साथ वारिस फिल्म में उनका ये खूबसूरत सा गीत।

साथियों, इतिहास की बात चली है तो आज के दिन किन महान हस्तियों का जन्म हुआ वो हमने देख लिया, और किन का आज के दिन निधन हुआ है वो भी जानना जरूरी है। दोस्तों, आज के दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ था 23 जून 1953 को। आपका जन्म 6 जुलाई 1901 ईस्वी में एक महान शिक्षाविद, प्रखर राजनेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का जन्म हुआ था। वो भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में विलय करने की मांग रखी थी, और इसके लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया था। दोस्तों, अपने उनके जीवन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं कि उनका प्रारंभिक जीवन इस प्रकार है। उनका जन्म कलकत्ता के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद सर आशुतोष मुखर्जी के घर हुआ था, और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और मात्र 33 वर्ष की आयु में सबसे युवा कुलपति बने। राजनीतिक सफ़र की बात की जाए तो सन 1943 से 1946 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कार्य किया, लेकिन कुछ बातों से असहमति होने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। राजनीतिक जीवन में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, और दोस्तों सबसे अधिक जो उनको याद किया जाता है, उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना, और जम्मू कश्मीर में एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान का कड़ा विरोध किया। 1953 में बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और संदिग्ध परिस्थितियों में 23 जून 1953 को उनका निधन हुआ। तो दोस्तों, उन्हीं के इस बलिदान पर एक नारा आया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज कश्मीर से धारा 370 हटा करके भारत दो विधान दो संविधान का जो एक प्रावधान था उसे हटा करके जम्मू और कश्मीर अब हमारा अभिन्न अंग है, और उनके बलिदान को हम नमन करते हैं।

देश का कल्याण होगा। चाहे हम किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय से हैं, हमारी पहचान हमारे राष्ट्र से है, इसलिए राष्ट्र और राष्ट्र से

0: आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देरी में।
1: कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज़ खबरनामा और इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। तो आइए शामिल होते हैं दिल्ली की प्रसारण सभा में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में

0: पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से

0: सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता महमूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं आपका काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
5: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6वें व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Award during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
7: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
6: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
7: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
6: मिस्टर मोदी सेड Nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
7: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi isme fayda hota hai. क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
6: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल प्रेजेंट द पद्मा अवार्ड्स ड्यूरिंग द सेकंड सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन दिस इवनिंग। Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
0: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are among the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amrit Raj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
6: New Services Division of Akashvani is broadcasting special programs as part of our series People's Padma on Akashvani. Through these episodes, we bring insights into the lives and contributions of Padma awardees.
8: I find the idea of a human milk bank, and I started then the first human milk bank in Asia.
9: I designed many equipment for measurement of materials, actually characterization of the materials like resistivity, thermoelectric power, which is a very sensitive property. All these things we developed it ourselves at a very, very low cost.
10: मैं 10-12 वर्ष पासून मी तर शिकायला लागलो पण आता मला इकडे व्यवसाय नाही.
11: I started learning the tarpa when I was 10 to 12 years old. This ancient art is a matter of pride for us Adivasis, and we have preserved it.
12: My mama, when he came to know that I too have hemophilia, he used to tell me he should become a doctor.

0: The programs will be broadcast today on 100.1 Akashwani Gold from 9:10 a.m. onwards. They can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Uttar Pradesh government has suspended four state government officials in connection with the Lucknow fire incident, which claimed lives of 15 students. The state police has registered a case against six individuals and arrested four accused persons last night. More from our correspondent.
1: Four officials from Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have also been suspended following directives from Chief Minister Yogi Adityanath. Aliganj Police has registered an FIR under relevant sections of the BNS and the Uttar Pradesh Fire Service Act against six named accused and other responsible persons. State government has ordered a high-level inquiry into the fire incident. A special investigation team, SIT, was formed to investigate the incident and its members will submit their report within 7 days. At least 15 people, mostly students aged 16 to 25, died in tragic fire yesterday afternoon. The fire broke out at an animation coaching center operating above a shop in the Purania area of Aliganj, triggering panic among students. Nine students were injured and have been admitted to King George Medical University, Lucknow. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: Four cargo ships carrying shipments of urea, diammonium phosphate, DAP and sulfur are heading towards Indian ports after successfully crossing the Strait of Hormuz. These vessels are on their way to designated ports across the country, including Krishnapatnam and Kakinara ports in Andhra Pradesh, Paradip Port in Odisha and the Mundra Port in Gujarat. Chemicals and Fertilizers Ministry says that these fresh imports will immediately offload to supplement the nation's existing fertilizer buffers and secure ongoing agricultural requirements. The ministry says that the country's cumulative fertilizer stock position stands at a robust 196 lakh tons compared to 168 lakh tons during the corresponding period last year. The Indian Embassy in Doha has announced that Qatari authorities have confirmed the deaths of 12 Indian nationals in Sunday night's Ras Laffan LNG explosion. In a social media post, the embassy extended its condolences to the bereaved families and offered prayers for the departed souls. It also stated that Qatari authorities confirmed all those injured in the incident are in stable condition and receiving appropriate medical treatment. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed grief over the loss of lives and injuries, including those of Indian nationals. In a social media post, Dr. Jaishankar said that the Indian Embassy in Doha continues to be in touch with Qatari authorities and is reaching out to render assistance to the families of Indian nationals affected by the tragedy. At least 13 people have been killed and 66 injured after an explosion at Qatar's largest gas facility. National Security Advisor Ajit Doval held talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi, focusing on key aspects of bilateral engagement, including progress and normalization of the ties between the two countries. The talks were held on the sidelines of the ongoing 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi yesterday. In the meeting, Mr. Doval underlined that stable, predictable and constructive bilateral relations will contribute to building trust and better understanding between the two sides. External Affairs Ministry spokesman Ranthi Jaiswal said the two sides reviewed recent developments in bilateral relations and noted progress towards gradual normalization. Star shuttlers Lakshya Sen and Tanvi Sharma will lead India's challenge at the US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. World number 14 Lakshya Sen, seeded second, will take on Belgium's Julien Karagji in the opening round of the men's singles event. Former World Championship silver medalist Kidambi Srikanth, seeded fifth, will face Chinese Taipei's Liao Zhuofu in his first-round match. In women's singles, India has a strong contingent of seven players in the main draw, led by fifth seed Tanvi Sharma and sixth seed Devika Sihag. 17-year-old Tanvi will open her campaign against Germany's Yvonne Lee. In the opening match of the London round of the FIH Pro League, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. The head-to-head record over the last 10 years heavily favours India, who remain undefeated across 17 matches with 15 wins and 2 draws. India Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the next 2 days. IMD says that heavy rainfall conditions are also expected over Bihar, Arunachal Pradesh, coastal Karnataka, Madhya Maharashtra, Goa, Odisha, Telangana, Kerala and northeastern parts of the country today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
2: Thank you, Sunil. The blaze in a building in Lucknow and the death of Indians in Qatar LNG hub blast are the top stories in most dailies today. Keir Starmer resigning from the Prime Ministership of the United Kingdom appears on the front page of newspapers. Under pressure, Starmer quits as PM. Sixth Brexit in UK in 10 years, headlines the Times of India. Fresh power shift in UK as Starmer quits, writes Hindustan Times. US-Iran forged six-day roadmap to final deal, reads the headline in the Tribune. The US has temporarily lifted curbs on Iranian oil sales and dollar-denominated payments, writes the paper. The Indian Cybercrime Coordination Centre of the Ministry of Home Affairs has sounded alarm over a new cyber fraud known as Boss Scam or CEO Impersonation Fraud, reports the Pioneer. An engineer from Rajasthan used artificial intelligence to hack into the Rajasthan Public Service Commission portal and delete his competition for a government job, writes the Indian Express, highlighting the misuse of AI platforms. And finally, to enhance ease of commuting and strengthen availability of amenities, the NHAI is developing vehicle repair and puncture service facilities along national highways and expressways, reports the Asian Age. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अता करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेर एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
4: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
3: G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तज़किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत की पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार की गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोख और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
4: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूँ।
3: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवीत मिली है।
4: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, नियो मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
3: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अता करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अता किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरियत 65 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
5: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती, फिल्म गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल योम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मजकूरा अवार्ड गैर मामूली काम के एतराफ में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत व सनत, अदविया, अदबो तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दी शोबों में ये अवार्ड अता किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
3: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्मा की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किया जाता है।
6: नराब का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूली का ही होता है। तो मरूली का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
7: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
3: ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तियाब रहेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है। मस्कुरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
8: रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आग बुझाने वाले महकमे और बिजली महकमे के 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजदों मुलजिमों और दीगर कसूरवार अफराद के खिलाफ BNS और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट के मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। आग लगने के इस वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और खसूसी जांच टीम बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कल सपहर आग लगने के इस सानहा में कम अज कम 15 अफराद की मौत हो गई थी, जिनमें बेशतर 16 से लेकर 25 साल की उम्र के तलबा थे। 9 तलबा जख्मी हुए जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल किया गया है। बेशतर अमवात दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
3: ये खबरनामा आकाशवाणी से नष्ट किया जा रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी ज़रई इमदाद बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड के नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। नीलामी के अमल में शफाफियत को मुस्तहकम बनाने और कामकाज को सहल बनाने की समत ये एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मजकूरा पोर्टल से नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत करने और किसानों मेंबर इदारों और मुतालिका फरीकों के मफाद में नेफेड के मजमूई कामकाज को वसत देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। बाद में जनाब अमित शाह नेफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में नेफेड अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगी। नेफेड का मुस्तकबिल का खाका भी पेश किया जाएगा। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया डाइअमोनियम फॉस्फेट DAP और सल्फर की खेप लाने वाले 4 मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुरमुज़ को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये मुल्क में अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा ज़रई ज़रूरियात की तकमील को मजीद तकवियत मिलेगी। वजारत ने ये जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमूई स्टॉक 196 लाख टन है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ्त समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मीटिंग के मौके पर ये बातचीत हुई।

0: जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफैन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहिमत कायम करने में मदद मिलेगी। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुकाम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सिफारत खाना इस हादसे से मुतासर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदान की मदद के लिए कतरी हुकाम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम अज कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया कि दोहा में रास लफान जोन में वाकई शहर के अहम रकीक कुदरती गैस एलएनजी की प्रोसेसिंग के मकाम पर ये तकनीकी हादसा पेश आया। कतर की तवानाई के वजीर ने कहा कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासर नहीं होंगी। यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। इसमें सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। मर्दों के सिंगल जुमरे के पहले राउंड में आलमी नंबर 14 लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन काराजी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू का सामना करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मीनाक्षी की जोड़ी इंडोनेशिया के वीरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। मर्दों के FIH हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। चीन के कोलंबिया में मुनक़िदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत एक काबिल भरोसा मईशत के तौर पर दुनिया में तेजी से उभर रहा है। पिछले 12 बरसों में शुरू की गई फलाही स्कीमों से आवाम को फायदा पहुंचा है। वजीर खारजा और डॉक्टर अजय शंकर ने मंगोलिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तालीम व सकाफत और कई तरक्याती प्रोजेक्टों समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। अजीत डोभाल की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मशीरों की दो रोजा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में नई टेक्नोलॉजी के रोल पर हुई बातचीत, ये खबर भी आज के अखबारों ने खुसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान LNG धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरव

0: 90 साल
1: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
2: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
1: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। प्रदेश के 425 थानों में पुलिस निरीक्षक होंगे थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के राज्य के शेष भागों में आगे बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्षों के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसी पहल राष्ट्र निर्माण के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़

0: भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
1: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
0: राज्य सरकार भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए नई नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को भूजल के संरक्षण और विनियमन के लिए बिहार भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम 2026 लाने की दिशा में तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए जिसमें वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण और जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिले। उन्होंने भू जल स्तर में सुधार के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी उपायों को अपनाने पर जोर दिया। इस बैठक में विभागीय मंत्री संतोष कुमार सुमन समेत कई अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के 425 थानों में पुलिस निरीक्षक को ही थाना अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार वर्तमान में चिन्हित 208 थानों के अलावा 217 थानों को सामान्य श्रेणी के थानों में उत्क्रमित किया गया है। इन थानों में पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को भी थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। साथ ही आपातकालीन या अल्पकालिक अवकाश की स्थिति में पुलिस निरीक्षक रैंक से नीचे के किसी भी पदाधिकारी को इन थानों में प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। वैशाली जिले के हाजीपुर में औद्योगिक क्षेत्र गुरौल फेज एक में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की परियोजना समाशोधन समिति की बैठक में इस संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। यह बैठक उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 एकड़ में स्थापित होने वाली इस इकाई के लिए 17 करोड़ 25 लाख रुपए तक का निवेश किया जाएगा। इस परियोजना से 200 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। शिक्षा विभाग वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के मामले में 6 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 8 मई से प्रभारी हो गया है। आदेश में कुछ अधिकारियों की वेतन पेंशन से कटौती और वेतन वृद्धि पर रोक की अनुशंसा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गौरतलब है कि पिछले महीने आयोजित पुरस्कार के पहले चरण के तहत बिहार की 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और डोमकच लोक नृत्य परंपरा के पुरोधा विश्वबंधु को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके परिजनों ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त किया। वहीं भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला और लोक गायन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इस बीच दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इधर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष पहली बार नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक के आंकड़े को पार कर गया है। कोसी बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए बराज से 1,955 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। इधर मधुबनी के झंझारपुर में कमला बलान नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। राज्य सरकार ने मानसून अवधि में 4 महीने के प्रतिबंध के दौरान अन्य राज्यों में बालू की बिक्री और परिवहन की अनुमति दे दी है। खान और भूतत्व विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार बालू स्टॉक के लाइसेंसधारी 26 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य के बाहर बालू भेज सकते हैं। इसके लिए ई चालान निर्गत किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज और कल 13 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा। ये ट्रेन पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र और दानापुर समेत अन्य रेलवे स्टेशनों से परिचालित होगी। रेलवे की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 6 और कल 7 विशेष ट्रेनें चलेंगी। इधर आगामी 27 जून से दानापुर और पुणे के बीच अमृत भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह साप्ताहिक ट्रेन पुणे से प्रत्येक शनिवार और दानापुर से प्रत्येक सोमवार को चलेगी। वहीं धनबाद मंडल में छीपादोहर, बरवाडी, मंगरा रेलवे स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन चालू करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के मद्देनजर 14 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। साथ ही 16 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। लखीसराय जिले में आयोजित नीट पुनर्परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थियों के माध्यम से परीक्षा दिलाने वाले संगठित गिरोह के 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त जांच में यह कार्रवाई की गई है। श्री कुमार ने बताया कि जिले के 3 परीक्षा केंद्रों से 9 फर्जी परीक्षार्थी, सहयोगी और बायोमेट्रिक कर्मियों समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में किउल तथा कवैया थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिवहर जिले की एक अदालत ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में एक दोषी को 20 वर्ष कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड दिया है। मधुबनी जिले में कलवाही थाना पुलिस ने मांगा टोल बेलाही में छापेमारी कर 100 लीटर देशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 एक दिवसीय लीग मुकाबले में टीम बी ने टीम ए को 5 विकेट से हरा दिया। भागलपुर के सैंडिश कंपाउंड में खेले गए मुकाबले में टीम ए के लिए कप्तान और विकेटकीपर अक्षरा गुप्ता ने 68 गेंदों में 164 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की बड़ी खबर नीट पुनर्परीक्षा से जुड़ी है। अखबार लिखता है मेडिकल छात्र ने बनाया स्कॉलर गैंग, 30 गिरफ्तार। दैनिक जागरण की सुर्खी है किसानों को राहत, मुख्यमंत्री ने खातों में भेजी 260 करोड़ की राशि। दैनिक भास्कर ने लिखा है पीएमसीएच में अब सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे एक छत के नीचे। प्रभात खबर की विशेष खबर है म्यूचुअल फंड निवेश में बिहार टॉप 10 राज्यों में शामिल, औसत एसेट अंडर मैनेजमेंट में 80,731 करोड़ रुपए पहुंचा। आज अखबार का शीर्षक है भरत तिवारी मुठभेड़, 5 पुलिसकर्मी निलंबित। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं लखनऊ की कोचिंग में लगी आग, 15 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम

0: सिद्धांत प्रेरक बल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। प्रदेश के 425 थानों में पुलिस निरीक्षक होंगे थाना अध्यक्ष पद पर नियुक्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के राज्य के शेष भागों में आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

श्रोताओ, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है इस समय आकाशवाणी भागलपुर मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। प्रातः के 9:06:37 हुए हैं। पेशे खदमत है फिल्मी गानों का हमारा कार्यक्रम नकमे नए पुराने।

जी हाँ दोस्तों, गाने से आपने समझ ही लिया होगा कि ये गाना हम प्ले कर रहे हैं सिंघम फिल्म से, और आवाज़ है श्रेया घोषाल और साथियों की। इस गाने के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और इसकी धुन तैयार की है अजय अतुल ने।

0: ये खूबसूरत सा युगल गीत आप तक पहुंच रहा था फिल्म वीर चारा से। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर। साथियों, फिल्मी गानों का ये सफ़रनामा आगे भी जारी रहेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ साथ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3 year warranty. TNC applies.

फिल्म संगीत के कार्यक्रम नकमी नई पुरानी को जारी रखते हुए दोस्तों अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम गीत फिल्म का, ये गीत जिसे गाया है जगजीत सिंह ने।

जी हाँ दोस्तों, राज बब्बर साहब के ऊपर फिल्माया गया ये गीत था। आज राज बब्बर साहब का जन्मदिन है तो उसी संदर्भ में हमने ये गीत आप तक पहुंचाया। जी हाँ साथियों, ये गीत था प्रेम गीत फिल्म से और इसकी रचना थी इंदिवर की और आवाज़ और संगीत दिया था जगजीत सिंह ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब अंत में आपको सुनवाते हैं जिंदगी और तूफान फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। गायक कलाकार हैं मुकेश, शब्द रचना राम अवतार त्यागी की है और संगीत रचना है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की।

0: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग
1: साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम नकमे नए पुराने, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज़्मे उर्दू, प्रस्तुत करता है मोहम्मद सरसार अहमद।

जो गुनाहों से भर ले दामन को, जो गुनाहों से भर ले दामन को, बेवजह दोस्तों के एहसान ने, बेवजह दोस्तों के एहसान ने काट कर रख दिया है गर्दन को, काट कर रख दिया है गर्दन को। और ये शेर बतौर ख़ास कि भूख ने सामने अमीरों के, भूख ने सामने अमीरों के देख रुसवा किया भागन को, देख रुसवा किया भागन को। अपनी उलझन में लोग उलझे हैं, अपनी उलझन में लोग उलझे हैं, कौन समझेगा मेरी उलझन को। अपनी उलझन में लोग उलझे हैं, कौन समझेगा मेरी उलझन को। अपना किस्सा तमाम कर डाला, अपना किस्सा तमाम कर डाला, पाल कर आस्तीन में नागन को, पाल कर आस्तीन में नागन को। मिट सकी न गुनाह की बदबू, मिट सकी न गुनाह की बदबू, खूब तन पे मला है चंदन को, खूब तन पे मला है चंदन को। अपनी तन्हाई का रजी किस्सा, अपनी तन्हाई का रजी किस्सा, उसने ख़त में लिखा था साजन को, उसने ख़त में लिखा था साजन को। अगली गज़ल का मतलब मुलाहजा फरमाएं कि उंगलियां मुझ पे जब वो उठाने लगे, उंगलियां जब वो मुझ पे उठाने लगे, आईना हम उन्हें तब दिखाने लगे, उंगलियां मुझ पे जब वो उठाने लगे, आईना हम उन्हें तब दिखाने लगे, बात सच्ची जो उनको बताने लगे, बात सच्ची जो उनको बताने लगे, मेरे होठों पे ताला लगाने लगे, मेरे होठों पे ताला लगाने लगे। और जब नज़र उनकी मेरी नज़र से मिली, जब नज़र उनकी मेरी नज़र से मिली, हाथ से अपना मुंह वो छिपाने लगे, हाथ से अपना वो मुंह छिपाने लगे। और ये शेर बतौर ख़ास बाल की जब सफ़ेदी उजागर हुई, बाल की जब सफ़ेदी उजागर हुई, आईनों से वो नज़रें चुराने लगे, आईनों से वो नज़रें चुराने लगे। उनकी याद आ गई जब भी तन्हाई में, उनकी याद आ गई जब भी तन्हाई में, जख्म दिल के मेरे मुस्कुराने लगे, जख्म दिल के मेरे मुस्कुराने लगे। और शुक्रिया उनका दामन मुयस्सर हुआ, शुक्रिया उनका दामन मुयस्सर हुआ, बाद मुद्दत के आंसू ठिकाने लगे, बाद मुद्दत के आंसू ठिकाने लगे। और ये शेर भी कि शाख पर जब शजर के समर आ गए, शाख पर जब शजर के समर आ गए, खूब चारों तरफ से निशाने लगे, मिल गई रोशनी जब से तौहीद की, मिल गई रोशनी जब से तौहीद की, हम गुनाहों से दामन बचाने लगे, हम गुनाहों से दामन बचाने लगे। और ये शेर भी मुलाहजा करें, वक्त ने साथ उनका ज़रा क्या दिया, वक्त ने साथ उनका ज़रा क्या दिया, वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे, वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे। अब है पहचान मुश्किल करूं क्या करूं, अब है पहचान मुश्किल करूं क्या करूं, लोग चेहरों पे चेहरे लगाने लगे, लोग चेहरों पे चेहरे लगाने लगे। और ये शेर भी कि चांद छूने की कोशिश किया जब भी हम, चांद छूने की कोशिश किया जब भी हम, हाथ उठा तो कदम डगमगाने लगे, हाथ उठा तो कदम डगमगाने लगे। उनसे की जब गुजारिश मुलाकात की, उनसे की जब गुजारिश मुलाकात की, फ़ोन पर बहाने बनाने लगे, तिश्नगी मुझ पे जिस वक्त गालिब हुई, तिश्नगी मुझ पे जिस वक्त गालिब हुई, तिश्नगी मुझ पे जिस वक्त गालिब हुई, गैर की समत सागर बढ़ाने लगे, ज़िंदगी में वो आए नहीं आज क्यों, ज़िंदगी में वो आए नहीं आज क्यों, मेरी तुर्बत पे आंसू बहाने लगे, मेरी तुर्बत पे आंसू बहाने लगे। वक्त ने जब तमाचा लगाया उन्हें, वक्त ने जब तमाचा लगाया उन्हें, होश जाकर कहीं तब ठिकाने लगे, होश जाकर कहीं तब ठिकाने लगे। भूलना उनको चाहा तो मुझको रजी, भूलना उनको चाहा तो मुझको रजी, याद पहले से जायद वो आने लगे, याद पहले से जायद वो

0: जावेद भाई, अभी हम लोग सामेईन को साज़ो नगमा के तहत मिताली सिंह की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनवा रहे थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कलाम का जो अंदाज़ जो कुछ भी था जावेद भाई, बड़ी संजीदा और बहुत दर्दीला था।
1: बिल्कुल, दर्द भरे गज़ल थी। तो फैज़ भाई देखिए, घड़ी की तरफ भी देखिए।
0: जी हाँ, हम लोग
1: घड़ी खामोश लहजे में अब हम लोगों से अलविदा।
0: जी जी जी, अलविदा कह।
1: लेकिन चलते चलते फैज़ भाई सामीन को ये बता दें
0: कि
1: सामीन, प्रोग्राम बज़्म उर्दू की पेशकश मोहम्मद सरशार अहमद की थी।
0: जी।
1: तो सामीन, आज बस इतना ही। इसी के साथ आज की बज़्म से जावेद अनवर
0: और फैज़ रहमान इजाज़त का तालिब है।
1: खुदा हाफिज़।

अभी आप समाप्त फरमा रहे थे हमारा हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम बज़्मे उर्दू, पेशकश मोहम्मद सरसार अहमद की थी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए लोकगीत कार्यक्रम।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुना एक कृषि गीत। इसके साथ ही लोकगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज के कलाकार थे जय नारायण शर्मा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है कार्यक्रम नई फिल्मों से।

प्रोग्राम का पहला गीत आपने सुना विशाल मिश्रा की आवाज़ में, फिल्म थी धड़क टू। प्रोग्राम का अगला गीत अरिजीत सिंह और अमित त्रिवेदी की आवाज़ों में, फिल्म है आज़ाद।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का कार्यक्रम नई फिल्मों से। हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए गए फिल्में थीं धड़क 2, आज़ाद, चिड़िया, धुरंधर, हक और मेट्रो। मिलीजुली आवाज़ें थी विशाल मिश्रा, अमित त्रिवेदी, अरिजीत सिंह, दिव्य कुमार और अरमान खान की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम गुलदस्ता।

एक महफिल में होती है कई महफिल शरीक, एक महफिल में होती हैं कई महफिल शरीक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है फिल्म संगीत के इस खास प्रोग्राम में। नाम तो आप जान ही रहे हैं, कार्यक्रम है गुलदस्ता और इस प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपका दोस्त इस्माइल, करता है स्वागत, वेलकम और खुश आमदीद। आधे घंटे के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ होते हैं, करते हैं बातें और सुनवाते हैं सदाबहार नगमे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म है आपकी कसम।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: स्टूडियो की घड़ी में 11:38 और पूरे 44 सेकंड प्रोग्राम चल रहा है गुलदस्ता। और कार्यक्रम में अगला गीत है, इससे पहले अहमद फराज की लिखी दो लाइनें हम आपको सुनाना चाहेंगे।

दोस्तों कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी भागलपुर के साथ, और हम जानना चाहेंगे आपके विचार कार्यक्रम के बारे में। आप चिट्ठियाँ लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है phaiarbhagalpur@gmail.com। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम गुलदस्ता, ये आकाशवाणी भागलपुर है। दिन के 12 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं नारी लोक कार्यक्रम, प्रस्तुत करता है श्री पार्वती के।

0: नारी लोक सुन रही सभी बहनों को भारती का नमस्कार। बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। यह दिन हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यह खेल भावना तथा एकजुटता और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की याद में हम मनाते हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस के सोरबोन में बैरोन पियरे द कुवर्तिन द्वारा की गई थी। उन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। इस दिवस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिंग, जाति तथा धर्म के भेदभाव के बिना दुनिया भर में खेलों और एथलेटिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम है खेल सेतु निर्माण बाधाएं तोड़ना है। आइए बहनों, आज के दिवस की महत्ता को हम भी समझें और बच्चों तथा युवा पीढ़ी को खेल की दिशा में अग्रसर करने में अपनी भूमिका निभाएं। उनमें इस क्षेत्र में जाने के लिए अभिरुचि पैदा करें ताकि वह समाज एवं देश का नाम भविष्य में रोशन कर सके। बहनों, आज के दिन हम संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज के लिए लोक सेवा के महत्व और गुणों का सम्मान करना है। विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के महत्व को उजागर करना तथा लोक सेवकों के कार्यों की मान्यता देना है। इसे मनाने का प्रस्ताव 20 दिसंबर 2002 को पारित हुआ था। यह दिवस हमें उन सभी लोक सेवकों के योगदान को सम्मानित करने का अवसर देता है जो समर्पण, जवाबदेही तथा सेवा भावना के साथ समाज को बेहतर बनाने में कार्यरत हैं। इसे मनाने के पीछे लोक सेवाओं के महत्व को पहचान देना है तथा विकास में उनके योगदान को रेखांकित करना तथा लोक सेवकों के कार्यों का सम्मान करना है। साथ ही युवाओं के सार्वजनिक क्षेत्र में भविष्य निर्माण के लिए प्रेरित करना है। वस्तुतः आज के दिन यह बताने की कोशिश की जाती है कि जन सेवा केवल एक पेशा नहीं वरन समाज और राष्ट्र निर्माण का आधार है। बहनों, अपनी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गाँव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गाँव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार, एनपीएस संचय के साथ।
0: अंतराल के बाद बहनों, अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बहनों, संगीत हमें तरोताजा रखने का कार्य करता है। यह हमारे जीवन में संगीत की भूमिका काफी अहम होती है। तो आइए बहनों, अब सुनते हैं ये मनमोहक गीत।

0: इस गीत के बाद बहनों आइए सुनते हैं पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। आज की भेंट वार्ता का विषय है रक्तदान आवश्यक क्यों। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर रेखा झा और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी मुनमुन कुमारी। बहनों रक्तदान महादान है, यह गंभीर स्थितियों में जीवन दान का काम करता है। एक तरह से यूं कहें कि व्यक्ति को मौत के मुंह में जाने से बचा लेता है। आइए बहनों इसी विषय पर हम महत्वपूर्ण जानकारी इस पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता के माध्यम से जानते हैं।
1: हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे भागलपुर शहर की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक की प्रभारी डॉक्टर श्रीमती रेखा झा। बहनों डॉक्टर साहिबा से आज हम चर्चा करेंगे रक्तदान से संबंधित विषय पर। डॉक्टर साहिबा आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहिबा मेरा आरंभिक प्रश्न है, रक्तदान क्यों ज़रूरी है और रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है?
2: रक्तदान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि बहुत तरह के मरीज आते हैं, एक्सीडेंट वाले हों या प्रसव वाले हों या किसी बीमारी से ग्रसित हों, किसी को भी रक्त की कमी होती है तो उनके लिए जानलेवा होता है। जानलेवा होता है, अतः रक्त की आवश्यकता पड़ती है और रक्त रक्तदान से ही आ सकता है, ये कहीं फैक्ट्री में बन नहीं सकता है, अतः रक्तदान की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि रक्तदान किसे करना चाहिए? क्या रक्तदान प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं और एक व्यक्ति कितने अंतराल में रक्तदान कर सकता है?
2: रक्तदान जो है 18 वर्ष से लेके 55 वर्ष के बीच सबसे अच्छा होता है, इसलिए कि शरीर का समुचित विकास हो गया रहता है 18 वर्ष में जी। अतः जो है वो रक्त देने के काबिल रहता है और चूँकि ये स्वैच्छिक कार्य होता है तो वो लीगली अपने डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए भी एडल्ट हो गया रहता है। अतः 18 से 55 वर्ष अच्छा होता है। 18 वर्ष से कम कर लेंगे तो उन्हें कोई बीमारी हो सकती है और अगर 55 वर्ष से ज़्यादा कर लेंगे तो हो सकता है जिससे लें उनको कोई परेशानी हो, लेकिन कुछ स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा दिन तक भी 65 वर्ष तक भी दे सकते हैं। और अंतराल जो है 3 महीने का होना चाहिए क्योंकि रक्त कोशिकाएँ 3 महीने में बन करके वापस उतना ही हो जाता है।
1: कई बार रक्तदान के लिए लोग इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि उन्हें खुद का खतरा रहता है, क्या ये मिथक है?
2: ये बिल्कुल ही मिथक है क्योंकि रक्तदाता को हमेशा चुन करके लिया जाता है जो स्वस्थ हों, जिन्हें कोई खतरा नहीं हो, जिनको अपना रक्त देने से दूसरे का जान बचे और उनको कोई तरह की परेशानी नहीं हो। ऐसे रक्तदाता जो हैं इसलिए रक्त दे सकते हैं क्योंकि रक्त कोशिकाएं तो ऐसे भी हर हमेशा जो है प्लीहा में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाती है, अतः जो है वो तो ख़त्म होना ही है, जिस चीज़ को ख़त्म होना ही है उसको निकालने से कोई हानि नहीं होती है, वो दूसरे के लिए जान बचाने वाला चीज़ हो जाता है।
1: लोगों में कई भ्रांतियां हैं कि ब्लड डोनेट करने पर वे बीमार हो जाएंगे, साथ ही ये भी भ्रांति है कि यदि उन्हें किसी और का खून चढ़ाया जाता है तो उन्हें बाद में समस्या होगी, ये कहां तक सही है?
2: रक्त देने पर कोई बीमार हो जाएंगे ऐसा जो सोचते हैं उन्हीं के लिए मैंने एक्सप्लेन किया कि रक्त की कोशिकाएँ जो प्लीहा में जाकर के मरना ही जिसका तय है उसको निकालने में उस व्यक्ति को कोई भी हानि नहीं हो रही है, अतः वो बीमार नहीं पड़ जाएंगे, अतः उन्हें स्वेच्छा से हमेशा रक्तदान करना ही चाहिए।
1: और रक्त जिनको रक्त चढ़ाया जाता है उन्हें भी ये डर रहता है?
2: उन्हें डर रहता है क्योंकि उन्होंने सुना रहता है कि रक्त जो है रिएक्शन करता है
1: जी जी,
2: तो रिएक्शन ना करे इसीलिए सही से क्रॉस मैच करके रक्त दिया जाता है। फिर भी जितना भी बायोलॉजिकल फ्लूइड है अगर एक शरीर से दूसरे में जाता है तो हल्का फल्का रिएक्शन हो सकता है, जिसके लिए इसीलिए रक्त जो है चढ़ाने का जगह भी कोई अस्पताल ही होना चाहिए। अस्पताल में होने पर कोई तरह का खतरा नहीं है क्योंकि किस प्रक्रिया से चढ़ाना है और क्या सावधानियाँ बरतनी है वो वहाँ पर उपलब्ध होता है।
1: तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने अभी कहा कि क्रॉस मैच क्या है?
2: क्रॉस मैच का मतलब हुआ कि जिसको रक्त देना है और जो रक्त दिया जाएगा दोनों को डायरेक्ट मैच करा के देखा जाए कि कोई तरह का रिएक्शन होता है कि नहीं।
1: तो एक सामान्य सी बात हमारे सामने आती है कि एक ब्लड ग्रुप को उसी ब्लड ग्रुप के लोग चढ़ाते हैं, तो ऐसा क्यों? क्या
2: ब्लड,
1: कोई
2: ब्लड अलग... ग्रुपिंग जो होता है वो एक सिस्टम है, एबीओ आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग एक सिस्टम है, आरएच ग्रुपिंग एक अलग सिस्टम है। इस प्रकार की 33 तरह की का सिस्टम्स है, तो हर सिस्टम को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप ये देख सकते हैं। तो वो देख करके क्रॉस मैच किया जाता है। उसके बाद जो माइनर सिस्टम्स है उसके कारण ही क्रॉस मैच करके देखा जाता है कि ये ए ए तो है, मिल तो जाएगा, लेकिन कोई माइनर ब्लड ग्रुप ग्रुप में डिफरेंस होगा तो वो फिर रिएक्शन कर देगा। अतः क्रॉस मैच फाइनल आंसर होता है कि किस प्रकार से ब्लड दिया जाए।
1: डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या डायबिटीज या उच्च रक्तचाप के व्यक्ति भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
2: डायबिटीज वाले व्यक्ति जो हैं दवाई लेते रहते हैं, इंसुलिन लेते रहते हैं, तो वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो दवा होती है वो मरीज को जाके हानि करेगी। लेकिन उच्च रक्तचाप वाले जो है वो भी लेते हैं, लेकिन माइल्डली हाइपरटेंसिव, जो थोड़ा सा रक्तचाप ज़्यादा हो वो दे सकते हैं। उसमें हल्का सा अगर दवाई भी है तो उतना कोई हानि नहीं करेगा। तो उच्च रक्तचाप वाले ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं, उनके लिए वो फायदेमंद ही होता है, क्योंकि ब्लड निकालने से रक्तचाप थोड़ा घटता है।
1: अभी हमने कोविड जैसी महामारी को झेला और सभी ने कोविड वैक्सीनेशन भी कराया, तो क्या कोविड वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
2: वो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो वैक्सीन उनके अंदर गया है, वैक्सीन मरा हुआ मतलब जीवाणु उसमें जो भी है वो मरा हुआ है जो कोविड का वैक्सीन है, और उससे सिर्फ इम्यूनाइज होता है, मतलब एंटीबॉडीज बनते हैं। तो वैसा ब्लड किसी और को जाने से कोई हानि नहीं है, फिर भी एहतियात के लिए 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन के बाद आप डोनेट करें।
1: आप अभी ब्लड
2: आपने सुना होगा ना कि कोविड रिकवर्ड लोगों ने प्लाज्मा दिया, तो आखिर उनसे ब्लड लिया गया, प्लाज्मा बनाया गया और दूसरों को दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि वो डोनेट नहीं कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप ब्लड बैंक में अभी कार्यरत हैं, तो प्रतिदिन कितने ब्लड की डिमांड होती है?
2: 40 यूनिट रोज डिमांड होता है करीब, मतलब ये एवरेज है, और इसमें से 10 करीब बिना रिप्लेसमेंट के जाता है।
1: और कितने लोग डोनेट करने आते हैं?
2: वही मतलब 30 लोग करीब आते होंगे डोनेट करने।
1: आज हमारे समाज में रक्त की कमी से कई महिलाएं प्राण त्याग देती हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: पहले से तो मृत्यु दर जो है महिलाओं में कम हुआ है पहले से, और ये इसलिए मृत्यु दर बढ़ा हुआ है क्योंकि स्वास्थ्य भी खराब होता है महिलाओं का, और बहुत तरह की बातें होती है, गलत इलाज से केसेस कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसके बाद अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी हालत अच्छी नहीं होती है, ऐसी महिलाएं ही प्राण त्यागती हैं। अगर आप अच्छे से भोजन करें और गलत जगह इलाज ना कराएं तो ऐसा संभव नहीं है कि जान पे बनाएगी।
1: आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो महिलाओं में रक्त की कमी प्रायः देखी जाती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं?
2: ये खान पान की कमी से ही होता है, क्योंकि महिलाएं घर में सबसे अंत में खाती हैं, और आजकल जो है फास्ट फूड का ज़माना आ गया है, तो टेस्ट पर ध्यान दिया जाता है, पौष्टिकता पर ध्यान कम दी जाती है, इस वजह से भी ऐसा होता है कि महिलाओं में एनीमिया पाई जाती है।
1: जो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खान पान और क्या कोई खास
2: दवाई? जो डोनेट कर रहे हैं उन्हें खाना अच्छे से खा के आना चाहिए, रात में शराब नहीं पी होनी चाहिए, रात भर की अच्छे से नींद आई होनी चाहिए, उसके बाद उन्हें डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और 4 घंटा के अंदर काफ़ी पानी और शरबत पीना चाहिए ताकि जो भी पानी निकला है शरीर से वो वापस हो जाए।
1: जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या उसे किसी प्रकार की समस्या हो सकती है?
2: जो डोनेट करते हैं उनको स्क्रीनिंग के बाद ही डोनेशन लिया जाता है, मतलब उनको देख करके, सवाल पूछ करके, फॉर्म भरवा के, तो उन्हें कोई समस्या होने की कोई संभावना नहीं होती है।
1: यदि जिस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया गया है तो अगर उन्हें बाद में किसी प्रकार का रिएक्शन होता है तो उसके लिए क्या सुविधा है?
2: ये बाद में रिएक्शन जो आप बोल रही हैं उसकी संभावना ही नहीं होती है, क्योंकि 15 मिनट बिल्कुल स्लो चलाना है ब्लड, और उस बीच जो रिएक्शन हुआ उसी समय रिपोर्ट करना है, और आधे घंटे के अंदर ही सारा रिपोर्ट करना है। अच्छा। बाद में लेट रिएक्शन का कोई मतलब खास नहीं है, लेट रिएक्शन अगर हल्का हुआ कुछ भी तो उससे कोई समस्या नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब ये बताइए कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में अभी रक्तदान में सबसे आगे कौन जा रहे हैं?
2: पहले भी पुरुष ही आगे थे, अभी भी पुरुष ही आगे हैं बिहार में। कुछ स्टेट है जिसमें महिलाएं आगे हैं, जैसे पंजाब,
1: वहाँ महिलाएं आगे हैं।
2: वहाँ महिलाएं आगे, हमारे यहाँ नहीं है।
1: तो इसका मतलब है कि जागरूकता की कमी है।
2: जागरूकता की भी कमी है और स्वास्थ्य की भी कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं की छटनी ज़्यादा हो जाती है, वेट भी अंडर वेट होता है, एनीमिया भी होता है, तो उनसे लिया भी नहीं जा सकता है।
1: रक्तदान के प्रति सरकार के द्वारा क्या जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं अभी?
2: इसके लिए हर एक रक्त अधिकोष में एक काउंसलर है, जिसे बताया गया है कि वो लोगों को बताए कि रक्तदान से कोई हानि नहीं है, उनको समझाए, हर तरह का काउंसलिंग करे। सरकार का अभी तो यही चल रहा है, और बीच बीच में सरकार कुछ प्रोग्राम करती है जिससे कि उत्साहवर्धन किया जाए, जिसमें रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाता है।
1: अभी भागलपुर में यदि किसी को रक्त की आवश्यकता हो तो वो कहाँ जाए?
2: हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मायागंज में, जहाँ मैं पदस्थापित हूँ, वहाँ पर रक्त उपलब्ध होता है, और वहाँ पर कंपोनेंट भी उपलब्ध होता है, प्लाज्मा और प्लेटलेट वगैरह, और बाकी और भी ब्लड बैंक्स हैं जो सदर अस्पताल में हैं, ग्लोकल अस्पताल और सुशीला अस्पताल, तो ये सब सारे जगह हैं जहाँ वो रक्त के लिए जा सकते हैं।
1: क्या इसके लिए किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है?
2: कोई प्रोसेस नहीं है, आपको एक रक्तदाता लेके जाना है, उसके बदले में आपको मिलेगा। और सरकारी रक्त अधिकोष में जाने पे अगर मरीज प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है तो 500 का एक रसीद काटना होता है, और अगर वो सरकारी अस्पताल में है तो कोई भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन डोनर सबको लेके जाना है, विशेष परिस्थिति में बिना डोनर के भी हम लोग अलाउ करते हैं।
1: यदि किसी को रक्त का दान करना हो तो वो अभी भागलपुर में कहाँ जाए?
2: मैंने अभी बताया ना कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जो रक्त अधिकोष है, वहाँ वो बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, और 24 घंटा वो खुला होता है, और कभी भी रक्तदान कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अंत में आप हमारी बहनों को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
2: महिलाओं और बहनों को ये कहना चाहूँगी कि रक्तदान जरूर करना चाहिए, उससे डर के पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनों को बचाने में और किसी और की जान बचाने में, दान करने में कोई हानि नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जाऊंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे रक्त लिया जाएगा वो बिना देखे नहीं लिया जाता है, उनको देख के ही लिया जाएगा। आप कम से कम पहल तो करें कि आकर के रक्तदान करें, अगर आप देने लायक नहीं होंगे तो स्वयं ही वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी और तकनीशियन आपको बता देंगे कि आप नहीं दे सकते हैं, कोई और देगा।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपने हमें रक्तदान के विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
5: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनिए वैसी पंचायत से, गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
6: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए, नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला, तो बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
5: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
0: अभी बहनें सुन रही थीं पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। आज की भेंटवार्ता का विषय था रक्तदान आवश्यक क्यों। भेंटवार्ताकार थीं डॉक्टर रेखा झा, और इनसे बातचीत कर रही थीं मुनमुन कुमारी। इस भेंटवार्ता के बाद बहनों आइए चलते चलते उठाते हैं संगीत का आनंद और इसी कड़ी में सुनते हैं ये मधुर गीत।

ये था बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। प्रस्तुत करता थी श्री पार्वती के। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी,

के लिए आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओ, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना? हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना? लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओ, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओ, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओ, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है जी। तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पूरा पाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओ, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली

0: मिस्ट्री गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओ, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओ, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल कर चल। अरे चल सब खोल रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार

अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है,
2: चल।
1: ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए। कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ?
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
2: है।
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझाकर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
1: चलो चलो चलो,
3: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते
0: हैं। और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सेल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम में आज की गायिका हैं वीणा देवी। आरंभ में इनसे सुनिए सोहर।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: लोकरंग में इस समय आप सुन रहे हैं वीणा देवी को। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आप पुनः प्रादेशिक समाचार के बाद सुन सकेंगे। और प्रादेशिक समाचार के लिए आइए शामिल होते हैं रांची के प्रसारण में।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात, दोनों राज्यों के वित्त प्रबंधन पर हुई चर्चा। पश्चिमी सिंहभूम के एफसीआई गोदाम में लाखों का नमक बर्बाद होने पर मंत्री दीपक बिरुआ सख्त, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में पीसीएमपी एनडीटी एक्ट की राज्य स्तरीय बैठक, अब अधिकतम दो ही केंद्रों पर सेवा दे सकेंगे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर झारखंड समेत पूरा देश कर रहा है नमन, केंद्रीय मंत्रियों अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेलोत्सव का आयोजन, एशिया कप हॉकी में मेडल जीतने वाली झारखंड की चार बेटियां सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज दो पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म

0: पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज झारखंड के लिए गौरव का क्षण है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और दिग्गज आदिवासी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज नई दिल्ली में मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान प्रदान करेंगी। शिबू सोरेन की ओर से उनकी पत्नी रूपी सोरेन इस सर्वोच्च पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई इस बैठक में दोनों राज्यों के वित्तीय प्रबंधन और विकास पर चर्चा हुई। बैठक में बिहार के विभाजन के बाद के बजटीय अनुभवों पर भी सकारात्मक बातचीत हुई। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने धनबाद सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। सभापति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया जाए।
2: प्रशासन का जो काम हो रहा है वो नियम के अनुसार हो रहा है या नियम का उल्लंघन करके हो रहा है, तो इस बारे में हम लोगों ने जनहित के कई नियम है, जैसे सेवा की गारंटी का अधिकार अधिनियम है, शिक्षा अधिनियम है, जन सूचना अधिकार अधिनियम है, इसके बारे में उन्होंने बात किया।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के गोदाम में लापरवाही के कारण लाखों रुपए मूल्य का नमक बर्बाद होने का गंभीर मामला सामने आया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि सरकारी संपत्ति की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राज्य में बेटियों को बचाने और अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में PC&PNDT एक्ट के तहत राज्य स्तरीय बैठक हुई। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों और डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। नए निर्देशों के तहत कोई भी चिकित्सक अब अधिकतम 2 ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। आकाशवाणी के ताजातर समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज

कार्रवाई का निर्णय लिया गया। नए निर्देशों के तहत कोई भी चिकित्सक अब अधिकतम दो ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। आकाशवाणी के ताजातर समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज

0: परियोजना का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाना है ताकि वे शुरुआती स्तर पर आत्महत्या के जोखिम की पहचान कर सकें। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव में इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित एक ई एम्बुलेंस मेले में बीमार और घायल कांवरियों का सहारा बनेगी। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने छात्रों के इस उपयोगी नवाचार की सराहना की है।
1: दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सेंटर फॉर ईवी व्हीकल्स, उसका यहाँ पे बच्चों के प्रोजेक्ट्स और बच्चों के जो अच्छे इनोवेशन था उसका एक कलेक्शन के साथ इसकी शुरुआत की गई और बहुत अच्छा देख के लगा कि कुछ ऐसे अच्छे इनोवेशन का शुरुआत की गई।
0: रांची पुलिस के एसआईटी ने हिंदपीढ़ी, सुखदेव नगर और कोतवाली क्षेत्रों में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में शामिल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि इनके पास से लगभग 28 ग्राम ब्राउन शुगर, नकदी और वाहन जब्त किए गए हैं।
2: रांची पुलिस की टीम के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया गया है। इसी क्रम में अलग अलग 3 जगह से ब्राउन शुगर रेड्स की गई हैं। उस टोटल 5 लोगों को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हिंदपीढ़ी थाना अंतर्गत जिसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, कोतवाली थाना क्षेत्र से 1 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, लगभग 18 ग्राम जो है ब्राउन शुगर रिकवर किया गया।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स में थोड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर आ गया, जबकि निफ्टी 90 अंक गिरकर 24,013 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। तेज हवाओं की चेतावनी को देखते हुए विभाग ने पलामू प्रमंडल सहित 14 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। राजधानी रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेल उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग से भारतीय सेना के गुरुलाल सिंह और महिला वर्ग से ममता कुमारी विजेता बनी। मुख्य अतिथि और पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो ने ओमान में अंडर-18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी झारखंड की 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों नीलम टोपनो, खोली कुमारी, सुगम सांगा, श्रुति कुमारी और उनकी कोच करुणा पूर्ति को विशेष रूप से सम्मानित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात, दोनों राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर हुई चर्चा। पश्चिमी सिंहभूम के एफसीआई गोदाम में लाखों का नमक बर्बाद होने पर मंत्री दीपक बिरुआ सख्त, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में PCNP-NDT एक्ट की राज्य स्तरीय बैठक, अब अधिकतम 2 ही केंद्रों पर सेवा दे सकेंगे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि पर झारखंड समेत पूरा देश कर रहा है नमन, केंद्रीय मंत्रियों अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेलोत्सव का आयोजन, एशिया कप हॉकी में मेडल जीतने वाली झारखंड की 4 बेटियां सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं मटकोर गायिका हैं वीणा देवी।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे जैसे स्वास्थ्य पर शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो बनवाए अपने पंचायत में और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उससे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा, तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: लोकरंग कार्यक्रम में अभी आपने सुना वीणा देवी के गाए लोकगीत, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा इंतजार।
0: के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
3: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है अशोक अंचल का लिखा धारावाहिक गंगा के सुरताल, एपिसोड नंबर 7।

0: गंगा जब हिमालय की गोद से कल कल करती भारतवर्ष के मैदानी भाग में उतरती है, तो ये गंगा न केवल भारतवासियों की धार्मिक आस्था और विश्वास का प्रतीक बन जाती है, बल्कि वो देशवासियों के लिए एक संजीवनी बनकर उनके जीवन यापन, भरण पोषण और लालन पालन में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।
1: निरंतर निश्चल प्रवाह जो पीने के लिए अमृत तुल्य स्वच्छ जल देता है, और इसकी अथाह जलराशि जो भारतवासियों के जीवन यापन के कई द्वार खोलती है।
0: गंगा नदी का यही स्वरूप उसे माँ के रूप में प्रतिष्ठित करता है।
1: कहीं ये आस्था का गीत बन जाता है,
0: कहीं ये भक्ति का भाव बन जाता है,
1: कहीं ये वात्सल्य पूर्ण अनुराग के रूप में दिखाई देता है,
0: तो कहीं ये जीवन का विश्वास बन जाता है।
1: गंगा जहाँ जहाँ जाती है वहाँ के लोगों की भावनाओं में गीत बनकर उतर जाती है।
0: आज हम भावनाओं के उन्हीं गीतों को गढ़ मुक्तेश्वर में बहती हुई गंगा की तरंगों की ताल पर गाएंगे, गुनगुनाएंगे।
1: गंगा गंगोत्री से निकलकर हरिद्वार से लगभग 150 किलोमीटर आगे गढ़ मुक्तेश्वर के लिए प्रस्थान करती है।
0: गढ़ मुक्तेश्वर में बहती हुई गंगा लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है।
1: गंगा की अविरल जलधारा यहाँ के कृषकों के लिए प्रकृति का एक ऐसा वरदान है
0: जो उनके खेतों को निरंतर सींच कर माटी से सोना उगाती है, फसलों में मोती सजाती है और अन्न धन से भर देती है इनके घर बार।
1: कुछ इन्हीं भावनाओं को समेटते हुए गढ़ मुक्तेश्वर में पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला ये गीत बरबस पर्यटकों के पांव रोक लेता है।

0: गढ़ का अर्थ होता है एक विशेष स्थान और मुक्तेश्वर यानी मुक्ति प्रदान करने वाला ईश्वर। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गढ़ मुक्तेश्वर को मुक्ति के द्वार के रूप में माना जाता है।
1: प्राचीन काल में बल्वपुर और गांडव वन के नाम से प्रसिद्ध गढ़ मुक्तेश्वर सच कहा जाए तो मंदिरों का नगर है तथा धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर है।
0: यहाँ देवी देवताओं के अत्यंत प्राचीन मंदिर एक ओर भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना पेश करते हैं
1: तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं को भक्तिभाव की असीम आस्था से नतमस्तक करा देते हैं।
0: इसके आसपास गांवड़ी, प्रेमनगर और नया बांस जैसे गांव बसे हुए हैं, जहां अधिकांश मल्लाह, राणा, राजपूत और यादव आदि जाति के लोग बसे हैं।
1: सबके जीविकोपार्जन के अलग अलग साधन हैं, लेकिन मल्लाह जाति के लोगों की आजीविका पूर्ण रूपेण गंगा पर निर्भर है।

0: गंगा जो अपनी लहरों पर संभालती है इनकी नाव तथा जल जीवों पर पलता है इनका परिवार।
1: गढ़मुक्तेश्वर प्रतिवर्ष लगने वाले कार्तिक के मेले में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की अपार भीड़ खींच लाता है,
0: इसीलिए इसे अर्धकुंभ भी कहा जाता है। लगभग 30 किलोमीटर के क्षेत्र में लगने वाले इस मेले में प्रतिवर्ष 15 से 20 लाख लोग शामिल होते हैं। अर्धकुंभ के इस गीत में इसकी विशेष व्याख्या है।

0: गंगा के अवतरण के संदर्भ में गढ़मुक्तेश्वर के नाम की सार्थकता को सिद्ध करती है एक प्राचीन लोक कथा। जब राजा भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए और हरिद्वार से आगे बढ़ने लगे,
1: तो अचानक गंगा गढ़मुक्तेश्वर की ओर मुड़ गई। कहा जाता है कि ऐसा शिव महिमा के कारण हुआ, क्योंकि इसी गढ़मुक्तेश्वर में शिव ने अपने गणों को गंगा की जलधारा से अभिषिक्त कर उन्हें मुक्ति प्रदान की।
0: तभी से गढ़मुक्तेश्वर को मुक्ति धाम के रूप में जाना जाता है।
1: इस गीत में गंगा की चंचल लहरें गांवों की गोरी के जूड़े का गजरा चुरा ले जाती हैं। तभी तो बेचारी गोरी के होंठों पर बरबस ये गीत आ जाता है।

0: ऋषि मुनियों की तपोभूमि के रूप में सुविख्यात गढ़मुक्तेश्वर की भूमि पर गंगा का अवतरण अनेक धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है।
1: इसके अतिरिक्त गढ़मुक्तेश्वर के नैसर्गिक सौंदर्य की श्री वृद्धि करने का श्रेय भी गंगा को ही प्राप्त है।
0: साय के धुंधलके में सैकड़ों दीप मालाओं के झिलमिलाते प्रतिबिंब गंगा की धारा में सहस्रों स्वर्ण कर्ण की चमक का अद्भुत आभास देते हैं।
1: तभी तो गांव की गोरी अपने साजन से ब्रज घाट ले चलने का अनुरोध करती हैं।

0: श्रावण मास में लगने वाला श्रावणी मेला भी गढ़मुक्तेश्वर का एक प्रसिद्ध आयोजन है।
1: चूंकि गढ़मुक्तेश्वर की महत्ता शिव के साथ जुड़ी है, अतः इस अवसर पर शिव पर जल चढ़ाकर उनका मस्तकाभिषेक करने की अत्यंत प्राचीन परंपरा है।
0: गंगा सखी सहेली, माँ बहन और आस्था की प्रतीक है। यहाँ की परंपराओं में रचा बसा ये लोकगीत शिव की महिमा का बखान करता है।

इस कड़ी के गायक कलाकार विमला, नीलकमल, गौतम भाटी, कीरपाल और रमेश, तथा वाद्य हारमोनियम, ढोलक तथा झाल।

0: बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला, और बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ पे हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश का।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों और कृषि संस्थाओं के हित में नैफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया है कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। श्री कुरियन की राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल समाप्त हो गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दूरदर्शी विचारों और संकल्पों को साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पटना स्थित भाजपा कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक श्री मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक भव्य पार्क बनाने की भी घोषणा की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने ऋण वितरण को लेकर बैंकों के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ऋण वितरण में बैंकों की अब तक बहुत कम ऋण वितरित किए गए हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों को प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी भी दी है। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और बांका समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। नालंदा के गिरियक में सबसे अधिक 71.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर आंधी बारिश की आशंका है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में लू चलने की संभावना है। जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अररिया जिले में 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों और कार्यालयों में नशा मुक्ति को लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनखर चौक के पास एक दोपहिया वाहन के शोरूम में आग लग गई। इस घटना में कई वाहन जलकर नष्ट हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैंने आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का
5: राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीदकारों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
4: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
6: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
7: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
9: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरु मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2:30 बजे हैं। पेश है फिल्मी गानों का कार्यक्रम चित्रपट से। प्रोग्राम का पहला नगमा अमित कुमार, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में फिल्म है हम।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
1: 8700014242।
6: कार्यक्रम संबंधित एक सूचना सुनिए। फोन इन बहनों की पसंद की रिकॉर्डिंग 25 जून दिन गुरुवार को 1:30 बजे से 2 बजे के बीच होनी है। जो बहनें अपनी पसंद के गीत सुनना चाहती हैं वे हमें इसी समय अवश्य फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर है 2400981 और भागलपुर से बाहर की बहनें STD कोड 0641 लगाकर कॉल करें। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट से कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया गीत, फिल्म है इतिहास।

0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
1: स्वागत है आपका सुबह की सुहानी धूप में। ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
2: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
1: रूबरू होंगे आप खबरों से,
2: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
1: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
2: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
1: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर।
2: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
1: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
2: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
1: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं,
1: तो जरूर सुनिए गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए पापा कहते हैं फिल्म का गीत, आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का चित्रपट से कार्यक्रम। हम आकाशवाणी भागलपुर से बोल रहे हैं। पेश है तरंग कार्यक्रम, फनकार हैं जसवंत सिंह। प्रोग्राम का आगाज सुदर्शन फाकिर के लिखी गजल से।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनियारपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे जैसे स्वास्थ्य पर शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में और छठ घाट का निर्माण करवाए थे जो नई पीढ़ी

0: आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं, और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उससे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं सलीम कौसर की लिखी गजल, फनकार एक बार फिर जसवंत सिंह।

निदा फाजली का कलाम आप सुन रहे थे, और प्रोग्राम के आखिर में एक और गज़ल, गज़ल के बोल लिखे हैं सुदर्शन फ़ाकिर ने।

तरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जसवंत सिंह की गाई गजलें। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। समोसर में सुनिए देशभक्ति गीत।

0: समोसर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से संध्या 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम और शाम 5 बजे से आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम विविध भारती। कार्यक्रम के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।
1: मान लीजिए कि दो किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर बातें करने लगे, जिससे का गुस्सा और बढ़ जाए। तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो, है ना?
2: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात। जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम, तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर गलत। अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखो भाई इतने गीत के बाद हम लोग फिर अपने उसी बात पर आ गए हाँ। कि भाई आग में घी डालने घी वाली बात पे।
1: तो क्या कह रहे हैं श्रोता?
0: साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं जो परिवार समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा, चाहे वो देशों के बीच हो चाहे वो लोगों के बीच हो घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए। क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में 1 2 3 4 चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है।
0: बिल्कुल, और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, ये आग आज में लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं तो कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सार्थक होते हैं। और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, तो मेरा अनुभव इस मुहावरे के साथ बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है नमक मिर्च लगा के, तो वो चीजें ना आग में घी डालने का काम करती हैं। और वो जो मन मुटाव है, जो मन भेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं।
0: तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस जब हम लोग जैसे पढ़ाई के समय ये मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहां पर वहीं तक सीमित
1: रखे, समझाने जी करें, ये मुहावरे जो होते थे समझाने के लिए होते थे। तो चलिए अब हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
0: समय हो चला है
1: एक अंतराल का।

0: हाँ तो मंजरी,
1: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है।
0: बिल्कुल, हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली
1: जी।
0: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हाँ तो मंजरी, अब क्या करें?
1: अब बताओ तुम क्या करते
0: हैं? एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहां पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लौ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया AI के लिए, जहाँ पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा लड़कियाँ नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
0: जी,

0: तो देखो भाई, हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, हाँ। तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करनी
1: है। बिल्कुल, आंगन की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूं चकिया धरना ये सारे जो काम होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर जुड़ जाता
1: था। यानी हर मौसम समझ लीजिए हमारे आंगन में उतरता था।
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो पंगत में जो खाना खाया जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उसकी उस पर बैठकर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग मजा है। और गर्मियों के दिन में, हाँ तुम क्या हाँ,
1: मैं ही कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो असली मजा होता था ना वो आंगन में आता था। क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप छप, इतना मजे आते थे कि मतलब
0: तुम्हें याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था, और जब निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे कि पानी
1: ये
0: भर जाए।
1: मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी, सभी के घर आंगन, जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहां पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीजें भी करना, वहां पे एंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का वो भी करते थे।
0: और देखो ना हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे, आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वहीं नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था। और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पर मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर करते थे, तो बहुत मजा आता था।
1: और रात में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते अपनी यादें जब करते हैं, साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे, तो बहुत से लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से।
0: और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं वो डुला करके एक दूसरे को करते थे हवा, वो भी बहुत याद है। और हमारे साथी क्या
1: बिल्कुल हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
0: क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहाँ बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहाँ माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहाँ बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते, रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहाँ सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी। मतलब सोच लो कितना सुंदर था वो समय, और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं। सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी, इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यही से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती है जो जीवन भर साथ रहती है। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूँ कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही, और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जो ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारी औरतें मिलकर ये गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी, यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे। ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसा के चौवारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे। याद होगा तुम्हें कि ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी वहीं रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता लेती थी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है, उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं। आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई हैं। और आंगन में झूला भी तो होता ना।

0: आती जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था। साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है। वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
0: और देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी। सुख दुख की बातें यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पर बनता था, किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितने किया करते थे, शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों के समझ लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
0: और वो याद है जब चावल बिनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे तो उनको दाना डालने में बहुत मजा आता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहाँ सुबह शाम दिया जलाया जाता था और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे। आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी है, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे। तो उसका भी एक अपना मजा है जो है आज भी।
1: और हर मौसम का चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, वो जो सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका ये होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहां जहां धूप जा रही है ना वहां वहां पे कुर्सियां भी जा रही है, चारपाई भी जा रही है और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ कर आंगन में। ये बहुत अच्छा टाइम पास था। उसके साथ वो नमक की पुड़िया याद है ना, यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गया सीजन में तो वो भी काट के सब लोग खान पान से लेकर
1: जो भी चीजें आपको जो भी काम करना है ना सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज का
0: आनंद उठाते हैं। गीत
1: बिल्कुल, गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो, हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में
1: बिल्कुल
0: गुजार लिया, हम
1: इस
0: लोग को
1: आंगन में
0: भी
1: हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी।
0: अब हमें चलना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: तो
0: सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

एक जाने माने शायर, एक जाने माने गीतकार, वो कहते हैं खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है,

0: फिल्म मुल्क।
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर लमसा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
2: ए बेखबर।
3: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
4: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
3: जी,
4: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
3: जी।
4: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है। किसी की माँ छीन लेता है,
3: ओहो,
4: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएँ हुई। बहुत छोटा था बचपन में, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेती बाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
3: जी।
4: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
3: जी,
4: ये सब जो एहसास थे ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
3: जी, जी।
4: ये 1984 का जमाना था।
3: कितने बड़े थे आप?
4: मैं 71 में पैदा हुआ।
3: ओ, तब तो बहुत छोटा।
4: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था। 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
3: काम क्या कर रहे थे?
4: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
3: अच्छा।
4: जो पान में सुपारी खाई जाती
3: जी,
4: है
3: जी,
4: वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज़्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
3: जी,
4: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ।

0: तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ। और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में,
1: जी जी जी
0: या उसको समझने में, या
1: जी
0: उसके महसूस करने में।
1: हाँ,
0: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब
1: रेडियो
0: बस
1: का स्विच ऑन कर
0: हाँ,
1: दिया।
0: कर दिया ऑन। और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे कांटा था, मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गज़ल
1: बज रही
0: बज
1: थी।
0: रही थी। और वो गज़ल थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं,
1: क्या बात है।
0: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं। बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नज़ाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गज़ल कोई गा रहा था, और इस गज़ल के साथ साथ मेरी गज़ल शुरू हो गई,
1: ओ
0: और सेम मीटर में, है ना। अब वो गज़ल तो मैंने ज़ाय कर दी, मुझे याद नहीं है। उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं,
1: शुरू हो गई, मतलब आप कहने लगे।
0: मैं हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने
0: मेरे
1: लगे।
0: अंदर का शायर जो
1: जी
0: है
1: जी
0: मुतहर्रिक हो गया,
1: हाँ
0: एक्टिव हो गया उसी गज़ल के साथ।
1: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था,
0: अच्छा,
1: तो वहां पर गजलों का प्रोग्राम हुआ करता
0: हाँ
1: था।
0: तो वो गज़ल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था, गुजरात में। और वो गज़ल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गज़ल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गज़ल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा। तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी
1: जी
0: उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस
1: जी
0: तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, ख़त्म नहीं होती। वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है। तो
1: तो वो गजल याद है।
0: गज़ल तो याद नहीं है
1: हाँ
0: क्योंकि मैंने वो ज़ाय कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे, जिसमें
1: जी
0: तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गज़ल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा
1: खून
0: जिस्म
1: से
0: ये शकील अपना।
1: क्या बात है।
0: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गज़ल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है,
0: हाँ
1: वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की, तो
0: बिल्कुल,
1: मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से लिया आपने शायरी की।
0: हाँ शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है।
0: जी हाँ,
1: शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहां पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाए, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ, या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फेहरिस्त है
0: जी
1: गानों
0: हाँ,
1: की,
0: जी हाँ, जी
1: उसकी
0: हाँ,
1: चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ वो सुना दें आप। मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
1: क्या बात है,
0: घर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए
0: जी,
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप जख्मी हो गए और वो जख्म का एक दर्द है वो भर जाता है, वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है जख्म भरते ही।
0: जी,
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है, और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है।
0: जी जी,
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत ज़रूरी है।
0: जी,
1: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसेटिव प्राणी है।
0: जी
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और ममानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता,
0: बिल्कुल सही बात,
1: जितना अधिकार आपका आपके बाप के।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो जब आप सेंसेटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहाँ पले, लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसेटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसेटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस था,
0: चल रही थी।
1: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था
0: जी।
1: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे थे, और एक दिन वो फट गया और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोक से शायर पैदा हुआ
0: जी।
1: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा
0: जी,
1: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे, जो दुनिया में थी ही नहीं लड़की।
0: जी जी जी,
1: ठीक है। तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ, जो हमारी फिल्म थी।

0: हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का
1: जी,
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है
1: उस...
0: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीजों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
1: महसूस करते हैं। वो जो खरोचे होती है वो खरोच आपको कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
1: क्या बात है,
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
1: क्या बात है,
0: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह,
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
1: वाह वाह वाह,
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है
1: जी,
0: हम
1: जी।
0: उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में,
1: हाँ।
0: गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको, नहीं उसको जीना चाहिए उस दर्द को। वही दर्द आपको बड़ा कलाकार बड़ा फनकार बनाता है,
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई बार।
0: तो दर्द हीरा है दर्द मोती है,
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपने मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियाँ, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
0: नानी की मोहब्बत है याद है।
1: बताइए, कोई किस्सा बताइए नानी का।
0: मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है। ओ,
0: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है, माँ के साथ एक आध वाकया जरूर याद है लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था उस जमाने में, टीबी लाइलाज था
1: जी जी,
0: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी मामू से, अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाक़े हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: और वो मुझे देती थी चोरी से चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी बहुत
1: जी जी।
0: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से,
1: हाँ।
0: एक आध दो सब्जेक्ट में कमजोर भी था,
1: हाँ।
0: जैसे मैं गणित में कमजोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है दीनियात कहते हैं वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमजोर था, बाकी सब में राइटिंग वगैरह में आलेख में
1: तेज थे,
0: बहुत तेज था मैं। हाँ,
1: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहाँ पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
0: हाँ, सूरत में
1: जी, सूरत में
0: जी।
1: तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
0: वो शायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में ही रहता था
1: जी,
0: और गुजरात उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था, और ये बात है 1994 की
1: जी, शीन काफ निजाम भी आया था इसमें।
0: शीन काफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, वो उसका संचालन किया था
1: जी।
0: अच्छा, आपको इतना डिटेल में पता है।
1: कुंडली आपकी पता है। लेकिन हमें श्रोताओं तो पता है।
0: उसमें सारे बड़े शायर, मतलब

0: ओ, चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था। हाँ भाई ठीक है, उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी हैं वो
0: अच्छा, और
1: जी।
0: बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती हैं
0: तो
1: जी
0: उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता
1: जी
0: है ना।
1: जी
0: और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी हैं, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई
1: जी
0: हैं, प्रोफेसर भी थी वो। तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नज़र थी वो मालती जी पे ही थी। हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतलब सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए,
1: क्या बात है।
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह।
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नज़र कर दिया, है ना। हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में
1: जी
0: उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते, हिमाकत
0: नज़र,
1: नहीं
0: हाँ, नज़र
1: करता
0: करने की हिम्मत नहीं करता।
1: जी। हाँ
0: अब मैंने जुर्रत कर ली
1: जी।
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं,
1: क्या बात है।
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्तीन का हो जाए।
1: वाह,
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया, अचानक
1: ओहो,
0: इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया इसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए
1: क्या बात है बहुत
0: अब निदा साहब
1: बढ़िया
0: ने उठ के मुझे माला पहनाया
1: जी।
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि
1: जी
0: जा दे
1: जी
0: दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी
1: बहुत
0: जिंदगी का एक
1: यादगार रहा
0: यादगार और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा, ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के ज़रिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ
1: जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहां पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद
0: इरशाद
1: आया
0: इरशाद
1: है मैं
0: इरशाद
1: सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है,
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह
0: अरे
1: जाए।
0: वाह,
1: तो ऐसे आपके तमाम अशआर लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतों खतूत का ज़माना तो नहीं रहा लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी ज़माना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते
0: हाँ,
1: हैं।
0: ये
1: और
0: शेर भी कितना यूनिक है
1: जी
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के
1: जी
0: लिए।
1: तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना
0: जी।
1: है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे, विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो आप बताइए अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी,
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो
0: जी।
1: तो सेवी अली नाम है उनका, उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे
0: जी।
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, ये बात तो नहीं पता।
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो किताब पढ़ते हैं, नावेल और कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था
0: जी।
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी 80 तक,
0: भीड़
1: और 80 तक आया है,
0: आर्टिकल
1: 15, थप्पड़, अनेक, ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थी
0: जी।
1: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थी और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खासतौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
0: वो सुंदर फिल्मांकन किया।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
0: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
1: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
0: देर आए दुरुस्त आए।
1: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने वाले हैं। तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कट कटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहाँ जाता हूँ अकेला, और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
0: जी,
1: है
0: जी,
1: बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
0: नंबर पर वही लिखा हुआ है।
1: हाँ। तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी, और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
0: जी, जी जी
1: है ना, और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
0: जी,
1: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
0: उसमें आपने गाना लिखा है।
1: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया।

0: गया, वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फ़ोन किया, और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे, और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार
0: जिद
1: फिल्म,
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज़े इश्क हूँ मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ हैं रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में ज़रूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू, है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा

0: कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, जो मैंने अभी नाम लिए मैंने
1: जी।
0: ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ, तेरी फरियाद हो गया, है ना। तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में।
1: जी, क्या बात।
0: तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया। पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूं बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया है। वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब, और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी।
0: जी हाँ।
1: तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है।
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी,
1: और रेखा भारद्वाज भी थी उसमें।
0: हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर, वो है जगजीत सिंह साहब। और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गज़ल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे ज़िद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गज़ल लिख देता हूँ। बोले नहीं, मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, मतला वही रहेगा। तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नज़र आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए। फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात है।
0: हाँ। तो मैंने कहा ठीक है।
1: हाँ।
0: फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई। पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी, वो एक लड़का है जो बज़ाहिर मर गया है
1: जी,
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है। इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बज़ाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहाँ इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है। अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे। वाह।
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह वाह।
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: हाँ।
0: के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे, और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है, और इस लाइन को आपको दो लाइन करके, और ये तीसरी लाइन ही आएगी
1: जी जी।
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में हैं, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना, पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया सुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता आज आपसे एक बात कहना चाहूँगी। समय नदी के समान है, आप एक ही पानी को दो बार नहीं छू सकते, क्योंकि जो बह गया वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। जीवन के हर पल का आनंद लें। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी हमारी तरह कुशल मंगल होंगे। चलिए, मंगलवार के कार्यक्रम की शुरुआत भी तो मंगलमयी होनी चाहिए। कार्यक्रम की रूपरेखा जान लेनी चाहिए हमें। सर्वप्रथम हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे चर्चा से। डेली ट्रिविया के अंतर्गत प्रश्न पूछेंगे आपसे, रोचक तथ्य बताएंगे आपको, संगीत पहेली पूछेंगे, फिल्मी गीत सुनाएंगे एवं अंत में समसामयिक की। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दो विषयों पर। पहला विषय है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे यानी संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस और इंटरनेशनल विडोज़ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे पर। ये प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोक सेवाओं के महत्व को पहचानना और समाज के

0: और प्रभावी सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही युवाओं को लोक सेवा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। ये दिवस सुशासन और जन कल्याण के प्रति समर्पण को मजबूत बनाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के बारे में केवल इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
0: अंतराल के पश्चात कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम जानेंगे अब अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के बारे में। यह प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विधवाओं की समस्याओं, अधिकारों और सम्मान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। दुनिया भर में अनेक विधवाएं सामाजिक भेदभाव, आर्थिक कठिनाइयों और असमानता का सामना करती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने उनके जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें समान अवसर दिलाने के लिए इस दिवस को मान्यता दी है। यह दिन समाज को विधवाओं के प्रति संवेदनशील बनने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का संदेश देता है। हमें विधवाओं को सम्मान, सहयोग और आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करना चाहिए। दोस्तों, आज चर्चा में केवल इतना ही। लेते हैं एक मधुर गीत का आनंद। गीत है आओ मिलो चलें, फिल्म जब वी मेट से लिया गया है ये गीत। गायक कलाकार हैं शान एवं उस्ताद अली खान।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत आओ मिलो चलें, फिल्म जब वी मेट से, उस्ताद अली खान एवं शान की आवाज़ में। बढ़ते हैं अपने अगले स्तंभ डेली ट्रिविया की तरफ, जहां हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। आकाशवाणी का मुख्यालय कहां स्थित है? आप तब तक इसका उत्तर सोचें और मैं आपको आकाशवाणी से संबंधित एक रोचक तथ्य बताती हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आकाशवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले स्तंभ ज्ञान विज्ञान की तरफ, जहां हम आपको ज्ञान विज्ञान से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। वैज्ञानिकों ने पहली बार प्लूटो के अलावा किसी अन्य ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक संभावित वायुमंडल का पता लगाया है। नैनो स्केल रीडिजाइनिंग तकनीक के जरिए वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टिविटी की सबसे बड़ी बाधा को दूर करने में सफलता पाई है, जिससे अल्ट्रा एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स का रास्ता साफ होगा। दोस्तों, अब हम आपको सुनाएंगे एक विज्ञान वार्ता जिसका शीर्षक है पृथ्वी एक परिचय, और वार्ताकार हैं कोमल कुमारी। तो इससे सुनिए और सीखिए।
1: से हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4,70,00,000,000 वर्ष है। अपने जन्म के समय पृथ्वी वर्तमान स्वरूप की भांति ना होकर धधकती हुई एक आग का विशाल गोला थी। करोड़ों वर्ष तक यह पृथ्वी निष्प्राण रही। धीरे धीरे यह आग का गोला ठंडा हुआ। पृथ्वी का धरातल जब ठंडा हुआ तो भाप का पानी बन गया तथा पृथ्वी के गड्ढों को इसने भर दिया, जो कालांतर से सागर एवं महासागर बने। इसी प्रकार पृथ्वी पर समुद्र, पहाड़ एवं उर्वर भूमि बनी। पृथ्वी की उत्पत्ति एक विशाल का तो वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया, मगर अभी तक वे ये नहीं जान पाए कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिक यह तो जान गए थे कि जीवधारियों के शरीर कुछ भौतिक तत्व से केमिश्रण से बनी है। अतः आज के लगभग 190 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर होने वाली रासायनिक व भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भौतिक तत्व से जीवात्म स्वयं ही अस्तित्व में आ गया। विकासवाद के सिद्धांत ने यह स्थापित किया है कि जीवों के क्रमिक विकास के उपरांत ही मानव वर्तमान अवस्था तक पहुंच पाया। पृथ्वी की जगत के दो भाग हैं, जल और भूमि। इसके साथ पृथ्वी वायु से घिरी है। इसे वायुमंडल कहते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों को जीवित रहने के लिए भूमि, जल एवं वायु की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के सभी भागों में किसी न किसी प्रकार के पौधे, पेड़ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें से कुछ स्थल पर रहते हैं, कुछ जल में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव जैसे जंतु तथा पौधे पर्यावरण के जैविक घटक कहलाते हैं। इसी प्रकार सभी निर्जीव जैसे जल, वायु, प्रकाश, वस्तुएं आदि पर्यावरण के अजैविक घटक कहलाते हैं। सभी जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर पर्यावरण बना है। हमारी धरती का धरातल एक सा नहीं है। कहीं ऊंचे पर्वत और घाटियां हैं तो कहीं घाटियां हैं, पर्वतें हैं, कहीं समतल मैदान हैं, कहीं पठार हैं तो कहीं मरुस्थल हैं, कहीं घाटी हैं तो कहीं गुफाएं। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। इसी पर हमारा घर, हमारी खेतीबाड़ी, हमारा काम धंधा सब कुछ है। पशु पक्षियाँ, कीट पतंग सब इसी पर रहते हैं। पेड़ पौधे भी पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। यदि पृथ्वी नहीं होती तो यह सब कुछ नहीं होता। पृथ्वी तीन भागों में बटी हुई है। पृथ्वी का पहला भाग अभी भी उतना ही गर्म है जितना कि वह पृथ्वी के जन्म के समय था। वह अभी तक ठंडा नहीं हो पाया है। पृथ्वी के दूसरे भाग कुछ गर्म तो कुछ ठंडे हो चुके हैं। इस भाग से हमें कई प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, अवरक आदि हमें पृथ्वी के ही गर्भ से प्राप्त होते हैं। इसलिए पृथ्वी एक महत्वपूर्ण संसाधन भी मानी जाती है। इसके तीसरे भाग जो कि ऊपरी परत है, जो मिट्टी कहलाती है, इसी मिट्टी में पौधे उगते हैं। वास्तव में मिट्टी की ऊपरी सतह ही उपजाऊ होती है। जब यह किसी कारण से बर्बाद हो जाती है तब फसल उगने की इसकी शक्ति घट जाती है। हमारे उपयोग के कुछ पदार्थ पृथ्वी के सतह पर और कुछ पदार्थ पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और कुछ घंटे में पूरा करती है, जबकि अपनी दूरी का चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। पृथ्वी हमें हर चीज प्रदान करती है, पर हम उसे प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण के कारण हमारे वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका कारण आपदाएं होती हैं। अतः हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि पृथ्वी को प्रदूषण रहित कैसे बनाया जाए, क्योंकि पृथ्वी है तो जीवन है और जीवन है तो हम हैं।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक विज्ञान वार्ता जिसका शीर्षक था पृथ्वी एक परिचय, और वार्ताकार थी कोमल कुमारी। आशा करती हूँ आपके लिए बहुत लाभकारी और ज्ञानवर्धक रहा होगा ये विज्ञान वार्ता। बढ़ते हैं अपने अगले स्तंभ की तरफ, जो है समसामयिकी। दोस्तों, अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हटाकर नॉकआउट राउंड में जगह बनाई, जिसमें लियोनेल मेसी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। भारत के 8 प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर मई 2026 में घटकर 0.5% रह गई, जो 21 महीनों में सबसे कम है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने स्तंभ संगीत पहेली की तरफ, जहां हमारे साथी ने पिछले बार प्रशांत ने आपसे एक प्रश्न पूछा था, दिलबर दिलबर गीत की गायिका कौन है? इसका सही उत्तर है अलका याग्निक। दोस्तों, मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, इसके पहले आपको एक गीत सुनाऊंगी। आप हमें उसका उत्तर भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर phair@gmail.com पर। हमारा पता है आकाशवाणी आदमपुर भागलपुर द्वारा केंद्र निदेशक युववाणी अनुभाग, पिन कोड संख्या 812001। तो सुनिए इस गीत को।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत मेरा यार दिलदार। फिल्म जानवर से गायक कलाकार थे अलका याग्निक, सोनू निगम एवं साथी। इसी बहाने एक और गीत का आनंद ले लेते हैं। गीत है आया तेरे दर पर दीवाना, फिल्म वीरजारा से गायक कलाकार हैं अहमद हुसैन एवं मोहम्मद हुसैन।

दोस्तों, अभी आपने एक गीत सुना। संगीत पहेली के अंतर्गत आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा कि इस गीत को किस अभिनेता और अभिनेत्री द्वारा फिल्माया गया है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा, आप हमें अपने सुझाव से अवगत करा सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी पर phairbhagalpur@gmail.com पर। आप हमें पत्र या ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा पता है, आकाशवाणी आदमपुर भागलपुर, द्वारा केंद्र निदेशक युववाणी कार्यक्रम, पिन कोड संख्या है 812001। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलेंगे हम, आपसे बातें करेंगे, फिल्मी गीत सुनेंगे। इंतज़ार रहेगा आपका। इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त अर्पिता को। नमस्कार, शुभ संध्या।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म 36 चाइना टाउन से। इस गीत को गाया है हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान ने। हिमेश रेशमिया ने ही इसके संगीत को तैयार किया है और इसके बोल लिखे हैं समीर ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का ये लोकप्रिय गीत। अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजें हैं, प्रीतम ने इसे संगीतबद्ध किया है। इसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं अमजद नदीम ने। अमजद नदीम का ही संगीत है, यसर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाज़ है। फिल्म भैया जी सुपरहिट का ये गीत है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म दबंग 2 का गीत। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान और साथियों ने। समीर अंजान ने इसके बोल लिखे हैं, संगीत है साजिद और वाजिद का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में फ्रेडी फिल्म के गीत को सुनिए। इरशाद कामिल ने इसके बोल लिखे हैं, प्रीतम का संगीत है, अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजें हैं।

इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में अब आइए जान ले आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद संध्या ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा पर्यावरण में। आज एक पूर्व प्रसारित वार्ता, विषय है पर्यावरण संरक्षण में वनों की भूमिका। वार्ताकार है देवरन झा। आज संध्या 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार सुरेंद्र कुमार राय की प्रस्तुति। रात्रि 8 बजे जरूर सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो नाटक। कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक नाटक, शीर्षक है बदलता गांव, लेखक है धनंजय मिश्र और प्रस्तुत करता है अमित कुमार। आज रात्रि 10 आप सुनेंगे अंगिका लोकगीतों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुंज विहार। रात्रि 10:30 पर, क्षमा कीजिएगा, रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे गीत गजल कार्यक्रम भावगीत। अब कल के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, प्रातः 5:48 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। 5:55 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों और बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेत खलियान। 6:10 पर हम लेकर आएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में एक वार्ता, विषय है मिर्गी कारण और इलाज। वार्ताकार हैं डॉक्टर ए के भगत। प्रातः 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। कल प्रातः 7:00 से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे सबसे पहले सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में गायक कलाकार अभिजीत आनंद की प्रस्तुति। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्यांजलि में कवि स्मिता की प्रस्तुति। तत्पश्चात 7:30 पर आप सुनेंगे

कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस दौरान आप जानेंगे कुछ जरूरी सूचनाएं, जैसे रेल सूचना, मौसम सूचना, कल का इतिहास और कल के समाचार पत्रों की कुछ प्रमुख सुर्खियां। प्रातः 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में कलाकार अनिल कुमार आनंद की प्रस्तुति सुनेंगे आप। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में गायक कलाकार बसंत कुमार के गाए लोकगीत। 10:45 पर आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम आओ साथ चले आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कल दिन में 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर हम लेकर आएंगे फिल्म संगीत की खास पेशकश गुलदस्ता। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेंगे आप। 1:00 आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में गायिका रेखा देवी के गाए लोकगीत। 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से सुनेंगे आप। 3:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रविंद्र संगीत में गायिका कणिका बैनर्जी के गाए गीत। संध्या 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 6:00 आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम भेंटवार्ता, विषय है ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण। भेंटवार्ताकार हैं स्मृति चेतना त्रिपाठी, भेंट करता है नाओमी शांति हेम्ब्रम। कल संध्या 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुलहरी में गायक कलाकार चेतन कुमार चौबे की प्रस्तुति। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:00 आप सुनेंगे फिल्मी गजलें और 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शंकर का नमस्कार
1: और साथ में रामू का भी नमस्कार। शंकर भाई आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार रामू भाई, कहिए क्या हालचाल है।
1: हाल समाचार तो अभी कुल मिलाकर कह सकते हैं शंकर भाई कि थोड़े ठीक भी हैं और थोड़े परेशान भी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अभी जो बदलता ये मौसम का मिजाज दिख रहा है ना, तो इससे जनमानस में कहीं ना कहीं एक तरह से कहिए कि लोग काफी परेशान हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब दिन में कभी चिलचिलाती धूप तो कभी बारिश के साथ साथ जो है वो तेज आंधी तूफान,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो इन कारणों से क्या है कि आमतौर पर सभी जीव जंतु या हम फिर पेड़ पौधे की बात कर लें शंकर भाई, सभी कोई परेशान हो रहे हैं। और इसके साथ ही खास करके हमारे जो किसान भाई हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं।
0: आपने बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई। आम, लीची, केला, मक्का, इन सारे फसलों की इस बार मौसम के कारण काफी क्षति हुई है। बगीचा जहां मंजरियों एवं टिकोरों से लदा दिख रहा था राम भाई, अचानक क्या हुआ, मौसम का मिजाज तीखा तेवर कि सब कुछ सूना कर दिया।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन प्रकृति के आगे किसका चला है,
1: बस चलता नहीं है शंकर भाई।
0: हाँ, हम लोगों को तो बस सतर्कता पूर्वक इन परिस्थितियों का सामना ही करना होगा राम भाई
1: जी,
0: है ना। और आज देखिए 30 जून है, 23 जून
1: जी,
0: क्षमा चाहेंगे 23 जून है। हम लोग संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं आज के दिन को, जिसकी शुरुआत 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने से घोषणा किससे हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: जिसका मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों के योगदान को सम्मान देना और जनता की सेवा की जज्बा का वो हौसले को बढ़ाना है।
1: बिल्कुल। और ये जो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हम लोग मनाते हैं 23 जून को शंकर भाई, वो समाज में लोक सेवकों की भूमिका को सम्मानित करने के साथ साथ लोक प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया
0: बिल्कुल,
1: जाता है,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: बिल्कुल।
1: और यह दिवस जो है इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे सिविल सेवा जो

है वो सतत विकास को आगे बढ़ाती है और इसके साथ ही युवाओं को सरकारी और प्रशासनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।

0: ज्ञापन करने का दिन है
1: जी।
0: ये लोग विषम परिस्थितियों में भी रामू भाई लोग जन की सहायता अपनी हानि की परवाह किए बगैर निरंतर करते हैं,
1: निश्चित रूप से,
0: है ना।
1: और इसके साथ ही क्या है कि इस दिन जो है पूरे विश्व भर में लोक सेवकों के अथक योगदान को सम्मानित करने के लिए ये दिवस हम लोग मनाते हैं शंकर भाई।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और इस दिवस का जो है वो पहला आयोजन 2003 में हुआ था, जो विकास और लोकतंत्र में सार्वजनिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए समर्पित एक वैश्विक परंपरा की शुरुआत का प्रतीक है शंकर भाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल राम भाई, अपने सही बात कही। यूएन का भी मानना है राम भाई की अच्छी लोक सेवा यानी कि मजबूत लोकतंत्र बिना ईमानदार अधिकारियों के कतई संभव नहीं।
1: बिल्कुल।
0: पर मजबूत लोकतंत्र के लिए हम नागरिकों को भी जिम्मेदारी कम नहीं है। हम नागरिकों को भी चाहिए राम भाई कि लोक सेवा कभी भी एक तरफा नहीं चलती, बल्कि इसे हम सबका सहयोग भी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम लोग किसी भी काम के लिए सही सही फॉर्म भरेंगे तो हमारे अधिकारियों का समय बचेगा,
1: निश्चित रूप से,
0: तो
1: हम लोगों को काम करने में भी तो
0: बिल्कुल
1: आसानी होगी ना।
0: इसलिए हम लोग को चाहिए कि जल्दी काम के चक्कर में विधि व्यवस्था को कमजोर करने के लिए रिश्वत का भी लेन देन ना करें
1: जी,
0: समय समय पर अच्छे कामों की तारीफ करें,
1: निश्चित रूप से।
0: ऐसे कर्मचारी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका और भी हौसला बढ़ाएं।
1: बिल्कुल,
0: है ना। इसी संदर्भ में नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि एक अच्छा लोक सेवक वही है जो स्वयं से पूछे कि मैंने आज किसकी जिंदगी बेहतर बनाई।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने शंकर भाई कि अच्छा लोक सेवक तो वही है ना कि जिसको आज लगे कि अगर आज हमने दिन भर काम किया तो किसकी जिंदगी अच्छी बनाई हमने।
0: बिल्कुल,
1: है कि नहीं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन वही है कि साथ साथ हम लोगों को भी उनको सहयोग करना होगा।
0: बिल्कुल,
1: है कि नहीं।
0: वो संभव ही नहीं, एक तरफा कोई काम नहीं होता।
1: और जब भी कोई अच्छा काम हो तो उसका निश्चित रूप से तारीफ भी करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: है कि नहीं।
0: और रामू भाई आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी है।
1: अच्छा।
0: जिसकी शुरुआत की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 2010 ईस्वी में की थी और 2011 से इस दिन को यानी कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाने लगी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में विधवाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना और उनके हक सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
1: बिल्कुल। देखिए शंकर भाई, पति की मृत्यु केवल जीवन साथी का जाना ही नहीं होता है, बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से में महिला के वजूद पर भी सवालिया निशान खड़ा कर देता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इसी कड़वी सच्चाई को बदलने और उनके अधिकारों की आवाज बुलंद करने के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: है कि नहीं।
0: देखिए, विधवा होना कोई अभिशाप नहीं है राम भाई।
1: हाँ, निश्चित
0: रूप से। जीवन की एक अभिन्न प्रक्रिया है, है ना। तो आज के समय भी यह देखा जा रहा है कि पति के मरने के बाद अनेक विधवाओं को आर्थिक तंगी, सामाजिक बहिष्कार, वो कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है
1: जी।
0: पति के पेंशन हो, बीमा हो, या जमीन के काम का कागजी काम हो, इन सब में विधवाओं का सालों बीत जाता है, पर समाज परिवार कोई साथ नहीं देता। इतना नहीं, आज की विधवाओं को समाज में अपशगुन की निशानी माना जाता है। शादी ब्याह या किसी शुभ कार्य पर उन्हें नीच दृष्टि से देखा जाता है, जो बिल्कुल सही नहीं है।
1: देखिए शंकर भाई, और इसके साथ ही क्या है कि ये सब चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग धीरे धीरे अगर हम बदलेंगे तो लोग बदलेंगे।
0: बिल्कुल,
1: है कि नहीं।
0: बिल्कुल।
1: और इसके साथ ही यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों में उन समस्याओं के बारे में जागरूकता लाता है शंकर भाई, जिनका सामना पूरी दुनिया में विधवाएं करती है।
0: बिल्कुल।
1: और यह प्रगति पर चिंतन करने और आम महिलाओं द्वारा किए गए साहस और दृढ़ संकल्प का जश्न भी मनाने का समय है।
0: बिल्कुल।
1: और यह लोगों को ध्यान इस ओर आकर्षित भी करता है कि वे इस पर कार्रवाई करें और जो भी उनका अधिकार है उसको निश्चित रूप से मान्यता दें।
0: इसलिए तो हम सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए राम भाई। आखिर वो मेरे ही समाज परिवार के सदस्य हैं। आज उनका कर्ता धर्ता यानी कि उनका पति इस दुनिया से सशरीर चला गया, इसमें विधवाओं की क्या गलती।
1: क्या गलती है। बिल्कुल।
0: इसलिए हम सबों को चाहिए कि उन्हें रोजगार में मदद कर, बच्चों की पढ़ाई में मदद कर, या फिर सामर्थ्य के अनुसार अपनी ओर से आर्थिक मदद के साथ साथ अन्य कार्यों में भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन राम सब ही पर बीती।
1: बिल्कुल।
0: कल हमारी पत्नी, माँ, बहने भी विधवा हो सकती है।
1: निश्चित रूप से। तो अभी तो हम लोग ये शंकर भाई संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर चर्चा कर रहे थे और संध्या वेला है,
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना एक बढ़िया सा देवी गीत से हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करें।
0: बहुत अच्छा।

0: जी निश्चित रूप से, जय दुर्गे महारानी अंबे भवानी,
1: बहुत बढ़िया,
0: बहुत पूरा माहौल एकदम भक्तिमय हो गया है कि नहीं शंकर भाई?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए कार्यक्रम में आगे और भी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे, पहले कुछ जरूरी संदेशों को सुन लेते हैं।
1: आइए सुनते हैं।
2: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
3: Nexa.
4: सुनो ना।
3: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
4: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
0: जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत में। देखिए शंकर भाई, हमारे दैनिक जीवन में जो है ना वो अच्छी और पर्याप्त नींद का बहुत महत्व है।
1: बिल्कुल
0: है कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है, है कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि पर्याप्त नींद जो होती है ना वो मस्तिष्क को तरोताजा भी करती है, याददाश्त मजबूत करती है, और इसके साथ ही साथ क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको भी बढ़ाती है, और
1: सबसे
0: बड़ी साथ ही साथ शरीर में ऊर्जा भी देती है शंकर भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से हम लोग और विस्तार से जानते हैं कि जीवन में नींद का महत्व। वार्ताकार हैं डॉक्टर राजभूषण प्रसाद, आइए इनकी बातों को हम लोग ध्यानपूर्वक सुने।
5: ठीक। श्वास और मृत्यु पूर्व की अंतिम श्वास के समय काल को हम अपने जीवन का नाम दे सकते हैं, और नींद विश्राम की एक स्वाभाविक स्थिति है। नींद जीवन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारी मूल प्रवृत्ति एवं जन्मगत दैवीय गुण है। सच तो यह है कि जीने के लिए सोना उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन करना तथा पानी पीना। नींद में मनुष्य अपने दैनिक समस्याओं से संबंधित किसी भी विचार अथवा हलचल से शांत होकर विश्राम प्राप्त कर नई ऊर्जा प्राप्त करता है। योग में नींद को प्रत्याहार की एक विशेष अवस्था कहा गया है, जहाँ हमारा चेतन मन ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय दोनों अंगों से मुक्त होकर अब चेतन मन से संबंध जोड़ते हुए बाहरी संसार की क्रियाओं से अपरिचित हो जाता है। नींद की इस अवस्था में हमारी चेतना अंतर जगत की ओर मुड़ जाती है। नींद और जागने के बीच की अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने निद्रालुता की अवस्था कहा है। यह परिवर्तनशील अवस्था अधिक से अधिक 3 या 5 मिनट तक की रहती है। संपूर्ण एवं गहरी नींद के बाद जगने पर अपने अंदर नई ऊर्जा को महसूस करते हैं। नींद से हमारी थकावट तो दूर होती ही है, साथ ही नींद के बाद नए नए सार्थक विचार उत्पन्न होते हैं। इससे चिंतन शक्ति में वृद्धि एवं कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ अनुभव करते हुए तरोताजा होते हैं। स्वस्थ एवं संतुलित व्यवहार के लिए हमारे संपूर्ण जीवन में नींद का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। उचित मात्रा की नींद हमें शारीरिक मानसिक शक्ति के साथ सुरक्षा प्रदान करती है। शैशव काल एवं बाल्यकाल की शारीरिक वृद्धि एवं विकास में नींद एक आवश्यक सहायक तत्व माना गया है। पर्याप्त नींद से शरीर की सभी अंतर्स्रावी ग्रंथियां उत्तेजित एवं सक्रिय हो समुचित मात्रा में अपने हार्मोन्स का श्रवण करने लगते हैं, जिससे शरीर के अंदर चलने वाले चयापचयी मेटाबॉलिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलते हुए हमारे शारीरिक वृद्धि में सहयोग करता है। हमें अच्छी भूख लगती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और हम बाह्य रोगाणुओं से सुरक्षित हो जाते हैं। नींद के समय अवधि पर ध्यान दें तो रात्रि काल की नींद ही सर्वोत्तम मानी गई है, क्योंकि इससे प्राकृतिक समय चक्र एवं शारीरिक जैविक घड़ी के बीच सामंजस्यता बनी रहती है। दिन में या सूर्योदय के बाद तक नींद में बने रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विभिन्न आयु वर्ग के लिए भी स्वास्थ्यकारी नींद अलग अलग हैं। जैसे नवजात बच्चों के लिए 16 से 18 घंटे की नींद, 2 से 5 वर्ष बच्चों के लिए 11 से 12 घंटे की नींद, स्कूली बच्चों के लिए 10 घंटे की नींद, युवा वर्ग के लिए 9 से 10 घंटे एवं वयस्कों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। पर्याप्त समय नींद सामान्य नींद जहां स्वास्थ्यवर्धक है, वहीं अनिद्रा हमारे लिए कई रोग एवं समस्या का कारण बनता है। नींद के समय काल में कभी कमी बने रहने को अनिद्रा कहते हैं। यह हमारे संपूर्ण शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है। हम बेचैनी अनुभव करते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन से परेशान रहते हैं। अनिद्रा के कुप्रभाव से प्रायः सभी अवगत हैं। चिड़चिड़ापन, आक्रोश एवं घबराहट तथा अवसाद में रहना इसका प्रमुख लक्षण है। याददाश्त में कमी, कार्य के प्रति सजगता में कमी, नए ज्ञान को सीखने में कमी, किसी कार्य में ध्यान केंद्रित न कर पाना अनिद्रा के प्रतिफल हैं। अनिद्रा से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हृदय गति का रुकना आदि गंभीर परिणाम देखे गए हैं। एक शराबी ड्राइवर से कहीं अधिक अनिद्रा से ग्रसित ड्राइवर द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। आमतौर पर हम नींद के समय अनिद्रा के कुछ समस्याओं से अनभिज्ञ रहते हैं, जैसे नींद में खर्राटा, नींद में आश्वासन, नींद में बोलना आदि। अनिद्रा का कुछ कारण तो अल्पकालीन होता है, जो कुछ दिनों तक पारिवारिक कलह, समस्या, तनाव, सामाजिक दबाव, कार्य तनाव के कारण हो सकता है, जिसका निवारण अपने पर नियंत्रण, जीवन शैली में बदलाव तथा सोने की यौगिक विधियों से हो जाती है। परंतु कुछ कारण दीर्घकालीन रहता है, जिसका प्रभाव काफ़ी समय तक बना रहता है और इससे हम प्रायः अनजान बने रहते हैं। इसका समुचित उपचार योग चिकित्सक एवं यौगिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हो पाता है। नींद में खर्राटा एवं नींद में आश्वासन हमारे अस्थायी अनिद्रा का मुख्य कारक है। नींद में खर्राटा एवं नींद आश्वासन, जिसे स्लिप एपनिया भी कहते हैं, को इस प्रकार समझ सकते हैं। सामान्य श्वसन के अंतः श्वसन में हम नाक से वायु ग्रहण करते हैं तथा वाही श्वसन में दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन के इस कार्य में श्वसन पथ अंतर्गत नाक, मुंह, गला के अंदर की वायु नली तथा फेफड़े का उपयोग होता है। नींद की हालत में गले की वायु नली के अपने गोलाई में खुले रहने की अवस्था में श्वास लेने या छोड़ते समय खर्राटे की आवाज़ नहीं आती, परंतु इसी वायुनली में जब सिकुड़न के फलस्वरूप इसकी गोलाई आधी दब जाती है या पूर्ण रूप से दबकर वायुनली का मार्ग बंद हो जाती है, तो खर्राटा या आश्वासन नींद की अवस्था बनने लगती है। गले के श्वास नली की गोलाई मार्ग जब सिकुड़ कर आधी दब जाती है, तो अंदर आती और बाहर निकलती वायु को आने जाने में रुकावट मिलती है, जिससे एक खर्राटे की ध्वनि के रूप में वायु घर्षण के साथ वायु नली से बाहर हो नाक से निकलती है। खर्राटे की यह ध्वनि कभी मंद होती है तो कभी तीव्र, परंतु जब यही श्वास नली गले में पूरी तरह सिकुड़ कर बंद हो जाती है, तो आश्वासन नींद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ना तो शुद्ध वायु को फेफड़े में आने का मार्ग मिल पाता है और न तो अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड वायु ही फेफड़े से बाहर निकल पाती है। ऐसी हालत में एक तरफ शरीर में विषैले टॉक्सिक का जमाव होने लगता है, तो दूसरी ओर मस्तिष्क के कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आश्वासन नींद के इस संकट से उबरने के लिए ब्रेन को नींद तोड़ देने का स्वतः संदेश प्राप्त होता है, जिससे मुख से विशेष ह की ध्वनि निकलते हुए मुख खुलता है और अपने आप बंद हुई गले की श्वास नली खुल जाती है और सामान्य श्वसन प्रारंभ हो खर्राटे से प्रवेश करते हुए पुनः स्लीप एपनिया की स्थिति आ जाती है, जिससे बार बार नींद टूटती रहती है। प्रायः एक घंटे की नींद में 1 से 100 तक की स्लीप एपनिया की स्थिति बन सकती है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से कतई ठीक नहीं है। रात्रिकाल में नींद से उठकर बाथरूम जाने की इच्छा होने पर हृदय रोगी, डायबिटीज एवं सामान्य वयस्कों को 1.5 मिनट के समय की विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जैसे आधा मिनट जगकर बिछावन पर लेटे रहना, आधा मिनट उठकर बिस्तर पर ही बैठना और अंतिम आधा मिनट बिस्तर से पांव लटकाकर रहने के बाद ही बाथरूम जाने के लिए पांव बढ़ाना चाहिए। झटके से उठकर बाथरूम जाने पर मस्तिष्क में प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी रहने एवं ईसीजी में अचानक आई बदलाव से हृदय गति रुकने की संभावना बढ़ जाती है, जो आम तौर पर बाथरूम के अंदर हृदय गति रुकने की मौतों में दर्ज होती आई है। अतः नींद से उठने का भी एक अनुशासन तो बनता ही है। सारांश में हम अपने नींद के प्रकारों को विभिन्न नामों में बांट सकते हैं, जैसे गहरी नींद, स्वप्नबाधित नींद, अल्पकालीन नींद, खर्राटेदार नींद, तंद्रा नींद, अनिंद्रा वाली नींद आदि आदि। एक स्वस्थ एवं संपूर्ण नींद के लिए यौगिक पद्धति तथा योग निद्रा काफ़ी सहायक होती है। अतः आम सभी लोगों को योग का अभ्यास कुशल योग शिक्षक से प्राप्त कर लेना चाहिए।
0: जी
1: हाँ राहू भाई, देखिए योग की बात आई, बहुत जरूरी है, ये आवश्यक है कि हमें कुछ समय नित प्रतिदिन योग में देना ही चाहिए, तभी हम संपूर्ण तौर पे स्वस्थ रह सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। रामू भाई, पहले का समय था जब हमारे यहाँ से लोग यूपी बिहार और भी प्रांतों से ज्यादातर लोग कलकत्ता कमाने के लिए जाया करते थे।
0: जी जी
1: ठीक है। तो कलकत्ता को गांव की भाषा में पूर्विया देश भी लोग कहा करते थे, आज भी कहते हैं। तो वो ये जो गीत अभी हम बजाने जा रहे हैं, वो पूर्वी जो हम सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को, इसमें भाव है कि जब किन्हीं का पति कमाने के लिए चला गया बाहर
0: जी,
1: हाँ, तो उनकी पत्नी यहाँ किस तरह से समय बिता रही है, क्या क्या विपदाएं उनके ऊपर आ रही हैं, उसका वो बखान करती हैं
0: गीत के माध्यम से।
1: हाँ, गीत के माध्यम से। और वो संदेश भेजती है अपने पति को कि आप समझिए कि मैं यहाँ अकेले कैसे जीती हूँ। तो आइए इस भाव में सुनते हैं एक पूर्वी पतिया में लिखी का हम दिलवा के बतिया।

0: जी
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और रामू भाई,
0: जी
1: हमारे किसान भाई तो खासकर सुनना ही चाहते हैं, लेकिन अभी जो समय चल रहा है ऐसी स्थिति में हमारे सारे लोग चाहते हैं कि मौसम कल क्या होगा, कुछ घंटों बाद क्या होगा, इसकी चिंता बनी रहती है। तो आपके पास कोई मौसम सूचना तो जरा मेरे श्रोताओं को बता दें
0: भाई। आने वाले 5 दिनों के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है।
1: अच्छा।
0: और इसके साथ ही दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में 24 और 25 जून के एक दो स्थानों पर क्या है कि लू चलने की भी संभावना है।
1: अच्छा।
0: इसके बाद जिलों के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की भी संभावना है और अधिकतम तापमान जो है वो 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। इसके साथ सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है और पूर्वानुमान की अवधि में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। अब कुछ किसान भाइयों के लिए समसामयिक सलाह भी दे दीजिए शंकर भाई।
1: बिल्कुल, तो वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें, फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल मौसम साफ रहने पर ही करें और खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पूरा कर लें। और रही बात वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए ऊंची भूमि धान की खेती के लिए जो आपने चुन के रखा है, जहाँ ऊंची भूमि है आप खेत में धान लगाते हैं, तो ऐसे जगहों पर जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम एवं अवधि कम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिरा सकते हैं। बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई करते रहें, विशेषकर ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर भी विचार कर सकते हैं। और खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार कर सकते हैं। अब बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर एवं 50 किलोग्राम पोटास का व्यवहार करें।
0: जी,
1: अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11, ये आप अपने खेतों में लगाकर अच्छी फसल ले सकते हैं।
0: जी,
1: और देखिए रामू भाई, मौसम की चेतावनी और भी है कि लू के कारण यानी हीट वेव जिसको कहते हैं, फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने और नए अंकुरित होने वाले पौधों में वृद्धि प्रभावित हो सकता है। पशुओं में ताप तनाव, पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएं और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल का झड़ना, फल का झड़ना, कीट रोग प्रकोप, सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुंच सकती है। पशुओं पर भी ये सारी चीज़ें तनाव बढ़ाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: और गला घोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं।
0: और साथ ही साथ क्या है शंकर भाई कि दुधारू जो पशु हैं उनको गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखना चाहिए।
1: और खिलाने पिलाने में भी सतर्कता बरतने की जरूरत है राम भाई। नए गेहूं के जो भूसा खिलाते हैं हम लोग, तो उसको खिलाने से पूर्व 2 घंटा पहले पानी में फुला लें
0: जी,
1: और 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर ही उनको खिलाएं, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कार्यक्रम में, विवाह शादी का समय चल रहा है
0: जी,
1: तो क्यों ना एक विवाह गीत सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TLC apply.
1: Nexa. They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just ₹6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें ₹250 से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: इस अंतराल के बाद आगे बढ़ते हैं। राम भाई, अपने देश में खास करके खेती की रस्ती में धान की उपज अधिक की जाती है
5: जी,
4: और हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है।
5: बिल्कुल।
4: तो अपने किसान भाइयों को कुछ हम सुनवाना चाहते हैं कि धान की खेती में कम पानी यदि हो तो कैसे खेती आपकी हो सकती है। कहने का मतलब है कम पानी में धान की खेती आप समुचित रूप से कैसे कर सकते हैं।
5: बिल्कुल।
4: आइए इस विषय पर एक प्रसारित वार्ता सुनते हैं। वार्ताकार हैं डॉक्टर संजय कुमार।
5: आइए इनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने।
6: खेत की मेड़बंदी करें तथा साथ ही साथ खेतों की हैरो या कल्टीवेटर से जुताई कर दें, ताकि वर्षा होने पर वर्षा का पानी खेतों में संरक्षित हो सके। इसी माह में धान की रोपाई करने से पूर्व खेतों में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खेतों में भली प्रकार मिला दें। यदि हरी खाद खेत में लगा रखी है तो उसको ट्रैक्टर की हैरो द्वारा खेत में मिला दें। धान की विभिन्न

0: अवधि वाली किस्मों के बिचड़े तैयार होने के उपरांत उन्हें एजोस्पाइरिलम एवं पीएसवी जीवाणु खाद 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बिचड़ों को उपचारित करने के उपरांत उसकी क्रमबद्ध समय अनुसार रोपनी करें। इन जीवाणु खादों का प्रयोग करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है तथा उपज में भी बढ़ोतरी होती है। इन जीवाणु खाद को प्रयोग करने के लिए बताई गई उपरोक्त मात्रा 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लेकर के 2 लीटर पानी में घोल लें तथा उसके बाद पौधे की जड़ों को भिगो करके इच्छा अनुसार खेत में रोपाई कर दें। धान की रोपाई के 10 दिनों के बाद खेत में नील हरित शैवाल का प्रयोग करें। इसके लिए 10 किलोग्राम नील हरित शैवाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में 20 किलोग्राम मिट्टी मिलाकर बखेर दी जाती है। बखेरते समय ध्यान रहे कि नील हरित शैवाल की छींटने के बाद लगभग 10 दिन तक खेत में पानी भरा रहे। बखेरने के 3 दिन के बाद खेत की ऊपरी सतह में हरे रंग की एक परत आ जाती है। यदि ऐसा होता है तो समझना चाहिए कि बखेरा हुआ नील हरित शैवाल अच्छी तरह से उगने लगा है। नील हरित शैवाल के प्रयोग से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है तथा उपज में भी बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही साथ ये नील हरित शैवाल बहुत प्रकार के प्लांट हार्मोन्स निकालता है तथा कुछ पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करता है, जिससे कि पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और पॉलीसेकेराइड्स के द्वारा मृदा की संरचना में भी सुधार होता है। मुख्यतः इस नील हरित शैवाल का कार्य वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है। इसके प्रयोग से पौधों को लगभग 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम नील हरित शैवाल का प्रयोग धान की खेती में करते हैं तो लगभग 25% नाइट्रोजन की मात्रा को हम कम कर सकते हैं, जो कि हम यूरिया के द्वारा देते हैं। क्योंकि इस समय ये देखा जा रहा है कि किसानों को यूरिया की मात्रा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए हम खेत में किसी तरह से यूरिया को जाने से रोकें, इसके लिए हमें जैव उर्वरकों को अपनाना होगा। इसके साथ ही साथ कुछ और जैव उर्वरक हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है एवं पीएसबी है, जो कि धान की खेत में हम प्रयोग कर सकते हैं। सुगंधित धान की किस्मों की बिजाई इस माह के प्रथम पखवाड़े में कर दें। पहले से तैयार गड्ढों में इस माह के अंत तक नए बाग के लिए पौधे लगा दें तथा पपीता के पौधों की रोपनी करें। इन पपीतों की पौधों की रोपनी करने से पहले खोदे गए गड्ढों को जैव उर्वरक से उपचारित कर दें। इसके लिए 2.5 किलोग्राम पीएसबी और 2.5 किलोग्राम एजोटोबैक्टर लेकर उसको 100 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला करके 100 ग्राम प्रत्येक खड्डे में हम मिला दें। उसके बाद में पपीतों के पौधों की रोपनी करें। इससे करने से पौधों को
1: हेलो की दशा में उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा यथा 120 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर एवं 40 किलोग्राम जलवायु पोटाश का प्रयोग किया जाता है।
2: में कम
1: उर्वरकों का प्रयोग
2: तथा
1: समान समय करें, इस संबंध
2: वर्षा का भी
1: अनुशंसा की गई है
2: और
1: कि नेत्रजन की
2: के साथ भूमि
1: की मात्रा तथा इस पर
2: जल में
1: लगातार पोटाश की पूरी मात्रा
2: कमी ने
1: बीज बुआई के समय स्थिति को और करें। बुआई की
2: गंभीर
1: मशीन में लगे की सहायता से उर्वरक की मात्रा का निर्धारण किया जा
2: इस संदर्भ में
1: आमतौर से सीड ड्रिल से कम जल।
3: आइए अब हम लोग आगे कार्यक्रम में बढ़ते हैं और एक विवाह गीत सुनते हैं।
4: जी

0: हाँ श्रोताओं, आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने कार्यक्रम के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और दें अपने शंकर को विदा। नमस्कार
1: और सबको रामू का भी नमस्कार।

आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिशम गुरु शिबु सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से किया सम्मानित। गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन ने ग्रहण किया पुरस्कार। एसआईआर वोटर मैपिंग का 30 जून से दूसरा सत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर और दुमका में बीएलओ प्रशिक्षण का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। रांची में भाजपा नेताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि। कहा, प्रधानमंत्री उनके सपनों को कर रहे हैं पूरा। कर्मयोगी मिशन के तहत रांची सेल में क्षमता संवर्धन सम्मेलन। कर्मियों को दक्ष और निपुण बनाने में मंथन। विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन। यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप शिविर के लिए राज्य के 6 खिलाड़ियों का चयन। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह का दूसरा चरण आयोजित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मौके पर दिशम गुरु शिबु सोरेन को मरणोपरांत लोक कार्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सर्वोच्च पुरस्कार दिशम गुरु की पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक कल्पना सोरेन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में बीएलओ और बीएलओ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर और दुमका के जरमुंडी में प्रशिक्षण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। श्री कुमार ने कहा कि एसआईआर में एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम नहीं कटेगा।
1: ट्रेनिंग में सभी बिंदु पर बात हो रही है। आमतौर अभी बीएलओ पूरा तरफ से जानकारी ले रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक भी भारत का नागरिक छूटेगा नहीं, सबको अपने शामिल कर देंगे। उसके साथ साथ में कितना भी पहले से गलत प्रवेशी है, फिर उसके बाद कितना भी गैर भारत नागरिक का नाम है, वो अपने रिमूव करके उनका पूरी काम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: को भी नया आयाम मिला है। रक्षा राज्य मंत्री ने विकसित राष्ट्र निर्माण में सभी की भागीदारी पर जोर दिया। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर राज्यभर में आज विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और अन्य नेताओं ने उन्हें बलिदान दिवस पर नमन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बदलाव दिख रहा है।
1: आज उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। और जो उनका सपना था, जो उनका सोच था कि एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा, और इसी मूल मंत्र को लेकर अनेक प्रकार का आंदोलन करने का काम सदैव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करने का काम किया।
0: गुमला वन प्रमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सलगी वन क्षेत्र में करीब 20 एकड़ से अधिक वन भूमि को वन विभाग ने अवैध कब्जा से मुक्त कराया है। इस संबंध में गुमला वन प्रमंडल पदाधिकारी अनवर बिलाल अहमद ने बताया कि स्थानीय लोग लंबे समय से वन क्षेत्र के पेड़ पौधों को काटकर अवैध कब्जा करते हुए खेती कर रहे थे।
2: सर्वे जब उन्होंने किया तो पाया कि करीब 20+ एकर्स में इंक्रोचमेंट लैंड था। वहाँ के लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे खेती कर रहे थे। इंक्रोचमेंट ग्राम सभा बुलाया, मीटिंग हुई तो लोगों ने वॉलंटरली एग्री किया कि वो लोग उस जगह को छोड़ देंगे और पूरे इंक्रोचमेंट को क्षेत्र को खाली कराया गया। ट्रेंचेस बनाए गए, कंटूर्स बनाए गए, गली प्लग्स किया गया, पिट्स बनाए गए।
0: झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ में आज बोकारो की एक लापता युवती के मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान जंगल से बरामद कंकाल और युवती के माता पिता के डीएनए रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। मामले की अगली सुनवाई अब 25 जून को होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में आज से मिशन कर्मयोगी के तहत 3 दिवसीय कर्मचारियों का क्षमता संवर्धन सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में सेल से संबंधित देश भर के प्रतिष्ठानों के मानव संसाधन विभाग के अधिकारी और मैनेजमेंट गुरु कर्मचारियों को दक्ष और निपुण बनाने की दिशा में मंथन कर रहे हैं। मौके पर भारत सरकार की सदस्य डॉ. अलका मित्तल ने विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया।
3: 3 साल से ये एक्टिविटी चल रही है और इस संदर्भ में चर्चा होती है कि किस तरह से हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, कैपेबिलिटी बिल्डिंग करेंगे अपने ह्यूमन रिसोर्स की। हमारे कोई भी असेट फेल हो जाएंगे अगर ह्यूमन असेट जो है वो इक्विप नहीं होगा इन हमारे कैपिटल को संभालने के लिए।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है।
4: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने के कारण हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। कम वर्षा के कारण जो परिस्थिति पैदा होगी उसके लिए जिले की कंटेंजेंसी प्लान बना लिए गए हैं। वहाँ की जलवायु, फसल उपलब्ध जल और जोखिम को देखकर कैसे हम वैकल्पिक खेती की योजना बनाई है।
0: इधर देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने थोड़ी गति पकड़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के कुछ और क्षेत्रों में आज मॉनसून प्रवेश कर गया। अगले 3-4 दिनों में इसके बाकी इलाकों में भी दस्तक देने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गुमला के भरनों में राज्य में सर्वाधिक 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 29 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी की ओर से रांची में

0: आज रन फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक दौड़ का आयोजन किया गया। पुराना विधानसभा से धुरवा गोल चक्कर होते हुए वापस पुराना विधानसभा तक आयोजित इस दौड़ में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों, युवा खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस मौके पर पूर्व ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता सिल्वानस डुंगडुंग को सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया ने आगामी यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप के राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए खिलाड़ियों की सूची जारी की है। झारखंड की 5 बेटियों पुष्पा मांझी, संदीपा कुमारी, श्रुति कुमारी, नीलम टोपनो और खिली कुमारी को महिला वर्ग में प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। पुरुष वर्ग में प्रशिक्षण कैंप के लिए आशीष तानीपूर्ति का चयन हुआ है। झारखंड T20 प्रीमियर लीग JPL का आज खिताबी मुकाबला होगा। जमशेदपुर स्टीलर्स और छोटा नागपुर रॉयल्स के बीच यह फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से किया सम्मानित। गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन ने ग्रहण किया पुरस्कार। SIR वोटिंग मैपिंग का 30 जून से दूसरा सत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर और दुमका में BLO प्रशिक्षण का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। रांची में भाजपा नेताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि। कहा, प्रधानमंत्री उनके सपनों को कर रहे हैं पूरा। कर्मयोगी मिशन के तहत सेल रांची में क्षमता संवर्धन सम्मेलन। कर्मियों को दक्ष और निपुण बनाने का मंथन। विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन। यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप शिविर के लिए राज्य के 6 खिलाड़ियों का चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण में वनों की भूमिका। वार्ताकार हैं देवानंद झा।
2: संप्रति पर्यावरण पृथ्वी के प्राणियों के लिए प्रमुख प्रश्न बनकर मानवता के मन को मंथित कर रहा है। पर्यावरण की समस्या स्थानीय या एक देशी नहीं है, अपितु यह विश्वव्यापी समस्या बनकर जीव जगत के अस्तित्व के लिए चुनौती बनकर प्रकट हुई है। विश्व जनमानस इस ज्वलंत समस्या के विनाशकारी प्रभाव से चिंतातुर है। अग्नि से अंबर तक प्रकृति की सीमा में समाहित है। संपूर्ण आवेष्टन ही प्रकृति का अंग है। अतः पर्यावरण और प्रकृति में अन्योन्याश्रय संबंध है। पर्यावरण का अर्थ है परिजोड़ आवरण, अर्थात परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढक्कन या आच्छादन। इस प्रकार हमारे आसपास आकाश से पृथ्वी तक जो आवरण है वह संपूर्ण आवेष्टन ही पर्यावरण कहलाता है। इसमें ओजोन मंडल, वायु, बादल, सर सरिताओं, झीलों, झरनों, सागरों, पर्वतमालाओं और वन समूहों की सम्मिलित संज्ञा ही पर्यावरण है। अनादिकाल से प्रकृति प्राणियों का पोषण करती आई है। वह अनवरत प्रचंड झंझावतों के निर्मम प्रहारों, निदारुण निदाध के दीर्घदाहों और अस्थियों को प्रकंपित कर देने वाली शिशिर शीतों के संतापों से हमारी रक्षा करती रही है। वह अपने नैना विराम श्यामल हरिवीतांचलों की शीतल छाया में आश्रय देकर हमारे तन का ताप और श्रम शांत मन की क्लांति का हरण करती है। अपने रसीले अमृत फलों से हमारी क्षुधा को संतृप्त करती है। स्वर्गिक सुमनों की सुरभि से हमें संस्फूर्त करती है तथा अपने शीतल शरीर से हमारी अतृप्त तृषा को संतृप्त संतुष्ट करती है। सच ही कहा गया है, बाल विहंगम मन बहलाते पल्लव ही पलना है, कानन कुंज कुटीर बसेरा फूलों पर चलना है। प्रकृति हमारी जननी है, हमारी धात्री है स्वार्थ संपूर्ति के लिए अविराम उसका शोषण दोहन किया है। हमने अनियंत्रित रूप से आर्निस उसके साथ छेड़छाड़ की है। हमारे अविवेकतापूर्ण संदोहन से वह संक्षुब्ध हो उठी है, जिसकी दुष्परिणति प्राकृतिक असंतुलन और पर्यावरण के प्रदूषण में हुई है। उद्योगों की स्थापना और अविराम बढ़ती जनसंख्या की जठराग्नि समित करने के लिए हमने सस्य श्यामल चिरहरित सघन वनों का निर्ममता पूर्वक विध्वंस कर कृषि क्षेत्र का विस्तार किया है। वृक्षों की महिमा का वर्णन महाभारत में मिलता है। वन पर्व के 25वें श्लोक में कहा गया है, एको वृक्षो यो ग्रामे भवेत वर्ग फलान्वित चैत्यांग भवति निर्ज्ञातिरर्चिनी सु पूजित, अर्थात फल पत्रों से परिपूर्ण वृक्ष जिस ग्राम में है वे देवालयों की भांति संपूज्य है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया, वृक्ष ईव स्तब्धो दिवितिष्यत्येक, अर्थात वृक्ष विश्व रूप है, अतः अपने वन देवता के लिए मनुष्य के निवर्म मन में ममता नहीं रही तो वेदना ही उसकी नियति बन गई। जब से व्यस्त मनुज ने त्यागे वन के वास बसेरे, दुखी बन गए राम कहानी सात जन्म के फेरे। इस प्रकार वनों के विनाश से वन्य प्राणी और पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हुई है। पवन के आघात से वन ही भूपटल की ऊपरी उर्वरा मृत्तिका का रक्षण करते थे। वन ही वेगमती सरिताओं की प्रचंड लहरों से कूल किनारों की रक्षा कर हमें बाढ़ की भीषण विनाश लीला से बचाते थे, परंतु उनके विनाश से उर्वरा मृत्तिका का क्षरण हुआ है, कृषि की उर्वरता में ह्रास हुआ है, मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है। चिरहरित कमनीय काननों की हरितिमा से आकृष्ट होकर मेघमालाएं वसुंधरा को सिक्त करती थी, किंतु वनों के विनाश से वर्षा भी प्रभावित हुई है। वर्षा के अभाव से दुर्भिक्ष बढ़ रहा है, भूगर्भ का जल भंडार भी रिक्त हुआ है, सदा नीरा सरिताएं भी शुष्क हो रही है, पर्वत प्रदेशों में भूस्खलन और भूकंप की आवृत्ति हो रही है, ऑक्सीजन प्राप्ति का साधन समाप्त हुआ है, कार्बन की बढ़ती मात्रा ने प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न कर दिया है, सांस और दमे की बीमारियां बढ़ी हैं। इसलिए वनों का विनाश रोकना होगा और नवीन वन क्षेत्र बनाना होगा। पर्वतमालाओं के साथ छेड़छाड़ भी अविलंब बंद होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में वनों और पर्वतों की महिमा गाई गई है, यावत् भूमंडल दत्ते सौसेर वन काननम तावत् तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्री की, अर्थात जब तक यह पृथ्वी वृक्षों तथा पहाड़ों से युक्त एवं वनों से समृद्ध रहेगी तब तक मानव की संततियों का पालन पोषण करती रहेगी। भारत प्रकृति की गोद में बसा हुआ सुषमा संपन्न देश है। प्रकृति ने अपनी रंग बिरंगी वनस्पतियों से भारत को सजाने और संवारने में कुछ उठा नहीं रखा है। प्रकृति ने खुले हाथों भारत को सौंदर्य का दान दिया है। इसकी सुंदरता में प्राकृतिक वनस्पतियों ने चार चांद लगा दिए हैं। इसीलिए भारत प्राकृतिक सुरम्यता, रमणीयता और वासंती वैभव के लिए विश्व में प्रसिद्ध रहा है। एक ओर हिमालय की उपत्यका में फलों और फूलों के उद्यान है तो दूसरी ओर ब्रजभूमि में करील के कुंज झूम रहे हैं। एक ओर मिथिला की अमराइयों में कोयल की कूक हृदय में हुक पैदा कर रही है तो दूसरी ओर दक्षिण के तटीय मैदानों में ताड़ और खजूर के वृक्ष मस्ती में झूम रहे हैं। मनुष्य मात्र का वृक्षों के प्रति आकर्षण और मोह स्वाभाविक तथा नैसर्गिक है। इसका कारण है कि आदि काल से पुरातन मानव ने इन्हीं वृक्षों के वन में सूरज का प्रथम प्रकाश देखा था। यही उसने जन्म ग्रहण किया, यही पला बढ़ा और युवावस्था को प्राप्त किया, यही वन उनकी शरण स्थली थी, इन्हीं के फल फूलों को खाकर वह पुष्ट हुआ, यही उसका घर और स्वर्ग था। इसीलिए आज भी मनुष्य के मन से इन वृक्षों का मोह मिटा नहीं है। भारतीय संस्कृति की संपदा रही है कि जिस किसी अज्ञान हो जाता है तो उसे धर्म से जोड़ दिया जाता है और इस तरह वह वस्तु हमारे लिए आदरणीय पूजनीय बन जाती है। इसी क्रम में भारतीय संस्कृति में वृक्षों में देवत्व का आरोपण किया गया है। वृक्षों की पूजा की जाती है और उनके साथ आत्मीयता बरती जाती है। आज भी हम देखते हैं कि पीपल, बरगद, पाकड़, नीम आदि वृक्षों की पूजा की जाती है। इन्हें जल सिक्त करके लोग परिक्रमा करते हैं। वन मनुष्य के रक्षक और आत्मीय है क्योंकि इनसे अनेक लाभ हैं। सर्वप्रथम तो ये वृक्ष वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। इस तरह वायुमंडल को शुद्ध रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वन हमारी प्राकृतिक संपदाओं के द्योतक हैं। इनसे फल, फूल और जड़ी बूटी प्राप्त होती है। इनसे इमारती और जलावन की लकड़ियां मिलती हैं। ये हरे भरे वन पशुओं के लिए अच्छे चारागाह हैं। इनमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी सुरक्षित जीवन जीते हैं। ये वृक्ष बाढ़ और तूफान से हमारी रक्षा करते हैं। इसके अलावे ये वृक्ष कृषि योग्य भूमि के क्षरण को रोकते हैं और बादलों को आकर्षित करके समय पर वर्षा कराते हैं। वृक्ष के भरे पत्तों के सड़ने गलने से उत्तम कोटि की प्राकृतिक खाद प्राप्त होती है। इसके अलावा मधु, लाह, रेशम आदि भी प्राप्त होते हैं। इन्हीं लाभों के कारण वृक्षों को भारत के ऋषियों ने देवत्व प्रदान किया था। सभ्यता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए मनुष्य ने आज आधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में पदार्पण किया है। आज मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसके साथ आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। इस औद्योगिकरण के युग में पुरानी परंपराएं पुरातन पंथी समझे जाने लगी हैं। बढ़ती हुई आबादी के लिए आवास योग्य और कृषि योग्य भूमि की खोज तेजी से होने लगी है। आज वन प्रायः समाप्त हो चले हैं। वनों को काटकर बस्तियां बसाई गई और खेती के लिए जमीन दी गई। सघन कुंजों का स्थान विशाल अट्टालिकाओं और दानवकार कारखानों ने ले लिया, जहाँ वृक्षों की शीतल छाया में थका राई विश्राम पाता था, वहाँ अब गांव, शहर, औद्योगिक संस्थान और कारखाने हैं। इस दूरदर्शिता का परिणाम यह हुआ कि भारत की जलवायु शुष्क हो गई, पर्यावरण प्रदूषित हो गया और वर्षा की मात्रा घट गई। भूमि का क्षरण तीव्र गति से होने लगा। भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगी। पर्यावरण की विकृति से लोक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा। वायुमंडल की ऊपरी ओजोन गैस की परत में दरार आने लगी। इस तरह संपूर्ण मानवता के लिए खतरे की घंटी बज उठी। संसार के सभी देशों का ध्यान इस ओर गया और पर्यावरण की शुद्धता के लिए वृक्षों का रहना आवश्यक माना गया। भारत सरकार ने भी अन्वेषणों के आधार पर इस तथ्य को स्वीकार किया और वृक्षों की रक्षा और नए वृक्षों को उगाने के लिए वन महोत्सव की योजना का कार्यारंभ 1950 ईस्वी से किया। हर व्यक्ति के लिए हर वर्ष 5 वृक्ष लगाना आवश्यक माना गया। हरे भरे वृक्षों को काटना अपराध माना गया। इस तरह वृक्षारोपण की क्रमबद्ध योजना प्रारंभ हुई, लेकिन सबल प्रेरणा के अभाव में यह योजना आगे चलकर शिथिल पड़ी। इधर कुछ वर्षों से फिर सरकार और जनता ने भी नई चेतना का संचार हुआ। अब वृक्षारोपण योजना व्यापक रूप से चलाई जा रही है। नगर, गांव, विद्यालय, बंजर भूमि, पर्वत आदि सभी स्थानों पर नए नए वृक्ष तीव्र गति से लगाए जा रहे हैं। 1976 ईस्वी से ही नियम बना दिया गया है कि किसी भी जंगल में वृक्ष काटने का काम बिना सरकार की अनुमति के नहीं किया जाए। सरकार ने बहुत से वनों को पशु पक्षियों के लिए संरक्षित घोषित कर दिया है। आम लोगों में जागरूकता आई है। लोग स्वयं वनों को काटने से रोकने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी क्रम में लोगों ने चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। ठेकेदार जिस वृक्ष को काटने लगते थे, उस वृक्ष से कई लोग चिपक जाते थे। इस तरह लोग अब अपने प्राणों की आहुति देकर भी वृक्षों की रक्षा करने को तैयार हैं। सरकार भी कठोरता से वन संरक्षण कर रही है। दुख की बात है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़े से लाभ के लिए वृक्षों की कटाई जारी है। आदिवासी क्षेत्रों में एक ओर सरकार नए वृक्ष लगा रही है और अभाव से पीड़ित आदिवासी उन्हीं नवजात वृक्षों को काट कर बेच रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के साथ ही साथ आम आदमी को भी आगे आना चाहिए। वृक्ष हमारे मित्र और जीवन रक्षक हैं। हमें भी हर वर्ष कुछ फलदार वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। सरकार भी लोगों को इस कार्य के लिए अपेक्षित सहायता देती है। स्पष्ट है कि जीवन के लिए पर्यावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः पर्यावरणीय तत्वों के गहन अध्ययन की आवश्यकता जरूरी है। मनुष्य की प्रगति के हित में है कि उसके पर्यावरण को ठीक से समझा जाए।
1: आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुन रहे थे एक पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय था पर्यावरण संरक्षण में वनों की भूमिका। वार्ताकार थे देवानंद झा। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 65 विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, एनडीए सरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों के अनुसार श्रेष्ठ भारत के लिए कर रही है कार्य। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल राज्य भर में सिपाही भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन। रेलवे आज और कल 27 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का कर रहा है परिचालन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर आंधी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पार्श्व गायिका अलका याग्निक, सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और अभिनेता ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से विभूषित किया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों और कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया है।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दूरदर्शी विचारों और संकल्पों को साकार किया जा रहा है। श्री चौधरी पटना स्थित भाजपा कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक श्री मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने उनकी स्मृति में पटना में एक भव्य पार्क बनाने की घोषणा भी की है।
2: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हम सभी लोगों को याद रखना होगा, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। आपकी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को मुख्य धारा में रखना है और आपको स्वस्थ करते हैं। अगले साल जब इसी दिन हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कार्यक्रम को मनाएंगे, उस दिन एक भव्य नया पार्क
0: भारतीय जनता पार्टी आपातकाल की वर्षगांठ के अवसर पर 25 जून को राज्य भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन जायसवाल ने आज पटना में प्रेस वार्ता में बताया कि इस अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जेपी सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा कल प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज और कल कुल 27 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि आज रात पटना, दानापुर, पाटलिपुत्र, गया, भभुआ रोड और नवगछिया समेत विभिन्न स्टेशनों से सहरसा, सिवान, बेतिया, अररिया, पूर्णिया और मधुबनी के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल बिहार शरीफ, राजगीर, किउल, नवादा, बक्सर, झाझा, गया, सुपौल, बेतिया, पूर्णिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और कटिहार समेत विभिन्न स्टेशनों के बीच 18 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने ऋण वितरण को लेकर बैंकों के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ऋण वितरण में बैंकों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के मुकाबले अब तक बहुत कम ऋण वितरित किया जाना चिंता की बात है। श्री यादव ने बैंक अधिकारियों को प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी भी दी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। श्री कुमार आज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग का उद्घाटन के बाद समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री कुमार ने बैठक में पीएमसीएच के किसी भी वरीय अधिकारी की मौजूदगी नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5 चीनी मिलें खोलने का लक्ष्य रखा गया है। पटना में गन्ना नर्सरी योजना और डिजिटल गन्ना सर्वेक्षण अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार गन्ना किसानों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि गन्ना आधारित उद्योगों के समग्र विकास के लिए विभाग ने कोयम्बटूर स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान और IIT पटना के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में पिछले दिनों हुए पुलिस मुठभेड़ मामले में जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और तत्कालीन शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुठभेड़ में मृत युवक भरत तिवारी की मां के बयान के आधार पर इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सुजावलपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक इम्तियाज अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक बेस मशीन, एक बैरल, 3 अर्धनिर्मित मैगजीन सहित हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए गए हैं। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दोपहर बाद भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और आसपास के जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर आंधी बारिश की आशंका है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है।
6: दिनांक 24 जून राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर वज्रपात की घटना दर्ज की गई। हमारे बेगूसराय संवाददाता ने बताया है कि बलिया प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आगामी मॉनसून के दौरान प्रदेश के विभिन्न भागों में संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सुपौल जिले में बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा के क्रम में जिला आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता मोहम्मद तारीख और सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी चंद्रभूषण कुमार ने आज जिले के किशनपुर और सरायगढ़ अंचल का निरीक्षण किया। इधर किशनगंज के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने जिले में संभावित बाढ़ और कटाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। जिलाधिकारी ने बैठक में राहत और बचाव कार्य, आश्रय स्थलों, चिकित्सा सुविधाओं, पेयजल व्यवस्था तथा एनडीआरएफ एसडीआरएफ जवानों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की है। रोहतास जिले में आरा सासाराम मुख्य मार्ग पर सिकटी गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में बिहार पुलिस के कई जवान घायल हो गए। एफसीआई के चावल लदे एक ट्रक ने पुलिसकर्मियों को लेकर जा रही बस में पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में 3 पुरुष और 9 महिला जवान घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल महिला पुलिसकर्मी नंदनी कुमारी को सासाराम सदर अस्पताल रेफर किया गया है। विक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है।
7: ये जो कंपनी आ रही थी बेगूसराय से आ रही थी, बेगूसराय से यहाँ रोहतास मुख्यालय में, फिर मुख्यालय से इनका जगह जगह मुहर्रम के अवसर पर थाना में पोस्टिंग किया गया था। तो उसी के क्रम में बस से ट्रेवल कर रहे थे तो एक एफसीआई का ट्रक इनको पीछे से ठोकर मार दिया है। तो जिसमें कुल 9 फीमेल कॉन्स्टेबल और एक मेल कॉन्स्टेबल इंजर्ड हो गए हैं।
0: वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के तत्वावधान में निजी चैनलों की प्रतिस्पर्धा के बीच लोक प्रसारक, दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्रासंगिकता को लेकर एक सर्वेक्षण किया जाएगा। विश्वविद्यालय की उच्च स्तरीय अकादमिक टीम और बोनाफाइड जर्नलिस्ट सोसाइटी विभिन्न चरणों में ये सर्वेक्षण करेगी। जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर नगर थाना परिसर में शांति

0: समिति की बैठक आयोजित की गई। अररिया जिले में 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों और कार्यालयों में नशा मुक्ति को लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनखर चौक के पास एक दोपहिया वाहन के शोरूम में अगलगी की घटना में कई वाहन जलकर नष्ट हो गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बक्सर दौरे के दौरान प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋतिक को निलंबित कर दिया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह कार्रवाई की है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बनौधा के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 800 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 65 विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, एनडीए सरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों के अनुसार श्रेष्ठ भारत के लिए कर रही है कार्य। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल राज्य भर में सिपाही भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन। रेलवे आज और कल 27 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का कर रहा है परिचालन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर आंधी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
1: मधेपुरा जिले के NH 106 पर फुलौत स्थित निर्माणाधीन कोशी मेगा ब्रिज का कार्य तेजी से चल रहा है। बीते दिनों जिले की प्रभारी मंत्री शीला कुमारी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। लगभग 7 किलोमीटर लंबे इस 4-लेन पुल के बन जाने से बीरपुर से बिहपुर तक सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे क्षेत्र में व्यापार, कृषि और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। इधर जिला सदर अस्पताल के मॉडल अस्पताल में 20 बेड का हाईटेक पोषण पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है। यहां नवजात शिशुओं से 5 वर्ष तक के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का इलाज और विशेष देखभाल की जा सकेगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार यह केंद्र बच्चों के स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व प्रसिद्ध बाबा सिंहेश्वरनाथ धाम में लगने वाले श्रावणी मेला की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिलाधिकारी अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, पंडाल, राहत शिविर और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए। 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग BPSC परीक्षा में जिले के 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। सफल अभ्यर्थियों में अखिलेश कुमार

0: मनिका सिंह, शुभम कुमार, राहुल कुमार, मोहम्मद आदिल सहित कई उम्मीदवार शामिल हैं। उनके इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है। सफल अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और नियमित अध्ययन को दिया है। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और सही रणनीति के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
1: मेरा नाम राहुल कुमार है। मैंने 70th PPSC में 1192 रैंक मिला है और रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है। पहला तो श्रेय तो सबसे पहले मेरे घर वालों को, माता पिता को जाता है। फिर उसके बाद जो भी टीचर्स जिन्होंने हमें गाइड किया, उसके बाद खुद के मेहनत को, क्योंकि 4 साल तक मोटिवेट खुद को रखना, फिर तैयारी करना लॉन्ग पीरियड।
0: बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छातापुर के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जब से 14 से कार्यभार संभाले, तब से हमारी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई और आर्थिक नीति ये हमारा जो है ये काफी ठोस रहा है, जिसके वजह से आज हमारा देश काफी मजबूत हुआ है आर्थिक दृष्टिकोण से। दूसरा, जो हमारा विश्व स्तर जो हमारा काम था, सम्मान था, हमारा मान था, उसमें काफी बड़ा बदलाव हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रभाव के वजह से जो हम लोगों का प्रभाव पूरी दुनिया में रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि हम लोग कहीं पीछे नहीं है। राम मंदिर बन रहा है जो लगभग 500 साल से अटका हुआ था, और आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है, नक्सलवाद गृह मंत्री जी के प्रयास से पूरी तरह खत्म हो गया, देश हमारा लगभग नक्सल फ्री होते जा रहा है, ये तमाम काम पूरे देश में हो रहा है।
0: बीते दिनों आम नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले के विभिन्न निकाय क्षेत्रों में नगर सहयोग शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मधेपुरा में बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मंच के तत्वावधान में नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 101 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर बल दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विश्व माहवारी स्वच्छता को लेकर जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण संबंधी जानकारी दी गई। इस अवसर पर जीविका दीदियों ने रेड डॉट चैलेंज के साथ अपने हाथों पर लाल बिंदु बनाकर माहवारी के प्रति जागरूकता का संदेश दिया और इससे जुड़े सामाजिक मिथकों को दूर करने पर विशेष जोर दिया। जिले में भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में माई बर्थ माई अर्थ मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। अभियान के तहत अब तक 3000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और पौधों की नियमित देखभाल पर जोर दिया गया। इधर भारतीय जननाट्य संघ इप्टा मधेपुरा की ओर से विमेंस कॉलेज परिसर में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों और कलाकारों ने विभिन्न पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। मधेपुरा जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गौशाला परिसर समेत अन्य संस्थानों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया और योग के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए।
3: अभी आप सुन रहे थे मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार सुरेंद्र कुमार राय की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए निराला का लिखा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार सुरेंद्र कुमार राय की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म लावारिस से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है राजेश रोशन का और इसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। इसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म ताल का ये शीर्षक गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों ने। ए आर रहमान का संगीत है और आनंद बख्शी ने इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में सुनिए फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का ये लोकप्रिय गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम और साथियों ने। नदीम श्रवण का संगीत है, समीर ने इसके बोल लिखे हैं।

0: The future feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
1: Nexa.
2: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

श्रोताओं, तेरे नाम का शीर्षक गीत सुनिए। इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने, हिमेश रेशमिया का संगीत है और इसके बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपसे एक आवश्यक सूचना साझा कर रहे हैं। फोन इन बहनों की पसंद की रिकॉर्डिंग 25 जून गुरुवार को 1:30 से 2 के बीच होनी है। जो बहनें अपनी पसंद के गीत सुनना चाहती हैं, वे हमें इसी समय पर अवश्य फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर है 2400981। नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, हमारा फ़ोन नंबर है 2400981। भागलपुर से बाहर की बहनें STD कोड 0641 लगाकर हमें कॉल करें। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, कार्यक्रम में सुनिए यकीन फिल्म से ये गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर ने इसके बोल लिखे हैं, संगीत हिमेश रेशमिया का है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: A diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
2: Nexa.
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म सिलसिला है प्यार का शीर्षक गीत। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। जतिन और ललित का संगीत है, समीर ने इसके बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम गीत के रूप में आइए सुनते हैं फिल्म क्या कहना का ये लोकप्रिय गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू, सोनू निगम और अलका याग्निक ने। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया है, मजरूह ने इसके बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार

0: देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
1: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
3: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
4: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3

0: जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत नामे पर दस्तखत होने के बाद अब तक भारत से वाबस्ता 11 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस से गुजर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाकी भारतीय परचम बरदार जहाज भी जल्द ही इस रास्ते से गुजरेंगे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से मुतालिक बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक लायानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इन दावों को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में एक जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मशक के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर बेस कैंप के पूरे अहाते में तलाशी और इलाके को महफूज बनाने की कार्रवाई अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही अमरीका अब नाए हुरमुज में पहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी करेगा और माली रियायतें फराहम करेगा, ताहम ये सब सख्त अमरीकी निगरानी के तहत होगा। सोशल मीडिया पर जारी एक तफसीली बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की क़यादत ने जारी सिफारती मुज़ाकरात में अहम रियायतें दी हैं, जिनका मकसद मगरबी एशिया में तवील कशीदगी के बाद एक जामे अमन फ्रेमवर्क कायम करना है। ताहम व्हाइट हाउस के इस बयान पर ईरान की हुकूमत ने फौरी एतराज़ किया और न्यूक्लियर निगरानी के दायरेकार के बारे में इख्तलाफ जाहिर किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ किया कि ईरान ने मखसूस न्यूक्लियाई तनसीबात पर बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी कबूल नहीं की। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। दिल्ली एनसीआर में मौसम में अचानक शदीद तब्दीली देखी गई, क्योंकि खित्ते में तेज बारिश, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल रही थीं। आईएमडी के मुताबिक कौमी राजधानी में कम से कम दर्जे हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब आईएमडी ने कहा कि 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मैच में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरी पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला ये मुकाबला इस टूर्नामेंट के सबसे अहम मुकाबलों में से एक था। लंदन मरहले के दौरान भारत जुमेरात को इंग्लैंड का सामना करेगा और 26 जून को एक बार फिर पाकिस्तान से खेलेगा। इसके बाद 28 जून को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले के साथ अपना दौरा मुकम्मल करेगा। आज फीफा आलमी कप में ग्रुप मरहले के तहत मुख्तलिफ अहम मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप के में हाउस्टन में रात 10:30 पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। वहीं ग्रुप एल के तहत देर रात 1:30 बोस्टन में इंग्लैंड और घाना आमने सामने होंगे। बाद में सुबह सवेरे 4:30 टोरंटो में क्रोएशिया का मुकाबला पनामा से होगा। जर्मनी के शहर सूल में जारी आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत के लिए आज का दिन भी शानदार रहा और उसने मजीद 3 तमगे हासिल किए, जिनमें चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। शिवा नरवार ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा जीता, जबकि युग प्रताप सिंह राठौड़ ने भी इसी मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहर एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निमटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात की निकास से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 205.76 میٹر یعنی 1458 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا بھاگلپور کیندر ہے۔ اب پرستوت ہے کارکرم ریڈیو ناٹک۔ شروتاؤں، کارکرم میں آج آپ سنیں گے ایک پورو پرسارت ناٹک، شیرشک ہے بدلتا گاؤں۔ اس کے لیکھک ہیں دھننجے مشر، اس کے نردیشک ایوم پرستوت کرتا ہے امیت کمار۔
2: پرستوت ہے ناٹک بدلتا گاؤں، لیکھک ہیں دھننجے مشر، پرستوتکرتا ایوم نردیشک امیت کمار۔

0: लगता नहीं ये मेरा ही गांव है। कितना बदल गया है सब कुछ।
1: सुबह सुबह नए नए बाबा, लगता है कोई मकान ढूंढ रहे हैं। अच्छा चलकर पूछता हूँ। बाबा आप किसी के मकान को ढूंढ रहे हैं क्या?
0: हाँ बेटा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये खुदरामपुर गांव ही है ना?
1: हाँ बाबा, ये खुदरामपुर ही है।
0: कहीं ये दूसरा खुदरामपुर तो नहीं?
1: आप किस खुदरामपुर की खोज कर रहे हैं बाबा? 50 कोसों तक दूसरा कोई खुदरामपुर है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: लेकिन बाबा
0: हाँ,
1: आप ढूंढते हैं किसे?
0: ढूंढने को तो मैं इस गांव में सभी को ढूंढ रहा हूँ।
1: सभी को?
0: हाँ, किस किस का नाम बताऊं बेटा। लेकिन छोड़ो, तुम क्या बता सकते हो ये बिशु पांडे का कौन सा मकान है?
1: बिशु पांडे?
0: हाँ, बिशु पांडे
1: क्या काम करते हैं? मेरा मतलब है किस कार्यालय में?
0: तो क्या तुम बिशु पांडे को नहीं जानते?
1: अब इतने बड़े गांव में कौन किसको जान सकता है बाबा। किसी को जानने से फायदा भी क्या है, किनको फुर्सत है गांव भर के आदमी को जानते फिरे।
0: अरे वो तो भजन कीर्तन में डूबा रहने वाला व्यक्ति है, किसी कार्यालय का अफसर या बड़ा बाबू नहीं कि लोग उसे जाने। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं स्वयं खोज लूंगा उसे, स्वयं खोज लूंगा।
1: ठीक है बाबा, खोज लीजिए।
0: क्या जमाना आ गया, किसी को किसी से मतलब नहीं। ये आवाज कहाँ से आ रही है?

0: हाँ हाँ अब तो समझ में आ रहा है, ये विशु पांडे की आवाज है। हाँ, ये विशु पांडे की ही आवाज है।
1: वही जुड़े जब प्रेम से,
0: ठीक उसी तरह का स्वर बहुत दिनों के बाद फिर से पहचान में आ रहा है। विशु पांडे,
2: इस समय इधर कौन आ रहा है? अरे अरे, ये तो अपना कैलाश चौधरी लगता है।
0: आप विशु पांडे तो नहीं?
2: और आप कैलाश चौधरी तो नहीं?
3: अरे अरे, तुमने ठीक ही पहचाना मित्र।
1: तुमने भी ठीक पहचाना मित्र।
2: चौधरी,
3: हाँ,
2: तुम इतने सालों तक कहाँ वनवास में रहे?
3: हाँ,
2: गांव छोड़कर कैसे इतने सालों तक तुम्हें बाहर रह गया? जवानी में गए थे और बुढ़ापे में गांव लौटे हो।
3: अरे विशु, तुम भी तो बूढ़े हो गए हो, गांव में रहकर तुम ही कौन सा जवान बने रहे।
2: हाँ भाई, ठीक कहते हो।
3: सारा भारत घूम आया, लेकिन अपने गांव जैसी हल माटी की सुगंध नहीं है।
2: अरे तो ये कहो न चौधरी, कि अपने गांव की मिट्टी खींच लाई है तुम्हें।
3: तुमने बिल्कुल ठीक कहा पांडे। वैसे भी हर आदमी की यही इच्छा होती है कि उसकी ठठरी उसके गांव के ही हवा पानी मिट्टी में समाए तो अच्छा।
2: ये तो तुमने ठीक ही कहा चौधरी, लेकिन अपना गांव थोड़े ही न रह गया है। नरक तो नहीं कहूँगा, लेकिन उससे कम भी नहीं रह गया है। अब ये गांव बदल रहा है चौधरी, बदल रहा है।
0: तुम्हारे कहने का कुछ मतलब नहीं समझा?
2: समझा भी नहीं सकूँगा। अच्छा, पहले ये बताओ कि गांव में अब स्थायी तौर पर रहने आए हो या कुछ दिन रहकर फिर वनवास लौट जाओगे? आधे सन्यासी तो हो ही गए हो, क्या पता कब पूरे सन्यासी बन जाओ।
3: नहीं विशु, नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला।
2: अच्छा
3: हाँ, अच्छा ये बताओ, अपने बच्चू भैया का क्या हालचाल है?
2: बच्चू भैया?
3: हाँ बच्चू भैया।
2: चलो अपनी आँखों से देख लेना उनका हालचाल।
3: ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम?
2: अरे पहले चलो तो सही। अच्छा अब, अच्छा चौधरी ये बताओ कि तुम्हें वो वाला गाना याद है?
3: कौन कौन?
2: वही वाला
3: इमली।

0: बिल्कुल
1: हाँ
0: और कितनी देर लगेगी?
1: वो हरे रंग का मकान उन्हीं का है।
0: ओ अच्छा अच्छा वो मकान।
1: हाँ
0: लेकिन इतनी भीड़ क्यों लगी है?
1: अरे क्या बताऊं चौधरी,
0: क्या हुआ?
1: ये तो हर दूसरे दिन की कहानी है।
0: दूसरे दिन की कहानी?
1: वो कहते हैं ना,
0: हाँ।
1: जायदाद जितनी बड़ी समस्या भी।
0: हाँ भाई, कमोबेश यही हाल तो सब जगह है। अच्छा अच्छा ये यही बच्चू भैया है क्या?
1: अरे हाँ भाई, यही बच्चू भैया।
0: अच्छा नमस्कार बच्चू भैया।
1: नमस्कार नमस्कार कैलाश। अरे तुम।
0: मैं
1: आप पहचाना भाई, आप पहचाना। अब तो नहीं ना जाओगे?
0: अरे अब तो गांव भी मुझे बाहर निकालेगा तो भी नहीं निकलूंगा। हाँ समझे बच्चू भैया। बच्चू भैया,
1: हाँ
0: बिशु बता रहा था कि आपका अपने गोतिया से विवाद चल रहा है।
1: हाँ चौधरी, तुम्हारी भाभी तो मुझे शादी के कुछ दिन बाद ही छोड़कर चली गई। उसके बाद मैंने शादी नहीं की, नहीं किसी बच्चे को गोद लिया। सोचा था मेरे भाई के बच्चे ही मेरे वारिस हो जाएंगे, लेकिन इन्हें तो जायदाद की ऐसी भूख जगी है कि मेरे मरने तक का भी इंतजार नहीं। इसी वजह से रोज कुछ न कुछ बखेड़ा होता रहता है। अब गांव में भी एकता नहीं है, सब एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं। अजब स्थिति हो गई है भाई, अजब स्थिति हो गई है।
2: कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बच्चू भैया, सब ठीक हो जाएगा।
0: तो इसी स्थिति को बदलने के लिए अब हम लोगों को संघर्ष करना है। हम सबों की उम्र ही क्या बची है, बचे हुए समय में अगर हम एक गांव को भी गांव बना सके तो बहुत बड़ी बात होगी।
2: लेकिन ये संभव भी है क्या?
0: बिल्कुल संभव है।
2: गांव में कहीं मेल भी रह गया है, किसी टोले को किसी टोले से कोई मतलब नहीं।
0: सोचो विशु, ये कितनी खतरनाक स्थिति है।
1: ये तो मुझे भी लगता है कि हम लोगों से कहीं ना कहीं कोई बड़ी भूल हो गई। क्या गांव वालों से हमें मदद मिलेगी?
0: अवश्य मिलेगी, अवश्य। अगर किसी से नहीं भी मिली तो युवाओं का साथ लेंगे।
1: युवा?
0: हाँ।
1: अरे युवाओं से तो इसमें कोई मदद नहीं मिलेगी।
0: अरे यही भूल है हम सबों की, जात पात धर्म की दीवारें तोड़ेंगे तो गांव शहर देश के युवा देश का नक्शा बदल रहे हैं। इस गांव का भाग्य भी बदलेगा तो यहाँ के युवाओं के हाथों ही। हम लोगों की भूमिका इतनी ही होगी कि उन्हें आशीर्वाद देते रहें।
1: चौधरी, ऐसा ही होगा। और हाँ, आज से ही हम सब इस काम पर लग जाते हैं।

0: जो गीत गा रहे हैं। बाबा बाबा आप कौन हैं और अकेले इस धूप में खंजड़ी बजाकर क्या गा रहे हैं?
1: पहले ये तो बताओ बेटी कि तुम कौन हो?
0: मैं? आप बाबू अखिलेश सिंह को तो जानते ही होंगे।
1: हाँ हाँ, अखिलेश, अरे वो तो मेरे बचपन का दोस्त है।
0: हाँ, मैं उन्हीं की बड़ी बेटी हूँ।
1: अच्छा।
0: उषा 10 साल से विदेश में थी, डॉक्टरी की पढ़ाई करने गई थी। पढ़ाई पूरी हो गई तो गांव लौट आई हूँ।
1: अच्छा, तो क्या अब यहीं रहोगी या फिर विदेश लौट जाओगी?
0: नहीं नहीं बाबा, अब ना विदेश जाऊंगी ना शहर, बस इसी गांव में रहकर जो हो सकेगा करूंगी। अरे आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा?
1: नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। जिसको अपने देश, अपने गांव, अपनी माटी से प्यार होता है, उसे शहर में या विदेश में हीरे का खजाना भी मिल जाए तो अपनी जन्मडीह नहीं छोड़ता।
0: हाँ बाबा, आपकी बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। बताइए ना आप हैं कौन?
1: मैं तुम्हारे ही गांव का कैलाश चौधरी हूँ। बहुत साल पहले ये गांव छोड़कर चला गया था।
0: अच्छा अच्छा, हाँ, पिताजी ने कई बार आपकी बात की थी। कई बार आपके बारे में उनसे सुना है।
1: हाँ, सोचा था इतने सालों बाद गांव में सब कुछ बदला हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ गांव बदला है, लोग तो अभी भी वहीं ठहरे हुए हैं जहाँ वो आज से 40 साल पहले थे। अब लोगों को अपने गांव से मतलब नहीं रह गया, सब अपने अपने सपने में लीन हैं। न इस गांव के पोखरों से उनका मतलब है, न बाग बगीचों से, न खेतों से, न हवा माटी से।
0: बाबा,
1: हाँ,
0: आपकी बातों से लगता है आप मेरे काम में मेरी मदद कर सकते हैं।
1: मदद? किस काम के लिए?
0: आप यहाँ के पुराने ठाकुर गणपति को तो जानते ही होंगे ना?
1: हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारा बचपन साथ ही बीता है। उसके दादा ने इस गांव के लिए एक ग्राम पोखर दान दिया था।
0: हाँ हाँ,
1: जिसके कारण यहाँ खेती करना संभव हो पाया।
0: हाँ बाबा, वही ठाकुर गणपति जिस पोखर की आप बात कर रहे हैं, वो लगभग 100 साल पुराना तो होगा ही।
1: हाँ, होगा ही।
0: अब उस पोखर की वजह से इस गांव में घमासान छिड़ा हुआ है।
1: अच्छा,
0: पोखर का इस गांव की समृद्धि में क्या योगदान है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है बाबा। लेकिन आज इसी पोखर की जमीन को मिट्टी से भरकर एक बड़ा कारखाना लगाने की तैयारी है।
1: कारखाना? मुझे थोड़ा ठीक ठीक बताओ ना।
0: बाबा, मैंने विदेश में रहकर पढ़ाई की है, वहीं मेरे साथ ठाकुर गणपति का बेटा किशोर सिंह भी पढ़ता था।
1: अच्छा।
0: उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वहां तो वो बड़ी बड़ी बातें करता था कि गांव जाकर पूरे गांव का नक्शा ही बदल देना है। वो अपने शहरी दोस्तों के साथ यहाँ एक कारखाना लगाना चाहता है।
1: अच्छा,
0: जिसके लिए जमीन का एक बड़ा टुकड़ा चाहिए उसे। अब देखिए ना, चूंकि ये पोखर उसके पूर्वजों ने इस गांव को दिया है।
1: हाँ।
0: तो अब वो इस पर अपना कानूनी हक जता रहा है। अब क्या बताऊं बाबा, पूरा गांव एक तरफ है और किशोर उसके पिताजी एक तरफ।
1: मामला तो गंभीर है।
0: हाँ, इसलिए हमने कुछ वकीलों से भी संपर्क किया है ताकि कोई कानूनी हल निकल सके।
1: देखो उषा बेटी, हमारे समय में तो सब कुछ गांव की पंचायत में ही मिलजुल कर हल हो जाता था। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन बस एक बात कहनी है।
0: हाँ हाँ, कहिए ना।
1: तुम इस समस्या के समाधान के लिए जो भी करना चाहो करो, लेकिन उससे पहले मुझे एक प्रयास करने दो। मेरा अब भी मानना है कि गांव के बदलते स्वरूप में अब भी गुंजाइश बाकी है, जिन्हें बस समझने की जरूरत है। बस तू मेरा साथ दो बेटा।
0: हाँ, क्यों नहीं, जहाँ इतने दिन रुकी हूँ तो कुछ दिन और सही।
1: हाँ हाँ, चलो चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ।
0: हाँ, हाँ, हाँ, चलिए बाबा,
1: चलो
0: चलिए,
1: चला जाए।

0: हेलो, हाँ हाँ, मैं किशोर सिंह ही बोल रहा हूँ, कहो। क्या गांव वाले राजपोखर को गांव की संपत्ति बताने के लिए संगठित हो रहे हैं? क्या कहते हो? हाँ हाँ बोलो। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि इसमें उषा का ही हाथ होगा। और कौन? विशु पांडे, बच्चा सिंह, कैलाश चौधरी। हाँ हेलो, कहाँ देखा? राजपोखर के निकट। अरे राजपोखर हमारे पूर्वज का रहा है, जिस पर मेरा पुस्तैनी अधिकार बनता है। हाँ हाँ हाँ, अरे ये तो मैं भी समझ रहा हूँ। ये काम सिर्फ 4-5 आदमी का बनाया हुआ खेल है, जिसका नेतृत्व 40 साल के बाद गांव में आए वृद्ध कैलाश चौधरी कर रहे हैं। मैं तो उनसे मिल भी चुका हूँ जब वो पहली बार लौटकर गांव आए थे और अपरिचितों की तरह गांव में भटक रहे थे। अगर उस दिन पता होता कि ये गांव आकर इस तरह आग लगाएंगे तो उसी दिन किसी और गांव का पता बता देता मैं इन्हें। ठीक है, तुम लोग वहीं डटे रहो, आगे जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा।
1: किससे बात कर रहे थे किशोर
0: जी? बेचू से।
1: इतनी रात को?
0: पिताजी बात ही कुछ ऐसी है, सारे गांव वाले मिलकर हम लोगों के खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं।
1: क्या विद्रोह?
0: जी।
1: लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अच्छा किशोर।
0: जी पिताजी।
1: तुम जाकर आराम करो, मैं देखता हूँ अब आगे क्या करना है।
0: पिताजी आप भी सो जाइए, अब कल सुबह सोचते हैं इस बारे में।
1: ठीक है।

0: बेटा गणपति नींद से जागो, देखो मेरी क्या हालत हो गई है।
1: आपकी ऐसी हालत किसने की है?
0: तुम ही ने तो की है मेरी ये हालत।
1: नहीं नहीं, नहीं।
0: सारे शरीर पर जख्म दे दिए हैं, ऊपर से ये कारखाना खोलकर तुम मुझे मारने ही वाले हो।
1: ये आपके शरीर से इतना खून क्यों बह रहा है? और आप कौन हैं? कौन हैं आप?
0: मैं इस गांव का ग्राम देवता हूँ।
1: ग्राम देवता?
0: शरीर से बहने वाला ये रक्त तुम मानवों द्वारा दिए गए जख्मों का है।
1: ग्राम देवता? मंदिर में तो आपकी ही मूर्ति है। ये ग्राम देवता, प्रणाम प्रणाम ग्राम देवता। आपकी ये हालत हमारे कारण से है, हमें माफ कर दीजिए ग्राम देवता। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा ग्राम देवता, वैसा ही होगा।
0: एक बात समझ लो, अगर मैं ही नहीं रहूंगा तब तुम्हारा अस्तित्व ही कहाँ रहेगा।
1: मैं समझ गया ग्राम देवता, सब कुछ समझ गया, आपकी बातों का मतलब भी समझ गया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे ये गांव बदल जाए। बस बस बस आप हमें छोड़कर मत जाइए, मत जाइए ग्राम देवता, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए।
0: ठीक है।

0: सिर बहुत भारी लग रहा है। रात में कैसा सपना देखा, ग्राम देवता का वो जख्मी शरीर। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं आज ही उन लोगों से मिलकर सब ठीक कर दूंगा। लेकिन किशोर, किशोर को कैसे समझाऊं? किशोर से तो बात करनी ही होगी। किशोर, किशोर।
1: जी पिताजी।
0: जरा गाड़ी तो निकालो।
1: इतनी सुबह सुबह क्या हो गया पिताजी?
0: जो कहता हूँ बेटा उतना करो, बाकी बातें रास्ते में होंगी।
1: जी

0: बच्चा भाई, बच्चा भाई कहाँ हो? अरे भाई बाहर तो निकलो।
1: अरे ठाकुर, तुम इतनी सुबह सुबह, और ये साथ में तुम्हारा इंजीनियर बेटा भी है, वाह वाह।
0: वो बिशु पांडे कहाँ है? और शेख साहब, अरे भाई सभी गांव वालों को तो बुलाओ, कुछ कहना है उन लोगों से।
1: क्या हो गया ठाकुर, कौन सी बातें करनी है?
0: अरे बच्चा भाई, पहले सबको बुलाओ तो सही।
1: अभी किसी को भेजता हूँ।
2: लगता है चौधरी, कल रात वाले दोनों प्लान काम कर गए। शेख साहब का ग्राम देवता बनकर गणपति ठाकुर से बात करना और बेचू को दिखाकर पोखर के चारों तरफ इकट्ठा होकर नारेबाजी करना, दोनों तीर सही निशाने पर लगे हैं।
3: अरे अरे, सही कह रहे हो विशु, बस अब अपना मुंह बंद रखना।
2: हाँ चौधरी, हाँ। लेकिन लेकिन मुझे तो किशोर की चिंता है, कहीं वो मामला बिगाड़ ना दे।
4: लो, सब लोग आ गए।
2: अरे अरे, ये ठाकुर खड़ा क्यों हो गया?
0: सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुझसे एक बड़ी गलती होने जा रही थी, लेकिन लेकिन मंदिर वाले ग्राम देवता की कृपा है मुझ पर कि कल रात उन्होंने साक्षात दर्शन दिए, उन्होंने मुझे सही राह दिखाई।
5: पिताजी, पिताजी पता नहीं क्यों मुझे इसमें सच्चाई नहीं लग रही।
0: किशोर,
5: कहीं वो आपका भ्रम तो नहीं?
0: किशोर, किशोर मैं कह रहा हूं, अगर एक शब्द भी तुमने इसके बाद बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
5: पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप?
0: अरे मैंने तुम्हें विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, ताकि गांव के बदलते स्वरूप को एक सही आकार दिया जा सके। अरे लेकिन तुमने तो गांव को ही बदलने की बात ठान ली। और मुझे देखो, मुझे देखो, मैं भी तुम्हारे बहकावे में आ गया। अरे तुमसे अच्छी तो उषा बेटी है, जो कम से कम गांव वालों के साथ तो खड़ी रही। बेटा अब भी समय है, तुम अपनी जिद छोड़ दो, छोड़ दो अपनी जिद, नहीं तो मैं कह रहा हूं अपने पूर्वजों की सारी संपत्ति गांव के नाम दान कर दूंगा।
1: वाह ठाकुर वाह, पोखर को बचाकर तुमने फिर से इस गांव को बचा लिया, इस गांव को बचा लिया।
6: जहां तक बात किशोर की है तो उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो फिर से नई शुरुआत कर सके।
1: हाँ हाँ, क्यों हाँ, नहीं हाँ। एक मौका तो किशोर को मिलना ही चाहिए।
7: हाँ, मिलना ही चाहिए। ठाकुर साहब, एक मौका अवश्य दें आप।
8: हाँ चाचा जी, किशोर को माफ कर दीजिए।
5: पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। कैलाश चाचा, विशु चाचा, बच्चू चाचा, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। उषा बहन, मुझे माफ करना, मैं बस इस गांव का विकास करना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था कि विकास का मतलब सिर्फ बदलाव करना ही नहीं है, बल्कि वो बदलाव जिनके लिए किया जा रहा है उनको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ताल, तलैया, पोखर, ये सभी गांव के अभिन्न अंग हैं। इनका अस्तित्व मिटाकर कारखाना, नहीं नहीं, ऐसा तो अब मैं सोच भी नहीं सकता। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि बदलता गांव कैसा होना चाहिए। हाँ, कैसा होना चाहिए बदलता गांव।
1: हाँ हाँ हाँ, समझ गए,
6: समझ गए। तो विशु भैया,
1: हाँ
6: हो जाए,
1: हो जाए गांव।

0: अभी आपने धनंजय मिश्र का लिखा नाटक सुना बदलता गांव। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय भूमिका सहित इस प्रकार है: कैलाश चौधरी, डॉक्टर शुभतोष बागची, विशु पांडे की भूमिका में थे अरुण कुमार झा, ठाकुर गणपति डॉक्टर पवन कुमार, बच्चू सिंह, संजय कुमार, किशोर की भूमिका में थे राजेश प्रियदर्शी, उषा, संगीता घोष, और ग्राम देवता की भूमिका में थे दशरथ प्रसाद साहा। प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद सरशार अहमद, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशक थे अमित कुमार। ये नाटक आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति थी।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो नाटक में एक पूर्व प्रसारित नाटक, शीर्षक था बदलता गांव। लेखक थे धनंजय मिश्र, निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब पेश है अंगिका लोकगीतों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गूंजे बिहार।

श्रोताओं नमस्कार, सांत्वना का गुंजी बिहार के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। बड़ी शुभ घड़ी है, शुभ दिन है, विवाह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आइए हम और आप भी शामिल हों इस समारोह में और आनंद लें इस मंगल गीत का गिरिजा देवी से।

0: और यही कामना की जाती है कि उनके आंगन में भी राम सरीखे वर का आगमन हो, जो सिया सरीखी दुल्हन को ब्याह कर ले जाए।
1: रामा हरे हरे बा।

कजी दिया ले ला जंगिया चढ़ा हाई रामा सिया ले ला जंगिया चढ़ा ई रामा थरिया ही कांपे धूबिया छतवा रामा थरिया ही कांपे धूबिया छतवा गई गेड़ू।

0: हुआ कन्यादान गीत। कन्यादान का रस्म निभाना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: आज ऐसा हो रहा है?
1: हाँ,
0: होता है,
1: होता
0: है। हाँ। आज की बेटियां ये सारे रस्मों को निभाती हैं?
1: निभाना है, निभाती हैं, निभाना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। किसी भी चीज की, किसी भी पात्र के ये खासियत, दूसरे कन्या ऐसी चीज है कि हम घर में रखने योग्य नहीं है। बहुत पूर्वज जब ये विवाह का प्रथा चला, बहुत तरह का विवाह का प्रथा चला, तो बहुत तरह के विवाह होते गई हरेक युग में हरेक समय में। तो पहले ब्राह्मण को कन्या, पहले जो दान होता है कन्या से, पहले ब्राह्मण को दान किया जाता है, उसके बाद वर को दान किया जाता है।
0: अच्छा।
1: तो पहले वर खोजते थे और योग्य वर देख करके, जो बढ़िया हो, शक्तिशाली हो, जो स्त्री का रक्षा कर सके, उसी के हाथ में कन्या का हाथ सौंप देते थे।
0: अच्छा।
1: वही दान कहा जाता है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: संकल्प करते थे, तिल और जौ लेकर के, शंख लेकर के, शंख लिया जाता है इसलिए कि शंख के जैसा ही तुम मना आबाद रहो। हम तुमको शंख पानी दे रहे हैं, अपना कुल से आप तुमको
0: दूसरे कुल में दे रहे हैं।
1: दूसरे कुल में दे रहे हैं।
0: तो सिंदूरदान का भी कोई गीत होगा?

कहाँ के दुलारी बेटी सिंदूरा के मोला करे हे, कहाँ के दुलारी बेटी सिंदूरा के मोला करे। अयोध्या के

कन्यादान की परंपरा बहुत पुरानी है, पर आज भी मंडप पर इस रस्म को निभाया जाता है। इस बात की पुष्टि गीतों में भी है। पिता की आंखें गीली हो जाती हैं, हाथों में कंपन और देह विदेह की तरह निष्प्राण। आइए सुने कन्यादान गीत और संभालें अपनी आंखों से बहते आंसू को।

जाती है। पिता की आंखें गीली हो जाती हैं, हाथों में कंपन और देह विदेह की तरह निष्प्राण। आइए सुने कन्यादान गीत और संभालें अपनी आंखों से बहते आंसू को।

विवाह के बाद जब दुल्हन दूल्हा के साथ कोहवर में जाती हैं, तो वहां की रीत बड़ी अबूझ पहेली सी होती हैं। पर इस पहेली को सुलझाने के लिए साली, सरहज और बहन भाभी सरीखी स्त्रियां वहां मौजूद रहती हैं सीख देने के लिए, और गीतों के माध्यम से ही जीवन की सरसता और श्रृंगार का परिचय दे देती हैं।

0: सारा।
1: जब घर में नई बहू का प्रवेश होता है तो उसे देखने की ललक हर किसी में होती है। दुल्हन भी घूंघट की ओट से परिवारजन को देखती है, पर रिश्ते को समझ नहीं पाते। इस समझ को समझने लायक बनाती हैं इस अवसर पर गाए जाने वाले गीत। इस गीत से एक ऐसी छटा उपस्थित होती है कि हंसते हंसते सब लोटपोट हो जाते हैं।
0: चलो चलो बहिना जहीना चीताहीना, चलो चलो बहिना जहीना चीताहीना, लाल भैया लाल।

चीतही न अपनी सासु मंगल गावे चचिया सासु ढोलक बजावे अपनी सासु मंगल गावे चचिया सासु ढोलक बजावे यही हुला से ददिया सासु यही हुला से ददिया सासु निपलक सौंसे अंगना चलू चलू बहिना जहिना छी तहिना लाल भैया लौके अलन लाल रंगल कनिया चलू चलू बहिना लक्ष्मी भौजी द्वारे अली लाले पलकी चढ़ के अली लाले पलकी चढ़ के अली धिया पूता नाच नाच के धिया पूता नाच नाच के मार रहल छरपनिया चलू चलू बहिना धिया पूता नाच नाच के धिया पूता नाच नाच के मार रहल छरपनिया चलू चलू बहिना जहिना छी तहिना लाल भैया लौके अलन लाल रंगल कनिया चलू चलू बहिना सेहो भौजी अंगना अली धाने भरल चंगेरा चढ़ के सेहो भौजी अंगना अली धाने भरल चंगेरा चढ़ के ढोलक बाजे पिपही बाजे ढोलक बाजे पिपही बाजे बाज रहल हरमोनिया चलू चलू बहिना जहिना छी तहिना

बहिना जहिना छी तहिना, भैया भौजी खेलत पचीसी गाय, भैया भौजी खेलत पचीसी, घोघ तर से भौजी जितली, घोघ तर से भौजी जित, पीठ लाग के बिहुसी बैठल भौजी के लोकनिया, चलू चलू बहिना

0: लाल भैया लौके अलन, लाल भैया लौके अलन, लाले रंगल कनिया, चलू चलू बहिना।
1: विवाह गीतों पर आधारित गूंजी बिहार का ये अंक आपको कैसा लगा, आप हमें पत्र लिखकर जरूर बताएंगे। इसके लिए हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है deairbhagalpur@gmail.com। अब गूंजी बिहार कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दें। नमस्कार, सांत्वना का।

0: आप सुन रहे थे अंगिका लोकगीतों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गूंजी बिहार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब पेश है गीत गजल कार्यक्रम भावगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज के अंक में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त महताब। आज हम आप सभी के लिए खूबसूरत फिल्मी गजलें लेकर आए हैं और खूबसूरत फिल्मी गजलों को हम आपसे साझा करेंगे खूबसूरत लोकप्रिय गज़लों के साथ, कुछ नज़मों के साथ। आज कुछ ऐसे चुनिंदा फिल्मी गज़लें आपसे साझा करूंगा, आपको सुनवाऊंगा, जो गज़लें दर्द भरे हैं, जिनमें दर्द है, जिनमें कशिश है, जिनमें अफसोस है, एक तरह का गुज़रे हुए कल के लिए अफसोस, मौजू के लिए अफसोस, वो जो लम्हे हमने जिए और जिसकी ख्वाहिश अब भी है, लेकिन वो लम्हे अब गुज़र चुके हैं और अब उस लम्हे को, उस मोहब्बत को पाने की कोशिश में हम आज भी तड़प रहे हैं, उसी दर्द को बयां करेंगे हम। कुछ ऐसे ही दर्द को बयां करता है अहमद फराज की ये गज़ल, जिसमें अहमद फराज ये कहते हैं कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते आते। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। इसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, इसकी वो जाने उसे पासे वफा था या ना था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते।
1: अभी अलविदा मत कहो।

श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम के पहले गजल के रूप में सुना फिल्म निकाह का ये गीत। इस गीत को गाया था महेंद्र कपूर ने। साथियों, आज हम खूबसूरत गजलें आपसे साझा कर रहे हैं और उसकी खूबसूरती बयां कर रहे हैं। एक ऐसी ही गज़ल लिखी बशर नवाज़ ने। बशर नवाज़ उर्दू शायरी में उन शायरों में गिने जाते हैं जिनकी भाषा बहुत सादा रही है, लेकिन असर उनका बहुत गहरा होता था। वे बड़े बड़े अलंकारों या मुश्किल शब्दों के बजाय रोज़मर्रा की ज़िंदगी, बिछड़ने का दर्द, यादें, अकेलापन और इंसानी जज्बात को देखकर नफासत से बयां करते थे और अपनी लेखन से हम सबको बहुत बहुत इंस्पायर करते थे। उनके लेखन में एक हल्की उदासी और गहरी संवेदनशीलता दिखाई देती है। अगर हम बाजार फिल्म के इस गज़ल की बात करें जो अभी हम आपको सुनवाएंगे, इस गज़ल में भी उन्होंने दरअसल जुदाई और यादों की कहानी बयां की है। इसमें शायर अपने महबूब या किसी बेहद करीबी इंसान को कुछ कहना चाहता है और उसे याद दिलाना चाहता है गुजरे कल की। वो कहना चाहता है कि आज भले ही मेरी अहमियत महसूस ना हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहूँगा तब मेरी हर बात, हर मुलाकात, हर लम्हा तुम्हें याद आएगी। गज़ल में कोई शिकायत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, बस एक शांत यकीन है।

कि समय बीतने के बाद जो यादें होती हैं वो गहरी हो जाती हैं और गहरी होती जाती हैं। और इस तरह से इस गज़ल में दर्द बयां किया गया है, लेकिन किसी करवाहट के साथ नहीं, बड़ी मोहब्बत से। यही वजह है कि जब भूपिंदर सिंह, जो इस गज़ल के गायक कलाकार हैं, उन्होंने जब अपनी आवाज़, जो उनकी मखमली आवाज़ है, उसमें इस गीत को गाया, इस गज़ल को गाया, तब इस उर्दू गज़ल की रचना को अमर बना दिया। यह फिल्म बाजार का ये खूबसूरत गज़ल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गज़ल को संगीतबद्ध किया है खय्याम ने, भूपिंदर सिंह की आवाज़ है और इसे लिखा है मशहूर शायर बशर नवाज़ ने।

कितनी खूबसूरती से बयां किया बशर नवाज़ ने इस गज़ल के द्वारा कि बिछड़े कल को अगर याद करोगे तो सब कुछ याद आएगा। उन्होंने कहा कि ये चांद बीते ज़माने का आईना होगा, यानी चांद को देखकर पुराने दिन की याद आएगी तुम्हें, जैसे वो गुजरे हुए वक्त का एक आईना हो। उन्होंने कहा कि हथेलियों की हीना याद कुछ दिलाएगी। इसका मतलब है कि जो हाथों की मेहंदी भी है वो कभी किसी पुराने रिश्ते या मुलाकात की याद दिलाएगी। गली पे मोड़ पे सूना सा कोई दरवाज़ा, यानी वो खाली दरवाज़ा प्रतीक है एक इंतज़ार का जो एक लंबे समय से किया जा रहा है। वैसे इंतज़ार गुजरे कल का तो होता ही है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे लम्हों का भी इंतज़ार करते हैं जो फिर कभी लौट कर आएंगे नहीं, और आने वाले दिनों में भी वो कभी नहीं आएंगे। ऐसे फिल्मी गीतों में गज़लों में नाम शुमार है फिल्म दुश्मन की इस गज़ल का, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और उत्तम सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया था। जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल बहुत लोकप्रिय रहा है। ये एक गीत की शक्ल में पेश किया गया है क्योंकि हिंदी सिनेमा में इसे बहुत पसंद किया गया, इस रूप को, गज़लों के इस रूप को बहुत पसंद किया गया, और शायर इस तरह से इसे बयां करता है जो आनंद बख्शी गीतकार रहे हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसे लिखा है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। इसमें एक गहरा वियोग है, वो अपने किसी को खो देने का दर्द बयां कर रहा है। अधूरी बातें, वो पछतावा कि वो जो बातें तुमसे करनी थी, वो जो मुलाकातें जो तुमसे करनी थी, वो जो रह गई है वो लगातार मेरा पीछा कर रही है, और इस तरह से गुजरे लम्हे अब परेशान कर रही है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गजल का कार्यक्रम भावगीत। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत अजीज़ की आवाज़ में बाजार फिल्म का ये लोकप्रिय गज़ल, जिसके लेखक थे मखदूम मोहीउद्दीन और इसे खयाम ने संगीतबद्ध किया था। आशा है कि आज आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। कार्यक्रम की प्रस्तुति से जुड़ी कोई प्रशंसा या सुझाव या किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए हमें पत्र या ईमेल द्वारा अपनी बात ज़रूर साझा करें। आज आपके साथ इस सफ़र में था मैं, आपका रेडियो दोस्त मेहताब।

आप सुन रहे थे गीत गजल कार्यक्रम भावगीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही बोलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग

0: को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।